मेगाहर्ट्स पर ये तुम्हां सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं, मैं आ तुम्हां दी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर होई कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। ता श्रोताओं कर देन अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे कने। तुम्हां सारे इयां बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने।

कंचन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हें बनी रहा रेडियो कंचन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन दे न कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारी इये बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

बोला करते हैं ना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते गणेश होताओ तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ देना कार्यक्रम च अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे ये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

0: खोलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है।

0: गोरिया
1: आकर
0: गोरिया गोरिया आकर आ
2: गोरिया
3: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
4: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
5: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
6: कैसे?
7: कर्तव्य।
6: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
8: समझ गए सर।
6: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
9: चाय मांगी थी, क्या है ये?
10: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
9: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है और झेलना हमें पड़ता है।
11: अब क्या देख रहे हो पापा?
9: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
11: किससे?
9: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
11: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
10: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
12: शादी हुई

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।
1: अभी अलविदा मत कहो।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया। अच्छा
1: अच्छा जी,
2: एक बहाना बन गया। अच्छा
1: अच्छा

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। हिमाचल में अब विधायकों की गाड़ियों में लगेगी विशेष झंडी। हिमाचल में बनेगा अलग खनन विभाग। नई ड्रेन नीति लाएगी प्रदेश सरकार। प्रदेश के 26 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार, स्कूलों के 21, कॉलेजों के 5 होंगे सम्मानित। कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द मिलेगा एरियर। पशुओं को दी जा रही एक्सपायरी दवाएं। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में विधायकों की गाड़ियों पर डिस्टिंक्ट फ्लैग, विशेष पहचान झंडी लगेगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस व्यवस्था को लागू करने की मंजूरी दे दी है। विधानसभा सचिवालय एक सप्ताह में सभी विधायकों को विशेष पहचान झंडी जारी करेगा। 13वीं विधानसभा के दौरान विधायकों को डिस्टिंक्ट फ्लैग देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन किसी कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। अब इस निर्णय को प्रभावी किया जा रहा है। पठानिया ने कहा कि डिस्टिंक्ट फ्लैग लगाने का मुख्य उद्देश्य विधायकों को अलग आधिकारिक पहचान देना है। उन्होंने बताया कि कई बार विशेष कार्यक्रम में जाने पर विधायकों की गाड़ियां जाम में फंस जाती थीं। वहीं विधायकों को अपनी पहचान तक बतानी पड़ती है, विशेषकर प्रदेश से बाहर जाने के दौरान ऐसी स्थिति सामने आती है। फ्लैग लगने के बाद उनकी गाड़ी देखकर ही विधायक की पहचान हो सकेगी। हिमाचल प्रदेश की नदियों में जमा रेत, बजरी और गाद केवल पर्यावरणीय चुनौती नहीं, बल्कि हजारों करोड़ की संभावित अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गए हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि नदियों में खनन और ड्रेजिंग को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित किया जाए तो प्रदेश को सालाना करीब 3,000 करोड़ तक का राजस्व मिल सकता है। उन्होंने प्रदेश में अलग से खनन विभाग बनाने और नई ड्रेजिंग नीति लाने की भी घोषणा की। हिमाचल में संसाधन कहीं अधिक हैं। इनके वैज्ञानिक और व्यवस्थित दोहन से प्रदेश आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी छलांग लगा सकता है। कहा, वर्तमान में खनन कार्य उद्योग विभाग के माइनिंग विंग के माध्यम से संचालित हो रहा है। काम का दायरा बढ़ने के कारण स्वतंत्र माइनिंग विभाग बनाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। केंद्र से अनुमति मिलने के बाद कुल्लू में 3 साइटों पर ड्रेजिंग शुरू करवाई गई। हिमाचल के उन शिक्षकों का मान बढ़ने जा रहा है जिन्होंने चौक और ब्लैक बोर्ड से आगे बढ़कर हजारों विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ा। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के राज्य शिक्षक पुरस्कारों के लिए 26 शिक्षकों के नाम तय कर दिए हैं। इनमें स्कूलों के 21 और कॉलेजों के 5 शिक्षक शामिल हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर लोक भवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। चयनित स्कूल शिक्षकों में 15 को सामान्य और 6 को विशेष पुरस्कार मिलेगा। तकनीकी शिक्षा के 5 शिक्षक और पिछले वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त कर चुके एक स्कूल शिक्षक को भी राज्य सम्मान दिया जाएगा। 51 शिक्षकों के साक्षात्कार और प्रस्तुतिकरण के बाद शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने 26 नाम पर अंतिम मोहर लगाई है। पुरस्कार के लिए चयनित 21 स्कूल शिक्षकों में 15 को सामान्य पुरस्कार और 6 को विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। सामान्य पुरस्कार गैर जनजातीय बाय कठिन क्षेत्र श्रेणी में और विशेष पुरस्कार भी गैर जनजातीय बाय कठिन क्षेत्र श्रेणी में प्रदान किए जाएंगे। विधानसभा मॉनसून सत्र के अंतिम दिन कर्मचारियों के डीए एरियर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष बीच काफी नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के विधायकों ने सरकार से कई सवाल दागे, जिसका मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सीएम ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार जल्द डीए व एरियर देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल आर्थिक चुनौतियों से लड़ा है, लेकिन सरकार ने कर्मचारी व पेंशनर्स पर आर्थिक संकट नहीं आने दिया। सीएम ने कहा कि सरकार ने 67 वर्ष तक के सभी पेंशनर्स का पूरा एरियर, जिसमें मेडिकल बिल, कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकेशमेंट सभी देनदारियां दे दी हैं। उन्होंने कहा कि क्लास 4 कर्मचारियों की पूरी देनदारियां व एरियर सरकार दे चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबित एरियर के भुगतान को लेकर कहा है कि एरियर का भुगतान किसी के दबाव में आकर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से एरियर का भुगतान किया जा रहा है और आगे भी परिस्थितियों के अनुसार कर्मचारियों व पेंशनर्स को उनका बकाया दिया जाएगा। हिमाचल के कई सरकारी विभागों में अनियमितताएं और खामियां पाई गई हैं। विधानसभा मॉनसून सत्र के अंतिम दिन प्रस्तुत की गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में पशुपालन, ग्रामीण विकास, मनरेगा, कारागार व सुधारात्मक सेवाएं
और लोक निर्माण विभाग में गंभीर खामियां उजागर की गई हैं। कैग ने राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि जेलों में सुरक्षा व चिकित्सा कर्मचारियों की कमी को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। ग्रामीण विकास विभाग में जॉब कार्ड और मजदूरी भुगतान में होने वाली देरी को रोकने के लिए कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाए। पशुपालन विभाग में दवाओं की खरीद के लिए ऑनलाइन इन्वेंट्री प्रबंधन सिस्टम लागू करने की सख्त आवश्यकता जताई गई है ताकि एक्सपायरी दवाओं के वितरण को रोका जा सके। मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए तैयार की गई ये कैग रिपोर्ट मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में रखी। पशुपालन विभाग में दवाओं की खरीद और वितरण में भारी लापरवाही सामने आई है। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित किया जा रहा है। ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने शताब्दी वर्ष के तहत 100 ईयर्स में 100 इनिशिएटिव्स थीम के साथ विभिन्न कार्यक्रमों की घोषणा की है। ये जानकारी ओएसए के अध्यक्ष संजीव गांधी ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। शताब्दी समारोह के तहत जिला प्रशासन कांगड़ा और रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से 50 रुपये प्रति टिकट की लकी ड्रॉ योजना भी शुरू की गई है। इसमें कुल 100 पुरस्कार रखे गए हैं। हिमाचल प्रदेश के 16 होटलियर्स द्वारा चंबा, मनाली, शिमला, मंडी, धर्मशाला, पालमपुर, बीड़, कसौली और चैल सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर 2 रात और 3 दिन के 32 स्टे पैकेज प्रायोजित किए गए हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल, लैपटॉप, मोबाइल फोन और वॉशिंग मशीन समेत कई आकर्षक पुरस्कार भी शामिल हैं। संजीव गांधी ने बताया कि लकी ड्रॉ से प्राप्त पूरी राशि रेड क्रॉस सोसाइटी को दी जाएगी। इस राशि का उपयोग कैंसर पीड़ितों तथा आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 13 से 15 नवंबर तक शताब्दी समारोह के मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे।

0: हेलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है।

0: गोरिया आ करा गोरिया
1: हटो हटो हटो हटो गोरिया।
2: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
3: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
4: कैसे?
5: कर्तव्य।
4: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
6: समझ गए सर।
4: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
7: चाय मांगी थी, क्या है ये?
8: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
7: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
9: अब क्या देख रहे हो पापा?
7: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
9: किससे?
7: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
9: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करे। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
8: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
10: शादी हुई

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओं, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। जी हाँ श्रोताओं, पहुंच चुके हैं हम रेडियो गुंजन के स्टूडियो में लेकर ढेर सारी जानकारियाँ, और जानकारियों के साथ साथ हर बार हम लेकर आते हैं प्यारे प्यारे गीत। जी हाँ श्रोताओं, ये तो आपको पता ही है कि हम हर बार गीत लेकर आते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे श्रोताओं को भी इंतज़ार रहता है गीतों का। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम कार्यक्रम के पहले गीत के साथ, तो आप बने रहे, जुड़े रहे रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोतो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के विचार की। आज हम बात श्रोताओं कुछ अनमोल चीज़ों की करेंगे। कहते हैं जो मुफ्त में मिलता है अक्सर वही सबसे अधिक मूल्यवान होता है। जैसे अब आप सोच विचार में पड़ गए होंगे कि हमें मुफ्त में क्या मिलता है। श्रोताओं, हमें मुफ्त में मिलती है हवा, हमें मुफ्त में मिलता है पानी, शांति और सबसे ज़रूरी होती है हमारी सांसें। जी हाँ, सांसें एक बार रुक गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है और सांसें चलती रहे तो सब कुछ हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, अपनों से मिल सकते हैं और हर काम काज कर सकते हैं। होता है ना श्रोताओं इसी तरह से। और मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों की बात कर रहे थे तो हवा हमें बिल्कुल मुफ्त में मिलती है, बिल्कुल शुद्ध हवा मिलती है जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है। पानी भी हमें मुफ्त में मिलता है और इसके साथ साथ कल कल करते झरने, नदियाँ, हर तरफ पानी बहता नज़र आता है। और शांति की बात करें तो शांति की खोज करने के लिए अक्सर हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं और पहाड़ों में बहुत सारी शांति और सुकून हमें मिलता है। जी हाँ श्रोता, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिल जाती है और प्रकृति हमें इन चीज़ों को देती है। जी हाँ श्रोताओं, इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ आपको फिर से लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत को। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन की, यानी 5 सितंबर की। देखिए श्रोताओ, सितंबर महीना चल पड़ा है और आज 5 दिन होने को हैं। तो 5 सितंबर का दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में, यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस की भी श्रोता हम बात करेंगे। फिलहाल 5 सितंबर के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करते हैं। 1836 की बात की जाए तो टैक्सन गणराज्य में सैम हास्टन को अपना राष्ट्रपति चुना गया था। साथ ही साथ 1901 में अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनले को एक अराजक ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके साथ साथ श्रोताओं, 1944 को बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग के राजनीति तथा आर्थिक संघ बेनिलेक्स का गठन हुआ था। 1997 की बात करें तो मदर टेरेसा का निधन हुआ था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और ज़रूरतमंद की सेवा में समर्पित कर दिया था। तो श्रोताओ, ये तो थी आज की जानकारियां हम और भी आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी के रेडियो सेट पर इस वक्त चल रहा है गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो श्रोता, हमारी बातों और जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में समय होने को है 9:20, तो आइए आपको लिए चलते हैं समाचारों की ओर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से नई तकनीक व आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने और विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन व जिज्ञासा विकसित करने का किया आह्वान। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज राज्यपाल कविंद्र गुप्ता 31 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का खामियाजा भुगत रही है जनता, सिर्फ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचा रही है सरकार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा, मॉनसून सत्र के दौरान जनता से जुड़े मुद्दे उठाने में भाजपा रही नाकाम, मात्र मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए विपक्ष ने किया शोर शराबा। और लाहौल स्पीति जिले में करपट गांवों के लोग जान जोखिम में डालकर झूले के सारे फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए मजबूर। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं और डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने शिक्षकों से नई तकनीक और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने तथा विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन और जिज्ञासा विकसित करने का आह्वान किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। इधर प्रदेश में भी शिक्षक दिवस के अवसर पर 31 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता लोक भवन में आयोजित किए जाने वाले एक कार्यक्रम में इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहेंगे। सम्मानित किए जाने वाले शिक्षकों में सरकारी स्कूलों के 21, कॉलेजों के 5 और तकनीकी शिक्षा विभाग के 5 शिक्षक शामिल हैं। इस बीच शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा संवाद भी आयोजित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं में अपने चहेतों को फायदा देने के लिए जिस तरीके से नियुक्तियों में मनमाना रुख अपनाया है, वो सिर्फ उनकी कार्यप्रणाली पर ही नहीं बल्कि उनकी नीयत पर भी सवाल खड़े करता है। जयराम ठाकुर ने सरकार पर सार्वजनिक उपक्रमों में वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों की खरीद व टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकारी योजनाओं और संसाधनों का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के उद्देश्य से अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू की जा रही है। कुमारवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दथोल और पपलाह में इस योजना के तहत आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने 14 ग्राम पंचायतों के लोगों से संवाद कर इस योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से अति निर्धन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। राजेश धर्माणी ने अधिकारियों को 20 सितंबर से पहले पात्र परिवारों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। केंद्र सरकार ने गर्भाशय ग्रीवा में होने वाले कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये टीका सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध करवाया जा रहा है। ऊना जिले में भी अभियान के तहत अब तक 1000 से अधिक किशोरियों का टीकाकरण किया जा चुका है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
1: भारत में प्रतिवर्ष ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नामक विषाणु से उत्पन्न सर्वाइकल कैंसर से लगभग 1.25 लाख महिलाएं ग्रसित होती हैं, जिनमें से लगभग 2/3 महिलाओं की मृत्यु हर वर्ष इस रोग से हो जाती है। ऊना जिला में इस बीमारी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के विशेष टीकाकरण अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा 14 से 15 वर्ष की आयु के किशोरियों का टीकाकरण निःशुल्क किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से अब तक 1250 से अधिक किशोरियों को वैक्सीन लगाई गई है। ऊना के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव वर्मा ने बताया कि HPV वैक्सीन सुरक्षित एवं वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित टीका है और सर्वाइकल कैंसर से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि ऊना जिला में 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की 4500 पात्र बालिकाओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: अरे मुन्ना, जरा एक ग्लास पानी देना, और हाँ, पानी को उबाल कर ही देना।
3: दादू, पानी तो साफ लग रहा है, फिर उबालना क्यों?
2: बेटा, दिखने में साफ पानी भी पीलिया, डायरिया और दस्त जैसे रोग फैला सकते हैं।
4: ध्यान दे, सुरक्षित पेयजल के लिए पानी को तेज उबाल आने के बाद 3 मिनट तक खौलाना जरूरी है।
5: उबला पानी पिए, स्वस्थ हिमाचल बनाएं।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भाजपा पर मॉनसून सत्र के दौरान आम जनता से जुड़े विषयों को उठाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जो भी विषय सदन में उठाए उनका सरकार ने तथ्यों के साथ जवाब दिया। विनय कुमार ने आरोप लगाया कि मात्र मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए ही विपक्ष ने शोर शराबा किया। दूसरी ओर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा है कि मॉनसून सत्र के दौरान सरकार के पास विपक्ष के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी को छिपाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जो जानकारी RTI के माध्यम से मिल रही है, सरकार ने उसे सदन में उपलब्ध नहीं करवाया। लाहौल स्पीति जिले के करपट गांव के लोग बाढ़ के कारण मुख्य पुल के डूब जाने से भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। समय पर फसल के मंडी में ना पहुंचने से किसान चिंतित है। हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता ने बताया कि पुल के अभाव में लोगों को जान जोखिम में डालकर झूले का सहारा लेना पड़ रहा है।
7: मयाड़ घाटी के करपट गांव में किसानों की परेशानी अभी खत्म नहीं हो पाई है। गांव का मुख्य पुल अब भी पानी में डूबा हुआ है। ऐसे में किसान झूले के सहारे अपनी गोभी की फसल को सड़कों तक पहुंचा रहे हैं। गोभी की फसल को करीब 2 किलोमीटर पैदल ढोना पड़ रहा है, जिसके लिए मजदूर एक पेटी गोभी ढोने के लिए 80 से 100 रुपए तक ले रहे हैं। वहीं व्यापारी भी किसानों को करीब 18 रुपए किलो का भाव दे रहे हैं। खेतों में गोभी ओवरसाइज होने लगी है। समय पर फसल के मंडी न पहुंचने से भी किसान चिंतित हैं। इसी फसल से ही उन्हें बच्चों की पढ़ाई और परिवार चलाने की उम्मीद थी, अब वही फसल चिंता का कारण बन गई है कि महिलाएं भी जान जोखिम में डालकर झूला पार कर रही हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने अतिरिक्त झूला लगाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन किसानों को स्थायी राहत पुल और सड़क बहाल होने के बाद ही मिल सकेगी। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के दोबारा होने वाले पेपर के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र UGC नेट की वेबसाइट पर लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। कॉमर्स की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने कांगड़ा व सिरमौर जिले में आगामी 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कल से प्रदेश में बारिश की रफ्तार कम होने की संभावना है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में इस बार मॉनसून सीजन में सामान्य से 8% कम बारिश दर्ज की गई है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। अमर उजाला की सुर्खी है, वर्ष 2027 के चुनावी समीकरणों में उलझा मंत्रिमंडल विस्तार। दिल्ली में हुई बैठकों के बाद भी कैबिनेट विस्तार पर संशय बरकरार, कई मंत्रियों के बदल सकते हैं विभाग। पंजाब केसरी का शीर्षक है, जन्माष्टमी पर पवित्र मणिमहेश में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। दैनिक जागरण लिखता है, नालागढ़ की चिकनी खड़ पर बनी झील, 4 पंचायतों को खतरा। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने की एक खबर ध्यान खींचती है, हिमाचल में 10 साल में 710 ग्लेशियर झीलें बढ़ी, इनमें 9 बेहद संवेदनशील। हिमाचल दस्तक ने कैक रिपोर्ट का हवाला देकर शीर्षक दिया है, प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों का घाटा बढ़कर 605 करोड़ पहुंचा, बार बार चेतावनी के बावजूद नहीं सुलझ रही व्यवस्था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से नई तकनीक व आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने और विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन व जिज्ञासा विकसित करने का किया आह्वान। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज राज्यपाल कविंद्र गुप्ता 31 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का खामियाजा भुगत रही है जनता, सिर्फ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचा रही है सरकार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा, मॉनसून सत्र के दौरान जनता से जुड़े मुद्दे उठाने में भाजपा रही नाकाम, मात्र मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए विपक्ष ने किया शोर शराबा। और लाहौल स्पीति जिले में करपट गांव के लोग जान जोखिम में डालकर झूले के सहारे फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए मजबूर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

चलो इसी गूंज के साथ है, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन की। 5 सितंबर का दिन भारत और विश्व के इतिहास में कई महान हस्तियों के जन्म और मृत्यु के लिए याद भी किया जाता है। भारत में इसी दिन देश के पहले पूर्व उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि आज है शिक्षक दिवस, और सुनने वाले सभी श्रोताओं को एक बार फिर से हम शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि टीचर का हमारे जीवन में बहुत सारा योगदान रहता है। और हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म की बात कर रहे थे, तो वो एक महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उनको आभार व्यक्त करने के लिए, उनके प्रति सम्मान जताने के रूप में हर साल 5 सितंबर यानी आज के दिन उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को जन्मे व्यक्तियों की बात श्रोताओं हम कर रहे हैं, तो इसमें फेडरी मरकरी, दुनिया के सबसे मशहूर रॉक बैंड क्वीन के लीड सिंगर और ब्रिटिश संगीतकार फ्रेडी मरकरी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। अपनी शानदार आवाज़ और मंच का अद्भुत प्रदर्शन के लिए वह आज भी पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। और साथ ही साथ माइकल कीटन की बात की जाए, तो हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता माइकल कीटन का जन्म इसी दिन हुआ था। वह बैटमैन और बर्डमैन जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं। श्रोताओं, एक के बाद एक महान व्यक्तियों के जन्म हमारे दिमाग में चल रहे हैं, तो प्रज्ञात ओझा की बात की जाए, तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज प्रज्ञान ओझा का जन्म 5 सितंबर यानी आज के दिन 1986 को हुआ था। उन्हें भारत के लिए कई महत्वपूर्ण मैचों में शानदार गेंदबाजी की थी। और अब किंग लुई जॉर्दे को हम कैसे भूल सकते हैं, फ्रांस के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध राजा जिन्हें द सन किंग भी कहा जाता है का जन्म इसी दिन हुआ था। उनका शासनकाल किसी भी यूरोपीय सम्राट में सबसे लंबा रहा है। तो श्रोताओ, ये तो थी आज के दिन जन्मे व्यक्तियों की जानकारी। तो इन्हीं जानकारियों के साथ हम फिर से आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में हमने आज के दिन जन्मे व्यक्तियों की तो बात कर ली, लेकिन कुछ महान व्यक्तियों का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। उनमें से हम अगर बात करें मदर टेरेसा की, तो उनका निधन 5 सितंबर 1997 को हुआ था। गरीबों, बीमारों और लाचारों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाली और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा का निधन 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में हुआ था। वह मानवता और करुणा की एक महान प्रतिमूर्ति थी। उसके साथ साथ नीरजा भुनोट कराची के हाईजैक हुए पैन एम फ्लाइट 73 के यात्रियों की जान बचाते हुए आतंकियों की गोली का शिकार हुए बहादुर विमान परिचारिका नीरजा भुनोट का निधन इसी दिन हुआ था। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो श्रोताओ, ये तो थी जानकारियां अभी और भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं और कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारियां और आप तक पहुंचाते हैं। श्रोता शरद जोशी, इनका निधन 5 सितंबर 1991 को हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार, लेखक और कवि रहे हैं। इनका निधन भी 5 सितंबर हुआ था। उन्होंने अपनी लेखनी से समाज और राजनीति की विसंगतियों पर तीखे और गुदगुदाने वाले व्यंग्य किए थे। इनके साथ साथ श्रोताओं कार्यक्रम में और आगे बढ़े तो सलील चौधरी, उनका निधन भी 5 सितंबर 1995 को हुआ था। भारतीय सिनेमा और हिंदी फिल्मों के अत्यंत लोकप्रिय संगीतकार और गीतकार सलील चौधरी ने 5 सितंबर 1995 को अंतिम सांस ली थी। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस की, जिसे हम इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी कहते हैं और हर साल इसे 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के इतिहास की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में इस दिन की आधिकारिक तौर पर मनाने की घोषणा की थी। तिथि के चयन की बात करें तो ये तारीख मदर टेरेसा की पुण्यतिथि निधन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चुनी गई थी। उनका निधन 5 सितंबर यानी आज के दिन 1997 को हुआ था। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो मदर टेरेसा को वर्ष 1949 में गरीबी और संकट को दूर करने के संघर्ष में किए गए कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ आज के दिन के महत्व और उद्देश्य की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इसी गूंज के साथ हम कार्यक्रम में एक बार फिर से वापस आ गए हैं और बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के बारे में। तो श्रोताओं, दान दिवस के महत्व और उद्देश्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस की स्थापना का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को स्वयंसेवी और परोपकारी गतिविधियों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए जागरूक और संगठित करना है। इसके साथ साथ ये दिन व्यक्तियों, संस्थाओं और परोपकारी संगठनों को स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर दान संबंधी गतिविधियों के लिए एक साझा मंच भी प्रदान करता है और साथ ही ये संकटग्रस्त और वंचित लोगों की सहायता करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को थोड़ा सा यहाँ पर देते हैं विराम और मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी को टीचर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, आज के दिन को हम मना रहे हैं शिक्षक दिवस और कहते हैं समय बदल गया, कक्षाएं बदल गई, लेकिन गुरु का महत्व आज भी वैसा कहीं वैसा है। हर एक सफल इंसान के पीछे किसी न किसी शिक्षक का हाथ रहता है, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। और जी हाँ श्रोताओ, आप भी जानते हैं क्योंकि आपने भी एक विद्यार्थी जीवन जिया है। और आज के दिन की बात करें तो आज हम 5 सितंबर का दिन जो है भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो ये दिन पूरी तरह से गुरु शिष्य के पवित्र परम्परा और शिक्षकों के समर्पण को याद करने के लिए हम लोग आज के दिन को मना रहे हैं। साथ ही साथ भारत की संस्कृति में गुरु का स्थान जो है सदैव ही बहुत ही ऊंचा रहा है। बहुत सारा सम्मान आदर हम अपने गुरुओं को देते रहे हैं और मानव जीवन में शिक्षकों को सही योगदान और महत्व को समझाने के लिए ही इस दिन को मनाया जाता है। श्रोताओ, गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत सारा रहता है। हमारे माता पिता का स्थान भी सर्वोपरि रहता है। वो जब हमें जन्म देते हैं उसके बाद उनके द्वारा दी गई शिक्षा से ही हम चलते हैं, लेकिन जीवन का सफर तय करने के लिए शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। शिक्षक हमें ज़िंदगी का ज्ञान देते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर हम आगे चलते हैं और एक अच्छा मुकाम भी हासिल करते हैं। इस दुनिया में जीने का सहारा, तरीका और ज्ञान हमें शिक्षक ही प्रदान करता है। शिक्षक हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता भी है। जी हाँ श्रोताओ, हम कार्यक्रम में और भी ढेर सारी बातें और जानकारियाँ आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं और आप सभी को सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओ, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को एक बार फिर से हमारी तरफ से प्यार भरी नमस्ते। जी हाँ श्रोताओ, हम फिर से वापस आ चुके हैं और शिक्षक दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के जो हैं हम तक मैसेज आ रहे हैं कि टीचर दिवस की हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो वही हमारा फर्ज भी बनता है कि हम अपने श्रोताओं को भी शुभकामनाएं दें, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। और शिक्षक दिवस सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं होता है, बल्कि ये उन सभी गुरुओं को याद करने का मौका होता है जिन्होंने हमारे जीवन के हमें राह दिखाई है। और अगर हम ये बोलें कि शिक्षक सिर्फ वे होते हैं जो हमें क्लासरूम में पढ़ाते हैं, तो ऐसा श्रोता बिल्कुल नहीं है। वे हर व्यक्ति जो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे हमारे माता पिता हो, बड़े भाई बहन हो, या समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें हम शिक्षक कह सकते हैं, क्योंकि हमने उनसे सीखा होता है, वो हमें सिखाते हैं। और जहाँ से हमें ज्ञान मिले वो एक हमारे लिए शिक्षक से कम नहीं होता है। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान जो है ज़िंदगी भर हमारे काम आता है। और आज के दिन की बात करें तो आज का दिन उन सभी शिक्षकों के त्याग और मेहनत, साथ ही साथ हम उनके मार्गदर्शन के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। और वे हमें ना सिर्फ ज्ञान देते हैं बल्कि सही गलत की पहचान करना भी सिखाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जीवन में वो हमें सिखाते हैं। सही गलत की पहचान करना सिखाते हैं, इसके साथ साथ हमें प्रेरित करते हैं, हमारी कमियों को दूर करने में भी हमारी मदद करते हैं, और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षा से ही कहीं ना कहीं हम अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ते हैं। अपना करियर भी हम उनके द्वारा दी गई शिक्षा से ही बनाते हैं। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश की बात करें तो शिक्षक हमें दुनिया को समझाने का नज़रिया देते हैं और नई चीज़ें सीखने और सोचने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इसके साथ साथ श्रोताओं, बात करें कि अच्छा शिक्षक छात्रों में अच्छे संस्कार, नैतिकता और अनुशासन जो है सिखाता है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी बातें और जानकारियाँ। अपनी बातों और जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब हमारी ज़्यादा बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हमारे श्रोताओं को इंतज़ार होगा गीतों का। जी हाँ, उनके इंतज़ार का हम पूरे ध्यान रख रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं खास दिन शिक्षक दिवस के बारे में। श्रोताओ, शिक्षक प्रेरणा का स्रोत होते हैं। जब हम हार मान लेते हैं तब तक शिक्षक हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। वह हमारा विश्वास बढ़ाते हैं, हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हम मेहनत करें तो। जी हाँ, जब हमें कोई हिम्मत देता है तो बहुत अच्छा लगता है और आगे बढ़ने का मन करता है। और भविष्य के निर्माता के रूप में अगर शिक्षक की बात करें तो शिक्षक ही वह नींव रखता है जिस पर देश का भविष्य टिका होता है। आज के छात्रों को कल का जिम्मेदार नागरिक बनना होता है। हर छात्र की क्षमताएं और सीखने का तरीका अलग अलग होता है। शिक्षक इन विभिन्नताओं को समझते हुए हर व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। और थोड़ा सा हम शिक्षक दिवस को मनाने की बात करें तो बहुत सारे बच्चे आज के दिन शिक्षक दिवस मनाते हैं। भारत में शिक्षक दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। स्कूल और कॉलेज में ये दिन खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। छात्र अपने शिक्षकों को तोहफे देते हैं, कार्ड फूल भेंट करते हैं और ढेर सारा प्यार जताते हैं। कई जगहों पर छात्र खुद शिक्षक बनकर क्लास लेते हैं, जिन्हें शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हैं। जी हाँ, इस दिन शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाता है और कई राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी दिए जाते हैं। श्रोताओ, शिक्षक दिवस एक ऐसा दिन है जो हमें अपने जीवन में शिक्षकों के महत्व को समझाने और उनके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देता है। ये एक ऐसा दिन है जब हम अपने गुरुओं का आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। जी हाँ श्रोताओ, तो कार्यक्रम में हम और भी जानकारियाँ लेकर आए हैं, उन्हें भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन फिलहाल फिर से कार्यक्रम में सुन लेते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत। तो आप भी सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम में आज हम शिक्षक दिवस की बात कर रहे हैं। श्रोताओ, गुरुओं का हमारे जीवन में बहुत स्थान होता है, बहुत ही कुछ वो हमें सिखाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, मार्गदर्शन की भूमिका हमारे जीवन में निभाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, मेहनत, समय का महत्व और जिम्मेदारियाँ जैसे जीवन मूल्यों को सिखाते हैं। जब कोई छात्र किसी विषय को समझने में कठिनाई महसूस करता है तो शिक्षक उसे सरल तरीके में समझाने का प्रयास करते हैं और कई बार शिक्षक छात्रों को प्रतिभा को पहचानकर उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी देते हैं। इसके साथ साथ श्रोताओं, भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान हमेशा सबसे ऊपर रहा है। वह हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान की रोशनी तक ले जाते हैं। यही वजह है कि भारत में शिक्षक दिवस एक पर्व की तरह मनाया जाता है और जिसे कि हम आज मना रहे हैं और आप सभी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे विद्यार्थी, हमारे युवा जो भी स्कूल कॉलेज में जाते हैं वो इस दिन को मना रहे होंगे, क्योंकि हम तो स्टूडियो में बैठे हैं, हमें तो पता नहीं है। लेकिन अगर हम अपने समय की बात करें तो हम भी टीचरों को सम्मान देने के लिए उन्हें ग्रीटिंग कार्ड और मुबारकबाद दिया करते थे, जिससे छात्र भी खुश होके ढेर सारा प्यार हमें देते थे, सिर पर हाथ रखते थे। उनका सिर पर हाथ रखना ही एक तरह सा का उनका प्यार हमारे लिए हुआ करता था। तो श्रोताओं, जब बातों का सिलसिला शुरू होता है तब अपने दिनों की याद भी आ जाती है। तो खैर, आज जो बच्चे विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं उनकी जीवन में ये पल आया है, ये दिन आया है, तो दिन कोई भी हो उसे ज़रूर मनाना चाहिए। और ये तो विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत बड़ा दिन है। शिक्षक का महत्व बताता है कि शिक्षक हमारे जीवन में क्या योगदान देते हैं, तो इस योगदान को तो हम भली भांति समझते ही हैं और भी जानकारियां और बातें हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में सुन लेते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिए।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। कार्यक्रम में हम बात शिक्षक दिवस के बारे में कर रहे हैं। तो श्रोताओं, कहा जाता है कि एक योग्य गुरु का साथ मिल जाए तो मुश्किल परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने का रास्ता आसान हो जाता है। गुरु अपनी सीख और अनुभव से व्यक्तियों को चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास दिखाता है और उसे बेहतर इंसान बनाने की प्रेरणा भी देता है। इसके साथ साथ श्रोता, शिक्षक दिवस हम सभी के जीवन में खास महत्व रखता है और इस साल 5 सितंबर को हम इसे, वैसे तो हर साल मनाते हैं लेकिन आज के दिन की बात करें तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना रहे हैं। इस दिन 1888 में देश के महान शिक्षाविद, दार्शनिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और शिक्षकों के प्रति सम्मान को देखते हुए उनकी जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिन देश भर के शिक्षकों के योगदान, मार्गदर्शन, समर्पण के लिए आभार व्यक्त करने का भी दिन होता है। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों को थोड़ा सा यहाँ पर रोकते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

चौथा इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। और अब हम कार्यक्रम में थोड़ी सी बात करेंगे गोगा नवमी पर। आज के दिन को हम मना रहे हैं गोगा नवमी का पर्व। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को ये मनाया जाता है और इस बार ये 5 सितंबर को मनाया जा रहा है। और हम सभी जानते हैं कि गोगा नवमी का हमारे जीवन में बहुत खास महत्व रहता है। गोगा जी को नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है और जाहर वीर, गुग्गा जी, गुग्गा वीर और गुग्गा पीर भी ने कहा जाता है। और साथ ही साथ आप सभी ने देखा हुआ होगा कि रास्ते में गुणगान करते हुए इनके सेवक जो है एक छाता लेकर घूमते हैं। कई बार हमें नहीं पता होता है लेकिन सुनते सुनाते बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हमें हो जाता है। और इनकी पूजन की बात करें तो घर की दीवारों पर चंदन, हल्दी या गेरू से गुग्गा जी के नाग जो है देवता के चित्र बनाए जाता है। और साथ ही साथ जो है गुग्गा देव को खीर, चूरमा और गुलगुले जैसे पकवानों का भोग भी लगाया जाता है। इसके अलावा बाजरा और कच्चा दूध भी अर्पित किया जाता है। हर भगवान को या हर देवी देवताओं को अलग अलग तरह का भोग लगाया जाता है। और साथ ही साथ इनके घोड़े की पूजा की बात करें तो गुग्गा जी नीले घोड़े की पूजा कर उन्हें चना और बाजरा भी जो है श्रद्धालु खिलाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पालमपुर वाली साइड पर, पालमपुर वाले रोड पर जहाँ वीर गुग्गा पीर जी का मंदिर है वहाँ पर आजकल के दिनों में खूब सारी रौनकें लगी हुई हैं और बहुत सारे जो भक्त हैं माता टेकने के लिए जाते हैं। गुग्गा नवमी जो है पर्व 8 दिन तक मनाया जाता है और 9वें दिन जो है गुग्गा मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है और प्रसाद के रूप में रोट, चावल, आटा लोग चढ़ाते हैं। भक्त लोग कथा का श्रवण करते हैं और इस अवसर पर गुग्गा कथा को गाने वाली मंडलियां घर घर जाकर, जैसे हमने अभी पहले बात की कि वो छाता लेकर घूमते हैं और भगवान का गुणगान भी करते हैं। और पंजाब, हरियाणा समेत हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस पर्व को बड़े श्रद्धा और भाव से मनाया जाता है। और मान्यता ये है कि पूजा स्थल की मिट्टी को घर पर रखने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है। और कहीं कहीं लोगों का ये कहना है, श्रोताओं की, जिस दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है उस दिन जो है सेवइयाँ बनाकर दूध में इन्हें अर्पित की जाती है और कुछ आटे के जो है सर्प छोटे छोटे बनाकर भी इनके मंदिर में रखे जाते हैं। और साथ साथ बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी मान्यता होती है, उनकी मान्यता ये भी होती है कि जब तक ये सेवइयाँ गुग्गा पीर जी को नहीं चढ़ाई जाती हैं तब तक सेवइयाँ भी लोग नहीं खाते हैं। चढ़ाने के बाद प्रसाद रूप में इसे ग्रहण करते हैं तब जाकर भगवान के गुग्गा जो जहर पीर हैं उनकी कृपा जो है भक्तों पर बनी रहती है। भगवान कोई भी हो श्रोताओं, जब सच्चे दिल से हम उन्हें मानते हैं, उन्हें पूजते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहती है। हम तो जहर पीर गुग्गा पीर जी से यही दुआ मानते हैं कि हमारे जो श्रद्धालु और जो हमारे श्रोता हैं उन पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, उनकी भी हर मनोकामना पूरी रखें। और श्रोताओं, आज के दिन को हम गुग्गा नवमी के बारे में मना रहे हैं, बहुत सारी बातें भी हैं इनके जुड़ी हुई, बहुत सारे आज के दिन का महत्व भी है, उन्हें भी थोड़ा सा हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी बातें और जानकारियां ज़्यादा हो रही हैं तो थोड़ा सा हम इन्हें रोकते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, एक बार फिर से कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। और थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी बातचीत और आपके साथ कर लेते हैं। समय हमारे पास अभी है तो उस समय का इस्तेमाल कर लेते हैं। और गुग्गा नवमी की हम बात कर रहे थे, तो गुग्गा नवमी कथा के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये कथा प्रचलित है कि इसके अनुसार गुग्गा मारू देश का राजा था और उनकी माँ माचल गुरु गोरखनाथ जी की परम भगत थी। वीर गुग्गा जी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे और उनका जन्म विक्रम संवत 2003 में चूरू जिले के देदरेवा गांव में हुआ था। सिद्ध वीर गुग्गा देव का जन्म स्थान जो देतखेड़ा ददरेवा राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है, जहां पर सभी धर्मों के लोग माथा टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। मुस्लिम समाज के लोग जहर पीर के नाम से इन्हें पुकारते हैं तथा उक्त स्थान पर मन्नत मांगने और माथा टेकने आते हैं। ये स्थान हिंदू और मुस्लिम समाज का प्रतीक है। मध्यकालीन महापुरुष गुग्गा जी जहर पीर हिंदू मुस्लिम सिख सभी संप्रदाय के लोकप्रिय देवता है। गुग्गा जहर पीर का जन्म स्थान राजस्थान के देव रेवा चूरू शासक जेवर सिंह चौहान वंश के राजपूत की पत्नी बाछल की कोख से गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से भादो शुक्ल नवमी को हुआ था। और राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद जो है इन्हें माना जाता है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ आपको फिर से लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो इसी गीत के चलते चलते हम आपको एक बार फिर से टीचर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं दे देते हैं। श्रोता, शिक्षक वह दीपक है जो खुद जलकर दूसरों को जीवन की रोशनी देता है। वह केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं देता बल्कि सही रास्ता दिखाता है, हौसला बढ़ाता है और जीवन जीने की कला सिखाता है। एक अच्छा शिक्षक सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाता, व्यक्तित्व बनाता है, सोचने की शक्ति देता है, एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देता है। माता पिता हमें जीवन देते हैं लेकिन शिक्षक हमें जीवन जीने की पहचान देते हैं। ऐसे सभी गुरुजनों को दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमें सवारा, निखारा और एक बेहतर कल के लिए तैयार किया। तो श्रोताओं, एक बार फिर से सभी श्रोताओं को हैप्पी टीचर डे, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सुनते हैं।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं। अब चलते चलते आपको एक बार फिर से टीचर डे की शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा भी लेते हैं।

0: क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ मुंह

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
5: कैसे?
6: कर्तव्य।
5: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझिए सर।
5: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है और झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
12: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: याद है मुझे।
1: इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: ये क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि
2: स्वस्थ मुंह है।

0: गोरिया आ करा गोरिया आ
1: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
2: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
3: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
4: कैसे?
5: कर्तव्य।
4: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
6: समझ गए सर।
4: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
7: चाय मांगी थी, क्या है ये?
8: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
7: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है और झेलना हमें पड़ता है।
9: अब क्या देख रहे हो पापा?
7: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
9: किससे?
7: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
9: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
8: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
10: मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान बहुत ही अच्छे से आप सभी रख रहे हैं बदलते मौसम के साथ। तो दोस्तों, इस हफ्ते भी आप सभी के लिए बहुत ही खास जानकारी, बहुत ही खास कार्यक्रम आप सभी इंजॉय करते हैं, मन संवाद एक प्रयास मन की ओर। और इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़ते हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और साथ ही
1: प्रेयसी के साथ।
0: जी, तो स्वागत है मैम आपका हमारी इस अगली कड़ी में हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं के साथ।
1: थैंक यू सो मच रुचिका
0: जी। तो कैसे हैं आप? और आप हमारे दोस्त तो बहुत ही अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं स्वास्थ्य का, आप किस तरह से अपना ध्यान रख रहे हैं?
1: हम अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। बदलते मौसम के साथ गर्म पानी का जो उपयोग है वो बढ़ चुका है। देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें हमारा सिर्फ जो फिजिकल हेल्थ है वही नहीं, लेकिन हमारा मेंटल हेल्थ भी हमारे स्वास्थ्य का ही हिस्सा है।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसे कि सुबह होती है, सुबह होते ही मॉर्निंग वॉक पर जाना, नेचर के बीच में पानी को बहते हुए देखना, सूरज की पहली किरणों को देखना, चिड़िया को आवाजों को सुनना, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे दिन को बहुत ही बेहतर और खूबसूरत बना देती है। क्योंकि इसके साथ साथ हमें सिर्फ फिजिकली नहीं फायदा हो रहा है, हमें मेंटली इमोशनली भी बहुत फायदे होते हैं। उसके बाद वही अपना काम, अपना डेली का रूटीन, हेल्दी डाइट और समय से सो जाना।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, मैम ने बहुत ही ये एक सही और जरूरी बात आप सभी के लिए, बातों ही बातों में लेकिन देखिए कितनी जरूरी बात आप सभी तक पहुंची है। और इसे हम एक कह सकते हैं कि दिन की शुरुआत इस तरह से अगर हम करें तो बहुत ही प्यारा सा दिन जाता है। यानी कि सुबह की शुरुआत अच्छी होगी तो हर पल हमारे लिए अच्छा ही जाएगा। तो जैसे कि मैम ने कहा कि मॉर्निंग वॉक और प्यारे प्यारे पक्षियों की वो पीठी सी आवाज जब हम सुन लेते हैं तो सच में एक अलग ही सुकून मिल जाता है। और अगर थोड़ा बहुत भी आलस है तो वो भी दूर हो जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, इस तरह से अगर हम सुबह की शुरुआत करें, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं मैम कि सुबह उठते ही बस ये होता है टेंशन कि बस हमें ये काम निपटाना है और फटाफट से बस उस रूटीन में हम शुरू हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो ये जरूरी सी चीजें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड ही, और अभी हमने बात भी कर ली कि रूटीन किस तरह से, तो मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम में हमें अपने दोस्तों के लिए एक बहुत ही खास बात जो है वो बतानी चाहिए, यूं कहें कि जानकारी दोस्तों तक पहुंचानी चाहिए। तो अभी बात की ना कि हर चीज हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। तो आजकल मैम आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम, चाहे बच्चों की बात करें या बुजुर्ग, खैर उनकी एज के साथ साथ तो चेंजेस आते हैं, लेकिन बच्चों की या युवाओं की हम बात करें तो स्लीपिंग का एक पैटर्न जो है वो कहीं गड़बड़ा सा गया है?
1: डेफिनेटली।
0: तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, स्लीप अपने आप में एक रिदम के अनुसार काम करती है, इसको हम बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल। तो जैसे प्रकृति में आप हर जगह देखेंगे तो हर चीज एक साइकिल के तौर पे चलती है, चाहे वो वाटर साइकिल हो या फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन हो। तो यानी अंदरूनी दुनिया हो या बाहरी दुनिया, हर चीज एक साइकिल के तौर पे चल रही है। ठीक उसी प्रकार से हमारी स्लीप वेक साइकिल होती है, जो हमारी सर्काडियन, जिसको हम सर्काडियन रिदम भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसी रिदम है जो नेचर के साथ अलाइन होकर हमारे जो हार्मोन्स है उसमें बदलाव लाती है और हमारी बॉडी का ख्याल रखने में हमारी सहायता करती है। तो जब हम स्लीप वेक साइकिल हमारी डिस्टर्ब होती है, देखिए इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो जैसा आपको पता है रुचिका, आज के समय पे जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, जो फोन का यूसेज इतना बढ़ चुका है, और यहाँ तक कि इवन काम के लिए भी लोगों को नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है
0: जी।
1: और लोगों में इतना अकेलापन आ चुका है क्योंकि फोन साथ में है हमेशा, तो एक डिस्कनेक्ट हो चुका है फ्रॉम ह्यूमन कनेक्शन इटसेल्फ। और AI के बढ़ते हुए ये चीज बस बढ़ती ही जा रही है। तो इन सब के होते हुए हमारी स्लीप वेक साइकिल या स्लीप का डिस्टर्ब होना बहुत आम हो चुका है।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, ये प्रॉब्लम जैसे अभी हमने बात की तो आपको भी लग रहा होगा कि ये तो आए दिन हमारे साथ भी होता है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस बात को पेश कर रहे होंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, ये जैसे ही हम अपने आप को कुछ चीजों से अलग करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हमें रियलाइज हो जाता है, तो फिर हम अगर खुद को दूर करना चाहें लेकिन जो फैसिलिटीज है वो हमें और अपनी ओर आकर्षित कर ले लेती हैं। अब जैसे जहां हम ये चाह रहे थे कि हम फोन का यूज ज्यादा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम स्क्रीन टाइम को कम करें, लेकिन अब एआई का जो एक और न्यू एडिशन हमारी लाइफ में हो गई है तो फिर हम और छोटी छोटी सी चीजों के लिए उसके सहारे पे
1: बिल्कुल
0: मोबाइल के साथ फिर से कनेक्ट हो गए हैं,
1: डिपेंडेंसी
0: बढ़ गई है। तो बिल्कुल दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जो हम स्लीपिंग की बात कर रहे हैं तो उस पर बातचीत करने वाले हैं। बहुत खास ये जानकारी आप सभी के लिए रहने वाली है क्योंकि ये इशू बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आजकल आप सभी जानते हैं कि बच्चा जन्म लेते ही थोड़ा सा टाइम अभी उसे होता है और फोन हाथ में पहले ही आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं नींद डिस्टर्ब होती जाती है, तो हमारी जो एक डेली रूटीन है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जरूर बात करेंगे, लेकिन मैम एक प्यारा सा छोटा सा ब्रेक लें।
1: बिल्कुल
0: जी। तो दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से इस प्यारे से गीत के बाद। आप सभी इसी तरह से एंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: तो दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और बहुत ही खास ये कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मतियौर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियश्री के साथ।
0: जी दोस्तों, तो मैम आपके लिए बहुत ही खास जानकारियां लेकर आते हैं और ये हमारी डेली रूटीन से जुड़ी हुई होती है, तो जितना ध्यान से हम इन्हें जान सके, जितना ध्यान से हम इन्हें सुन सके और अपनी जिंदगी में से अप्लाई कर सके हमारे लिए उतना ही बेहतर रहेगा। तो हमारी ये कोशिश है कि आप अपने आप को सतर्क करें हर एक छोटी सी छोटी बात के लिए। तो उसी के चलते आज हम ये बहुत ही खास स्लीपिंग से संबंधित बातचीत आप सभी के लिए लेकर आए। तो मैम अभी आपने बात की कि जो हमारा स्लीपिंग वेक साइकिल होता है तो वो किस तरह

0: और नाइट शेड्यूल है उसके अनुसार जागते हैं और सोते हैं, राइट
1: जी।
0: ठीक इसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स का डेवलपमेंट भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन अफसोस की बात है कि अब ये काफी ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। जब हम बात करते हैं स्लीपिंग की, तो स्लीप की अपनी एक अलग साइकिल है। आपने नोटिस किया होगा रुचिका कि जब आप सोने जाते हैं तो कैसे धीरे धीरे जाकर नींद आती है,
1: बिल्कुल,
0: और उसके बाद कभी कुछ सपने आ रहे होते हैं, फिर कभी कुछ जो भी आज के दिन में जो भी कुछ हुआ होता है वो सारी चीजें बातें चल रही होती हैं, उसी का ही सपना भी बन जाता है। और सोते वक्त बीच बीच में हम करवटें लेते हैं, हमारी आंखें हल्की सी खुलती हैं, हम करवट लेते हैं और फिर से सो जाते हैं। और जब सुबह होती है तब नींद इतनी गहरी होती है कि उठने का मन ही नहीं करता, लगता है नींद कितनी अच्छी आ रही है,
1: सही बात,
0: अब हमें कोई ना उठाए।
1: वो सर्दियों में खासकर बहुत ही ज्यादा हो जाता है,
0: बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये सारा जो एक प्रक्रिया चल रही है सोने के समय पर, इसको हम बोलते हैं स्लीप साइकिल। और इसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं जिसको हम इन्हीं बिहेवियर्स या इन्हीं एक्सपीरियंसेस के थ्रू महसूस करते हैं। तो इसमें देखिए दो तरह के फेज बताए जाते हैं। तो हर एक साइकिल जो है वो 1.5 आवर की है, और ये 1.5 आवर डिवाइड करे गए हैं टू डिफरेंट फेजेस में। पहला फेज होता है NREM, यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट। NREM में भी 3 डिफरेंट फेजेस हैं, तो 3 स्टेजेस हैं इसके। तो आपको पहले धीरे धीरे नींद आनी शुरू होगी, फिर वो नींद के बाद आपको कुछ सपने आने शुरू हो जाएंगे जो आपकी डेली लाइफ के रूटीन में होंगे, या आज जो भी कुछ हुआ वो बेसिकली मेमोरी कंसोलिडेशन हो रहा होता है कि आज हमने दिन में क्या क्या किया है। उसी में हमें कई बार थोड़े झटके भी लग जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अरे हम गिरने वाले हैं और एकदम से आंख खुल जाती है, राइट। फिर आती है स्टेज 3, जहां पर वो डीप स्लीप की स्टेज में व्यक्ति पहुंच चुका होता है। NREM फेज जैसे ही खत्म होता है फिर आता है सेकेंड फेज, जिसको हम बोलते हैं REM, यानी रैपिड आई मूवमेंट। ये एक ऐसा फेज है जिसमें व्यक्ति अपना बिल्कुल सुदबुद हो के सपने में डूबा हुआ होता है। इसमें बहुत ही क्लियर ड्रीम्स आते हैं, यहाँ तक कि वो ड्रीम्स बहुत रियल लगते हैं। तो कभी ऐसे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि सपना देख रहे हैं और हम पसीने पसीने हो गए जब हम उठे, या जब हमने सपना देखा वो इतना रियल था कि हम बता ही नहीं सकते थे कि वो सपना था। तो वो चीज है एक्चुअली हमारे REM फेज में हो रही होती है। REM फेज का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब जब REM फेज स्टार्ट होता है तब तब हमारा ब्रेन एक सिग्नल भेजता है कि हमारे सारे वॉलंटरी फंक्शंस ऑफ हो जाए। तो बेसिकली हमारे नेक के नीचे का जितना भी पार्ट है बॉडी का वो सारा शट डाउन हो चुका होता है फॉर वॉलंटरी पार्ट्स, जिससे कि हमारी नींद में जो भी हमारी मसल्स हैं वो सारे कम्प्लीटली रिलैक्स हो सके और पूरी तरीके से जो सेल्स का रिजुविनेशन है वो हो सके। देखिए दिन भर में हम लोग जो उठते हैं बैठते हैं चलते हैं उन सब की वजह से हमारे मसल्स में टेंशन डेवलप हो जाती है, और उसको रिलीज करने के लिए REM फेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसी होती है स्लीप साइकिल।
1: तो मैम जैसे कि अभी आपने 2 फेज बताए और स्लीप साइकिल का ये प्रोसेस बताया, तो जैसे आपने इसकी टाइमिंग बताई
0: 1.5 आवर
1: की, तो अगर हम बात करें तो ये मतलब कि रिपीट होते हैं?
0: यस yes.
1: है ना, क्योंकि 1.5 आवर तो पहले एक फेज होगा, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड,
0: yes,
1: है ना
0: exactly.
1: साइकिल में,
0: तो ये साइकिल में चलता जाता है। तो फर्स्ट फेज चला, देन सेकेंड, देन फर्स्ट, देन सेकेंड, देन फर्स्ट, देन सेकेंड। तो इसलिए हमारे यहाँ पर ये रिकमेंड किया जाता है कि आप 1.5 आवर के मल्टीपल में अलार्म लगाए जब आपको उठना है, क्योंकि ऐसा मानिए कि इनमें ना हमारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन वेव्स भी डेवलप होती हैं। और जब ऐसा होता है तब सेकेंड फेज जैसे ही एंड हो रहा होता है और फर्स्ट फेज आ रहा होता है, तो वहां पे जो थोड़ा सा टाइम होता है ना, टाइम ड्यूरेशन, वो एक ऐसी फेज होती है जब आप आसानी से उठ सकते हैं
1: जी।
0: तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि 1.5 आवर के मल्टीपल में आप अलार्म लगाए, लाइक दैट।
1: तो बिल्कुल दोस्तों, देखिए अभी आपने भी ये बातें सुनी और अभी तक मुझे लगता है बहुत से लोगों को ऐसा नहीं पता था कि ये साइकिल भी होता है, है ना, स्लीप साइकिल भी होता है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि बस हम सो गए, हमें सपना आया, फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो सच में रियल है। और कई बार तो सपने ऐसे होते हैं कि हमें डर लगता है कि कहीं ये सच में ही सच तो नहीं है, और जैसे ही नींद जाती है फिर हम थोड़ा सा सांस लेते हैं कि नहीं शुक्र है ये सपना ही था। तो इस तरह से भी होता है। तो लेकिन ये बात अभी पता चल रही है कि ये एक साइकिल है, हमारी स्लीपिंग साइकिल है, जिसमें कि ये सारी चीजें एक पैटर्न की तरह चलती रहती हैं। तो अभी आपने अभी ब्रेन वेव्स की बात की है, तो इसके बारे में हम जरूर जानेंगे कि स्लीप और ब्रेन का क्या रोल रहता है, क्या इसमें जो है मतलब क्या प्रोसेसिंग है। तो लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि एक

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम बहुत ही प्यार के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही इस खास बातचीत को अपनी जिंदगी के साथ रिलेट करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी को और ज्यादा सतर्कता की ओर लेकर चलते हैं, जानकारी की ओर लेकर चलते हैं। तो स्लीपिंग के आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं। तो मैम, अभी आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरह से जो हमारा स्लीपिंग साइकिल है उसके फेसेस रहते हैं और ये साइकिल किस तरह से प्रोसेस करता है, लेकिन आपने बीच में बात की कि ब्रेन वेव्स की जिक्र आपने किया, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि स्लीप का और ब्रेन का जो है क्या कनेक्शन है, किस तरह से ये कनेक्ट रहते हैं या क्या प्रोसेस रहता है इनका?
1: देखिए, ब्रेन तो हमारा कमांडिंग सेंटर है, वो हर कमांड ब्रेन से ही आती है
2: जी।
1: लेकिन जब हम लोग कुछ भी कॉग्निटिव फंक्शंस करते हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस यानी कि जो भी कोई काम कर रहे हैं थिंकिंग के एस्पेक्ट में, प्रोसेसिंग हो गया, एनालाइजिंग हो गया, ऑब्जर्विंग हो गया, ये सारे जो हम आम तौर पे काम कर रहे होते हैं जिनको हम लोग स्किल्स बोलते हैं अपने लेमेन टर्म्स में
2: जी,
1: तो ये बेसिकली इन सभी में हमारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन वेव्स का अपना एक रोल होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी जो बॉडी है उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ही हर इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, तो यानी कि देर इज एन इलेक्ट्रिकल फील्ड अराउंड अस एंड जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अपनी एक वेव है। तो बेसिकली ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है उसके लिए भी हम उसकी वेव्स के आधार पर ही अंडरस्टैंड करते हैं। इसको हम बहुत सिंपल टर्म्स में समझाने का प्रयास करेंगे रुचिका
2: जी।
1: देखिए, हमारे अलग अलग प्रकार की ब्रेन वेव्स हैं जिसकी वजह से हम क्या काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो इम्पैक्ट होता है। जैसे कि हमारी एक अल्फा वेव होती है। अल्फा वेव एक ऐसी ब्रेन वेव है, जब हम इंसान रिलैक्स्ड होता है उस समय पर ब्रेन में अल्फा वेव प्रेजेंट रहती है। अच्छा, इसमें एक वेव ही प्रेजेंट रहे ब्रेन में ये जरूरी नहीं है, अलग अलग वेव्स इकट्ठा भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो अल्फा वेव से अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं तो उसको हम बोलते हैं बीटा वेव। तो बीटा ब्रेन वेव जो है उसकी फ्रिक्वेंसी अल्फा वेव से ज्यादा होती है। बीटा ब्रेन वेव जब होती है तब इंसान कुछ काम कर रहा होता है, कहीं पर फोकस्ड होता है, जैसे कि गाड़ी चलाना या अटेंटिवली कोई काम करना या ऐसी कॉन्वर्सेशन करना जो भी हम लोग कर रहे हैं
2: जी।
1: बीटा वेव से और हायर एक वेव होती है जिसको बोलते हैं गामा वेव। गामा वेव की फ्रिक्वेंसी और भी ज्यादा हाई होती है देन बीटा वेव। गामा वेव तब डेवलप होती है ब्रेन में जब इंसान कोई बहुत ज्यादा हायर कॉग्निटिव फंक्शन कर रहा हो, जैसे कि एक पायलट एक प्लेन उड़ा रहा हो या फिर हम कोई बहुत मैथमेटिकल एल्गोरिदम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरह के जितने भी काम होता है, एक सर्जन ऑपरेशन कर रहे हैं, ये सब चीजें में गामा वेव प्रेजेंट रहती है। फिर अगर हम अल्फा वेव जो एक रिलैक्स्ड स्टेट है, तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारा अल्फा वेव में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, तो हमारे ब्रेन में वो अल्फा वेव आनी बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है बीटा में क्या रहेगा, ओवर थिंकिंग चलती रहेगी, राइट। फिर अल्फा वेव से जब हम नीचे आते हैं तो आती है हमारी थीटा वेव। तो थीटा वेव की जो फ्रिक्वेंसी वो अल्फा से कम है, समझ रहे हैं। तो अल्फा एक प्रकार से एक न्यूट्रल है जो रिलैक्स्ड है, उसके ऊपर बीटा और गामा है और अल्फा के नीचे हमारी स्लीपिंग स्टेट्स आ जाती है। तो उसके बाद आता हमारा थीटा ब्रेन वेव और थीटा ब्रेन वेव में हमारी जो एनआरईएम स्टेज है वो स्टार्ट होती है। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग रिलैक्स भी होते हैं और हम थोड़ा थोड़ा ड्राउजी भी फील करने लगते हैं, थोड़ी नींद आने लगती है और दिमाग नहीं काम करता, जैसे कि स्कूल में स्टूडेंट पढ़ रहा है, टीचर पढ़ा रही है पर स्टूडेंट को नींद आ रही है और जो टीचर पढ़ा रही है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये वो स्टेज है जहां पर बच्चे के ब्रेन में अल्फा और थीटा वेव दोनों प्रेजेंट है। इस प्रकार से जब अल्फा वेव निकल जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि वो एक वेकिंग स्टेट आ जाती है, तो थीटा वेव जब रह जाती है तब हमारी स्लीप साइकिल स्टार्ट होती है, जहां पर हमारी एनआरईएम फेज स्टार्ट होता है। और उससे भी जब हम और थोड़ा नीचे जाते हैं तो हम बोलते हैं उसको डेल्टा वेव। जो डेल्टा वेव है दैट इज रिलेटेड विद आर आरईएम फेज जो हमारी डीप स्लीप स्टेट है। तो इस प्रकार से ब्रेन वेव्स के आधार पे अलग अलग जो ब्रेन वेव्स आएंगी उसके आधार पे इंसान के बिहेवियर्स, उनके फंक्शंस और उनकी स्लीप वेक साइकिल इम्पैक्ट होती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो देख लीजिए कि किस तरह से स्लीपिंग के भी अलग अलग एक प्रोसेसिंग है, क्योंकि ये तो पहले हमने मैथ्स में सुना था लेकिन आज हम इसको स्लीपिंग पैटर्न में भी एंजॉय कर रहे हैं, सुन रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर स्लीपिंग में भी ये अल्फा बीटा गामा थीटा जो है वो काम में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, अक्सर बहुत सारे बच्चों के साथ क्या बड़ों के साथ भी ऐसा होता है, जब हम किसी लेक्चर को सुन रहे होते हैं या कहीं बैठे होते हैं या हमें वो इंटरेस्टेड सा ना लग रहा हो तब भी हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, तो शायद हम उस थीटा वाली स्टेज में पहुंच चुके होते हैं। तो मैम जैसे हम बात करें तो जैसे कि ये स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा थीटा, तो इसमें हमारे लिए न्यूट्रल जो है वो अल्फा है ना। तो जैसे ये साइकिल है, पूरा प्रोसेसिंग है और स्लीपिंग का है, तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये भी जरूरी है कि ये प्रोसेस होना है तो इसके लिए टाइमिंग भी, मतलब स्लीपिंग सोना भी तो जरूरी है। तो अक्सर आज के समय की हम बात करें तो आज के समय में हम नींद तो उतनी ले नहीं पाते, क्योंकि बच्चों की बात करें या बड़ों की ही बात करें, कई बार तो बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है पढ़ाई के लिए, तो वो 10 11 12 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह 4 बजे फिर से उठ जा रहे हैं, तो वो तो प्रॉपर उस साइकिल को पूरा कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि हमारे लिए जो एक सही वाली स्लीपिंग टाइम है या स्लीपिंग है वो किस तरह से हम ले सकते हैं या कितने समय की होनी चाहिए।
1: बिल्कुल रुचिका, आपका जो प्रश्न है बहुत ही वैलिड है, लेकिन उससे भी ज्यादा वैलिड है जो आपने पहले इस प्रश्न से पहले बोला, यानी कि लोगों को इतना है प्रेशर कि वो अपनी नींद को पूरी नहीं कर पा रहे हैं और वो नींद को छोड़कर काम कर रहे हैं या वो पढ़ाई कर रहे हैं
0: जी।
1: सो हम इस पर नजर डालना चाहते हैं
0: बिल्कुल,
1: कि कैसे सोसाइटी में नींद को खोके कुछ काम करने को एक बहुत ही ग्लोरीफाइड चीज मानी जा रही है
0: जी,
1: जो कि बहुत हार्मफुल है। क्योंकि अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हुई, देखिए स्लीप साइकिल क्या है, एक हैबिट है, ये हैबिट बिल्डिंग है, अगर आपने इसकी आदत को बिगाड़ा तो फिर ये बिगड़ती चली जाएगी और उसको सुधारने में बहुत समय लग जाएगा
0: जी।
1: अगर हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो गई तो हमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, हमें फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, दोनों होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा मानिए कि डेफिनेटली होगी ही होगी, क्योंकि स्लीप प्रॉब्लम फिर क्रॉनिक बन जाती है, क्योंकि ग्लोरीफाई किया जाता है कंटिन्यूएशन में, और बच्चा जो है जो 14 इयर्स का है, जो 10th में है, 16 इयर्स का है, 17 का है, जो 12th में है, एंड देन ग्रेजुअली जब वो कॉलेज में जाता है तब फिर उसको रहता है अब तो मुझको रात को नींद ही नहीं आती है, तो चलो मस्ती करते हैं
0: जी,
1: है ना, फोन देखते हैं, कुछ और करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो हमारा यूथ है वो पूरा बिगड़ता जा रहा है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि नींद को सेक्रीफाइस करके आप अपनी ड्रीम्स को अचीव करने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर आप ड्रीम को अचीव कर भी लेंगे तो भी आप अपनी हेल्थ को गवा देंगे, और ड्रीम अचीव करने के बाद, अपना हाई पैकेज मिलने के बाद, वो पैसे मिलने के बाद, आप अपनी हेल्थ में ही उन पैसों को लुटा रहे होंगे
0: जी।
1: तो इस साइकिल से भी बाहर आना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू रुचिका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपने मेंशन किया। नाउ कमिंग टू कि कितने नंबर, कितने आवर्स ऑफ स्लीप की रिक्वायरमेंट रहती है। देखिए वैसे तो ये एज से वेरी करता है, जैसे छोटा बच्चा है तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट तभी हो रहा होता है जब वो सो रहा होता है, तो उसको सोने की बहुत जरूरत है, तो वो उसको आराम से सोने दें। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके जो स्लीपिंग टाइम है, स्लीपिंग आवर्स है, वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर बच्चा पहले स्टार्टिंग में 18 घंटे सो रहा है, फिर 16 घंटे सो रहा है, फिर 12 घंटे सो रहा है, धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर यूथ की बात करी जाए तो देखिए 7 से 7.5 से 9 घंटे के बीच का टाइम बहुत अच्छा है, कुछ लोग 6 घंटे भी सोते हैं। अगर आप हैबिट बिल्ड कर लें टू स्लीप फॉर 6 आवर्स, जो कि आप एक यंग व्यक्ति हैं, अब आप एक एडल्ट हो चुके हैं, तो 6 आवर्स ऑफ गुड स्लीप इज ऑल्सो गुड, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा है। अगर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आपको वो क्वालिटेटिव स्लीप उन 6 आवर्स में भी नहीं मिल पाएगी। तो ये जो एक आर का जो है वो, उसको आई वुड रिकमेंड कि 6 से 9 आवर्स के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, वो वेरी करता है
0: जी बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत ही गंभीर बात आप सभी के सामने रखी है, तो मुझे लगता है कि इस गंभीर बातचीत से निकलने के लिए थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस बहुत ही खास बातचीत के साथ। तो आज की इस बहुत ही खास बातचीत को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी जरूर बहुत सारी बातें जान रहे हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जितना चेंज हम कर सके अपने आप को इन छोटी छोटी सी बातों से, उतना ही हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि नींद की हम बात करें तो आज के समय में ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। कई बार बच्चे सोना चाहते हैं तो पेरेंट्स सोने नहीं देते हैं, और अगर यूं बात करें हमें जब मतलब कि जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ जाती है तो वैसे वैसे हमें खुद को भी लगता है कि नहीं। और एक बात कही भी जाती है मैम कि अभी अगर आप सोएंगे तो बाद में जागना पड़ेगा, अभी आप अगर जागेंगे तो बाद में आराम से सो सकते हैं। मतलब कि आराम कर सकते हैं, कहने कहावत के तौर पे कहा जाता है।
1: लेकिन जब जब आराम करने की बात आएगी तब आराम
0: तब हम हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के
1: तब परेशान रहेंगे कि नींद ही नहीं आ रही है, अब आराम कैसे करें।
0: तो दोस्तों कहने का मतलब एक ही है कि हम कहने को तो सही है, मतलब कि मेहनत करना जरूरी है, लेकिन अपनी हेल्थ के उस पे बिल्कुल भी नहीं, मतलब हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, हेल्थ को साथ में लेकर चलकर भी हम बहुत सारी मेहनत कर सकते हैं। तो ये बातचीत तो खैर बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हाँ अपनी मेन मुद्दे पे आते हैं। तो मैम अभी आपने बात की थी कि स्ट्रेस की बात की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की, तो स्लीपिंग के साथ ये किस तरह से रिलेट होता है? यानी कि स्ट्रेस तो आज की डेट में हर किसी को परेशान करता ही है। छोटी छोटी बात जब हम मन में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का रूप ले लेती है। तो हमारी स्लीपिंग को स्ट्रेस किस तरह से इम्पैक्ट करता है?
1: देखिए, नींद एक नेचुरल मैकेनिज्म है। ये प्रकृति ने ही एक ऐसा नियम बनाया है कि सिर्फ इंसान नहीं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सोएगा, जिससे कि उसकी बॉडी को एक वापस से वो अपनी बैटरी रिचार्ज करेगा। क्योंकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, नर्वस सिस्टम, मसल्स है, वो सब भी तो काम कर रहे हैं, उनको भी रिलैक्स चाहिए। और ये हम भूल जाते हैं, हमें लगता है सिर्फ हमारा साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी ही है जो जी रहा है, पर हमारे भीतर के जो भी ऑर्गन्स हैं हमें उनका भी ख्याल रखना, क्योंकि वो भी हमारा उतना ही ख्याल
0: रखते हैं। बिल्कुल।
1: तो ये प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से ही हमें नींद आनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, आती ही नहीं।
0: एक बार पैटर्न बिगड़ गया,
1: मुश्किल
0: हो जाती है।
1: अब देखिए, इसका साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है नींद का। नींद इंसान को तब आती है जब वो अल्फा स्टेट में एटलीस्ट रहे। अल्फा स्टेट से ही वो थीटा में जा सकता है, वो बीटा से सीधा थीटा में नहीं जाएगा। बीटा के बाद अल्फा आएगी, अल्फा के बाद आएगी थीटा, तभी आएगी नींद।
0: जी।
1: अब अल्फा में

0: हमारी जो हाइजीन है वो तो खैर रख लेते हैं, लेकिन ये स्लीपिंग हाइजीन का थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में जानना तो बहुत जरूरी है।
1: देखिए आपने ये स्लोगन सुना होगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, है ना? तो ये जो है ये कम्प्लीटली इन सिंक है विद आर डे नाइट साइकिल। सो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, जैसा हमने बताया शुरुआत में मेलाटोनिन। तो अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को डे और नाइट की साइकिल के साथ अलाइन करेंगे तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर टेकिंग केयर ऑफ आर स्लीप वेक साइकिल, क्योंकि वो चीज क्या है ना, वो नेचुरली हमारी बॉडी उसको सिग्नल देती है। दूसरा, हमारा डेली का जो दिन का जो शेड्यूल है उसमें हमारी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, इसलिए व्यायाम बहुत जरूरी है, एक्सरसाइजेस करो, नेचर वॉक करो। सुबह सुबह उठते ही लोग कहते हैं आप सूर्य नमस्कार करो, क्योंकि वो आपके अंदर एनर्जी को बढ़ाता है, तो दिन भर आप जो काम करोगे उसके लिए आपके भीतर एनर्जी रहेगी। और रात को उस एक होती है मून, जैसे कि सूर्य नमस्कार है वैसे एक चंद्र नमस्कार है, तो वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। तो शाम को जब आप करें तो आप योगा में चंद्र नमस्कार करें। ठीक इसी प्रकार से आप मॉर्निंग में आप जिम जाएं लेकिन शाम को जिम ना जाए, क्योंकि जिम जाकर क्या होता है, लोगों को लगता है हम थक जाएंगे तो सो जाएंगे, लेकिन नहीं, जिम जाने से हमारे शरीर में हमारा एड्रेनलिन बढ़ता है जिसकी वजह से मेलाटोनिन कम हो जाता है। सो उससे क्या होगा, क्या हमें पीसफुल माइंड रहेगा? हमारा नहीं रहेगा, हमारे ब्रेन में वो अल्फा वेव डेवलप ही नहीं हो पाएगी, वो हाई एनर्जी वाली वेव रहेगी जिसकी वजह से हम फिर से हमारी स्लीप साइकिल खराब हो जाएगी। तो स्लीप हाइजीन में ये बहुत ध्यान रखना है कि आप जो भी एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं उसमें आप जो हाई बीट चीजें हैं उसको आप मॉर्निंग के टाइम पे करें, और जो रिलैक्स वाली चीजें हैं, हाँ जैसे कि हल्का योगा हो गया या फिर मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया, ये चीजें आप लोग शाम को करें, जो आपको हेल्प करेगी टू फॉल इनटू स्लीप। इसके अलावा देखिए, खाना पानी पीना आपका फोन, ये अलग अलग चीजें हैं जिनका इस्तेमाल, जैसे अगर आपका सोने का समय आ रहा है तो इनको आप धीरे धीरे कम करना शुरू कर दें। शाम होते ही आप अपनी लाइट्स को डिम कर दें घर की, आप हल्की लाइट्स जलाएं जैसे कि लैंप हो गया, आप अपने फोन से दूर रहें और आप हल्का खाना खाएं, और फिर या जो भी अच्छा सा खाना खाइए, और सोने से करीब 2-3 घंटे पहले आप खाना खा चुके होने चाहिए, और उसके बाद पानी का कंजम्पशन थोड़ा कम करेंगे शाम को। दिन के समय पे खुला पानी पियेंगे लेकिन शाम को कम पियेंगे, क्योंकि फिर नींद टूटती है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो उससे आपकी स्लीप क्वालिटी खराब होती है। तो इन कुछ चीजों का आप ख्याल रखें, साथ में जो आपका रूम टेम्परेचर है वो आपका जो भी क्लाइमेट है वहां पे जो भी वेदर है उसके अनुकूल होना चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए, और उसके साथ साथ एक कंफर्टिंग बेड हो, कंफर्टेबल चीजें हो, आपके पास रजाई हो, आपके पास कंबल हो, सॉफ्ट राइट काइंड ऑफ पिलो हो, वरना आपको नेक में पेन रहेगा और आप सो नहीं पाएंगे। सॉफ्ट म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी म्यूजिक आते हैं जिसमें आपके थीटा वेव्स रहते हैं रिकॉर्डेड, तो वो थीटा वेव्स वाले अगर आप म्यूजिक प्ले करते हैं या नेचर साउंड आप प्ले करते हैं तो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू स्लीप, क्योंकि वो आपको रिलैक्स करते हैं। तो रिलैक्स करेंगे यानी कि अल्फा वेव प्रोड्यूस होगी, और अल्फा वेव प्रोड्यूस होगी तो थीटा वेव आने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और जिनको दिक्कत होती है ना वो बुक रीड कर सकते हैं, जिनको बुक रीडिंग बोरिंग लगता है, दिस इज फॉर देम, देयर आर सम पीपल हु लव टू रीड बुक्स, ये उनके लिए बिल्कुल ये उनके लिए नहीं है, पर जिन लोगों को पढ़ाई से दिक्कत है वो पढ़ना शुरू कर दे
0: नींद आ जाएगी
1: डेफिनेटली। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, एंड ऑब्वियसली रोजिका ये सब जानते हैं कि फिर कैफीन का यूसेज हमें कम करना है।
0: बिल्कुल जी दोस्तों, तो बहुत ही खास बातें आप सभी ने जानी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी के साथ मिलते हैं, और आप सभी उतनी देर के लिए एंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: दोस्तों इस प्यारे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ। तो आइए अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं आगे और नींद की हम बात कर रहे हैं। तो नींद तो सबको प्यारी होती है, खास करके एग्जाम्स टाइम में बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है। तो मैम अभी आपने बात की कि जैसे हम हमारा जो सोने का टाइम होता है तो उस टाइम हमें जो है फोन खुद से दूर रख देना चाहिए, लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है कि फोन दूर रखते, क्योंकि हमें जरा सी नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई देती है तो फटाफट से हम फोन उठा के जो है देखने लग जाते हैं कि किसका मैसेज आया है और किस चीज की नोटिफिकेशन है। तो मतलब वहां पे हम खुद को मैनेज नहीं कर पाते। तो इसमें हम किस तरह से अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे हम अपनी उस टाइम स्लीपिंग को ध्यान में रखें?
1: देखिए हमारे पास जब फोन आया ना तो फोन में लोगों ने बहुत डिफरेंट प्रकार के फीचर्स डाले
0: जी,
1: लेकिन अफसोस की बात यह हम उन फीचर्स का सही तरीके से उपयोग नहीं करते
0: जी।
1: तो जब व्हाट्सएप है या कोई भी ऐसी चीज है तो बेसिकली हर एप्लीकेशन की सेटिंग्स में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको नोटिफिकेशन साउंड जो है आप उसको ऑन ऑफ या वाइब्रेशन पे कर सकते हैं। तो जहां तक रही मैसेजेस की बात तो आप अपने फोन के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हैं और आप अपने स्लीपिंग मोड को भी एक्टिव कर सकते हैं, एक स्लीप मोड भी आता है। आप अपना इंटरनेट ऑफ कर सकते हैं जिससे कि जो भी हो इंस्टाग्राम हो कोई भी प्रकार का सोशल मीडिया हो वहां से लोग आपको अप्रोच ना कर पाए, और जो सिर्फ इमरजेंसी वाले हो आपके पेरेंट्स हो या कोई तो वही आपको रीच आउट कर सके अगर कोई इमरजेंसी या परेशानी की बात हो तो।
0: जी बिल्कुल। और साथ ही मैं ये भी जानना चाह रही थी कि जैसे हमने बात की कि हमें कम से कम जो है 6 से मतलब कि 9 घंटों की जो है नींद लेनी चाहिए, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहती है, लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमारा दिन में भी हम बैठे हो तो सोने का मन करता है, जरा सा बेड पे बैठे कि लेटे या नींद आ जाती है, जरा सा बैठे कि नींद आ जाती है। तो वो मतलब एक पैटर्न बिगड़ा हुआ ही कह सकते हैं, जब पैटर्न वो डिस्टर्ब हो जाता है तो हम ज्यादा ही नींद में चले जाते हैं। तो 9 के फिर 18 घंटे ही मान के चलो, तो उसे हम कैसे समझे या किस तरह से उसे किस वे मिले?
1: देखिए जब भी कोई चीज बैलेंस से दूर जाएगी उसका डिसऑर्डर में तब्दील होना लिखा है। अब ऐसे समझिए कि जब भी ड्यूरेशन इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए या कम हो जाए, जैसे हम लोग बहुत पहले भी इस बारे में बात करी है, जब भी ऐसा हो तो यानी कि कोई ऐसी चीज है जो डिसऑर्डर का शेप ले रहा है। तो जब नींद बहुत ज्यादा आए वो भी एक डिसऑर्डर का हिस्सा है, और जब नींद कम हो जाए वो भी एक डिसऑर्डर का हिस्सा है, और इसका डायरेक्ट एक इम्पैक्ट पड़ता है फ्रॉम स्ट्रेस
0: जी। तो दोस्तों ये स्लीपिंग डिसऑर्डर में जाके जो है रिलेट हो जाता है, तो इसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि स्लीपिंग का ये एक बातचीत ही इतनी गंभीर है और लंबी है और गहराई से जानने वाली बातचीत है, क्योंकि ये नींद का इशू जो है ना ये सबके साथ है, और चाहे बड़े हैं चाहे बच्चे हैं चाहे कोई भी है, किसी भी एज ग्रुप के साथ हम निकल रहे हैं तो हर किसी को ये फेस करनी पड़ती है। तो ये बातें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी, तो इसलिए हम आपको एक एक बात जो है गहराई के साथ बताना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि शॉर्ट वे में बता के जो है, एक कहते हैं ना कि सर का बोझ नहीं उतारना है हमें, धीरे धीरे करके आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सारी बातें आप सभी तक पहुंचानी है, ताकि आप अपनी जो एक डेली रूटीन है उसे भी एक सही ढंग से सेट कर सके और अपनी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, सारी चीजों को न्यूट्रल वे में जो है बैलेंस कर सके। तो ये जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है ये हम अगले एपिसोड में आप सभी के साथ इस पे एक डिटेल में बातचीत करेंगे, गहराई से जानेंगे कि स्लीपिंग डिसऑर्डर जो है वो क्या होता है, किस तरह से होता है और इसमें क्या प्रोसेसिंग रहती है, कैसे हम खुद को इससे बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हमने बात की है स्लीपिंग की। तो देख लीजिए दोस्तों नींद कहने के लिए छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी आज हमने गहराई को जाना है तो बहुत ज्यादा है। तो मैम आज की ये बहुत ही खास बातचीत मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्तों के लिए बहुत ही एक इम्पैक्टफुल रही होगी, है ना, अपनी जिंदगी में प्रभावशाली रहेगी अगर वो चाहेंगे, क्योंकि जिसे अपनी हेल्थ से लगाव होगा, जो चाहते हैं कि हम हॉस्पिटल से चक्कर ना लगाएं, तो वो जरूर अपने फोन को भी खुद से दूर रखेंगे और वो नोटिफिकेशंस जो है वो भी ऑफ रखेंगे। तो आज के कार्यक्रम का समय फिलहाल जो है हमारा इस समय अलविदा लेने का हो चुका है। तो बहुत ही खास बातचीत आप सभी के साथ साझा की है दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर से आप सभी के साथ मुलाकात होगी, लेकिन लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको इस बात से संबंधित अभी भी कोई कंफ्यूजन है, अभी भी कोई डाउट है, तो आप मैम के क्लिनिक में जाके उनके साथ जो है डिस्कस कर सकते हैं या उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैम अपने सेंटर का और फोन नंबर जो है हमारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
1: जी, सेंटर का नाम है वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर और फोन नंबर है 9354134057। ये शीला धर्मशाला में स्थित है।
0: जी दोस्तों, तो आप सभी को हमने अपना नंबर भी बता दिया है और सेंटर का पता भी बता दिया है। तो अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो जरूर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं या आप जो है सेंटर में जाके डायरेक्ट जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो फिलहाल दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशिका
0: कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष 3 विभागों से कुल 82 शिक्षकों और शिक्षाविदों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
1: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देश भर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत बनाए रखें। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, फिर खेलकूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सके और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास भारतीय शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में मदद कर रहा है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: खोलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ

0: गोरिया आ करा गोरिया आ
1: गोरिया।
2: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
3: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
4: कैसे?
5: कर्तव्य।
4: अरे, सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
6: समझ गए सर।
4: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
7: चाय मांगी थी, क्या है ये?
8: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
7: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है और झेलना हमें पड़ता है।
9: अब क्या देख रहे हो पापा?
7: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
9: किससे?
7: हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
9: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
8: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
10: सोलह सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
11: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समां हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोते हो रेडियो गुंजन धर्मशाला, तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियों रेडियो कुंजन धर्मशाला के नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां थोड़ी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडे पेश नजर।

सोहने सोहने पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदां ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करदे रहो पंजाबी गीत।

यह रेडियो कुंजन धर्मशाला 91.2 MHz इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

पंजाबी गीतां दा ए सफर तुसी तय कीता रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ते श्रोतियो, हुण साडा ए सफर इत्थे खत्म हुंदा है। सानू दिओ इजाजत, धन्नवाद। तुसी सुनदे रहो रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन दी।

0: ये क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ मुंह

0: अरे गोरिया प्लास्टिक कहाँ गई? आकर गोरिया, आकर आ आ।
1: गोरिया,
2: गोरिया।
0: आकर, आकर,
2: आकर गोरिया,
1: गोरिया, आ,
2: गोरिया आकर आ,
1: गोरिया।
3: गोरिया।
4: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए। प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
5: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
6: कैसे?
7: कर्तव्य।
6: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
1: समझ गए सर।
6: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
12: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
13: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

कानवी दशमलव 2 MHz पर AI दोहा सार यंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर हुई कार्यक्रम लेकर माटी दी महक दर्शो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तोहा सारे यंदा ही शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। तो जरूर इसी नमस्ते कने तोहा सारे भी माटी दी मेह कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ सकते कन्ने हाँ कन्ने गलबात जड़े से जरूर करी सकते। तो इसी गलबात जो हाँ अगे बढ़ाने कन्ने अपने कार्यक्रम दा जिड़ा आगाज है से कन्ने क्योंकि एक प्यारे दे गीत कन्ने कार्यक्रम दा आगाज हुई है तो कार्यक्रम दा जिड़ा सफर है से और भी प्यारा लगता है। तो जरूर इस सफर जो प्यारा बनाते न इस गीत कन्ने तो हाँ सारे इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे शुरुआत शुरुआत अहाँ करी थी ये कन्ने जेड़ा पहले श्रोता ने से अहाँ कन्ने जुड़ चुके हो ना कर दें तीना कन्ने गल बात। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी नमस्ते जी
1: जी क्या हाल चाल है
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च जी तुहां अपनी रेडियो सेट दी आवाज कम करी लेंगे
1: जी
0: कर ली आवाज कम
1: जी
0: जी तुहां कुछ दे रहने वाले ने कने तुहांदा प्यारा दिया ना क्या है जी
1: जी नमस्कार
0: जी तुहां कुछ दे रहने वाले ने जी
1: असमा जी का नरवाना
0: जी नरवाना थी
1: जी
0: जी तो अपना प्यारा दिया नाम भी जरूर दसी दिया जी
1: मेरा नाम जी बबलू
0: जी तो क्या काम कार तुहा लगे या क्या करा दे आज
1: तो बस हुन बैठे गा हूं बड़ी
0: जी जी जी तो आज कुन दिया गीत जेड़ा इसे सुनना पसंद करके तुहा
1: हां जी वो गाए गाना सुना दे सजना वो तेरे ताई सजना
0: जी सजना वो सजना तेरे ताई सजना
1: जी
0: जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचान दें जी जुने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा
1: जी
0: ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो शो तो फिर ते हम वापिस अपनी गलबात ऊपर आई आंदे न कने तुहां जो थोड़ा दे अपनी गलबात दी ओर लेकर चलते न क्योंकि हर दिन अहां वास्ते खास होंदा अजकना जेड़ा दिन है से कयो खास है तो सारे भी इस दिने जो खास तरीके ने जेड़े से बना दे होने न अजकने दिने दी अहां गल करिए 5 सितंबर दी ता कुथी ना कुथी ये शनिवार दा दिन तुहां जरूर इंजॉय जेड़े से करा दे होने न ता आज अहां जेड़ा शिक्षक दिवस जेड़ा बना दे न कने तुहां सारे जो ही बड़िया सारिया शुभकामनाएं हो क्योंकि एक एक दिन ही जेड़ा से अहां वास्ते खास नहीं होंदा हर दिन अहां जो हर दिने जो खास बनाना है क्योंकि जिंदगी का जेड़ा सफ़र है से हर दिन अहां वास्ते खास है कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र जहां कने जुड़िया गलबात जेड़ा से तुहां तक अहां पहुंचाई थी है कने जुड़ने वास्ते जेड़ा अहां दा नंबर है सभी नोट तुहां जेड़ा से करी लिया नंबर है 701-811-7091 नंबर तुहां तक पहुंचाई था है कने बाकी जेड़ा काम है से तुहांदा है तो जल्दी जल्दी कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा तो फिर ते अहां अपने कार्यक्रम दे सफ़र जो थोड़ा दिया अगे बढ़ाते हैं क्योंकि जेड़ा तुहांदियां फरमाइशां ने सभी जरूर तुहां तक पहुंचानियां ने कने गलबात जेड़ा है सभी तुहां तक पहुंचानी है तो गलबात ते कने कने जेड़ा तुहांदियां फरमाइशां ने तिना जो भी तुहां तक पहुंचांदे ने कने ये सफ़र जेड़ा है से तुहां तक रहंदा है 2-3 बजे तक तभी ना समय दी जेड़ा वेस्ट किते तुहां जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफ़र जहां कने जुड़िया कने अहां पहुंचा दें तो तक ये प्यारी देई फरमाइश तुह सारे भी इंजॉय करा कने ने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

क्योंकि समय जड़ा से बड़ा कीमती है, समय के अनुसार चलना भी अहम वास्ते जरूरी है। तो जुड़ने वास्ते जिहड़ा नंबर है से फिर तो तुह तक पहुँचाई देना, क्योंकि नंबर तुह तक पहुँचाऊंगा ताई तो तुह इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते। नंबर है 701-811-7091। तो ये नंबर तुह तक पहुँचा देना, कने गलबात जिहड़ा अज अहां करा देन से करा देन शिक्षक दिवस के बारे च। तो हर साल जिहड़े से 5 सितंबर जो अहां ए दिन जिहड़े से सेलिब्रेट कर देन, कने तुहां भी इस दिन जो खूब सारा जिहड़े से सेलिब्रेट करा दे होने न, बच्चों के जिहड़ा चेहरे न तिना पर भी खुशी होनी है, कने बच्चों का ही ये दिन है अजकना, क्योंकि बच्चे जिहड़ा न खूब सारी मस्ती भी करते न, कने जिहड़ा प्रेरणा है सभी जरूर लेंदे न। तो शिक्षक की अहां गल करिए जिहड़ा जीवन की सीख है से अहां जो जरूर शिक्षक दिंदे न, कने अगे बढ़ने की जिहड़ा प्रेरणा है सभी अहां जो अहां दे जिहड़ा शिक्षक हैं तिना ते मिलती है। कने अगर अहां अपने माता पिता की गल करिए जालू बच्चा छोटा होंदा तालू ते ही माता पिता जिहड़े से अपने बच्चे जो अच्छा बुरा ज्ञान जिहड़े से दिंदे न, हर चीज़ का जिहड़ा ज्ञान है से पेरेंट्स अपने बच्चे तक पहुँचाते न। तो जरूर तुह भी इस दिन जो सेलिब्रेट करा, कने अहां भी जिहड़ा गलबात है तुह तक पहुँचा देना, कने तुह सारे भी इस कार्यक्रम के सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते, कने अहां कन्ने गलबात जिहड़े से जरूर करी सकते। गलबात कन्ने अहां जिहड़ा तुह दियां फरमाइशां न सभी जरूर तुह तक पहुँचानियां न, क्योंकि फरमाइशी कार्यक्रम है सभी जरूर तुह तक जिहड़ा तुह दियां फरमाइशां न सभी पहुँचानियां न। तो चलते न अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना, तुह भी इंतजार जिहड़ा है से जरूर करा देना कि कालू दिया जिहड़ा तुहंदी फरमाइश है से तुह तक पहुँचती है। तो इंतजार जिहड़ा है से खत्म होंदा है, कने अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना।

0: तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहा सारे सुनिया ए प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश फिर यहाँ वापिस आई हो ना अपनी गलबात ऊपर कने तुहा भी मेरी गलबात कने जरूर जुड़ी होने ने कने सुना दे होने ने कने गीत संगीत भी सुना दे होने ने क्योंकि गीत संगीत तहां जो हमेशा कुथी ना कुथी एक दुए ने जोड़ी करी रखते हैं कने आज अहां जिहड़ा कार्यक्रम च गलबात करा दे न सभी तुहां सुनी ली होनी है पर फिर ते अहां एक बारी तुहां तक पहुँचाई दे न क्योंकि कई बार श्रोता होंदा कि काम च बिजी होंदे तो अपने काम दे चक्कर च कई बार रेडियो सैट ऑन करना भूल जाते या थोड़ा जिहा बिजी हो जाते तो अगर तुहां अपना रेडियो सैट ऑन नहीं किया तो जल्दी जल्दी ऑन करा कने अपना जिहड़ा माटी दी महक कार्यक्रम है उसको सुनना जिहड़ा से शुरू करी दिया गलबात अहां करा दे न राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे च ता 5 सितंबर की गल करा दे न अजकल जिहड़ा किताब दा अहां पन्ना पूरी सकते या क्योंकि जिंदगी भी अहां दी किताब ही है हर दिन कोई ना कोई जिहड़ा किताब दा पन्ना जिहड़ा से अहां पलट दे न ता कुछ ना कुछ अहां जरूर सीख दे इस पन्ने ते ते आज ता जिहड़ा अहां गलबात करा दे न से करा दे न राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दे बारे च तो जरूर तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहां कन्ने जुड़िया कन्ने अहां कन्ने गलबात जिहड़ा से जरूर करा तो शिक्षक दी अहां गल करिए ता कई बार होंदा ना कि बचपन दियां जिहड़ा यादां न से फिर ते ताज़ा हो जांदियां न कने तुहां दियां भी जरूर ताज़ा होई होणियां ने कने जिहड़ा बच्चे न तो तिन्हां दियां तां यादां बचपने दियां चली जांदियां से अपना जिहड़ा अजकणा दिन है उस जो जरूर इंजॉय करा देणे ने या कुथी ना कुथी अजकणा जिहड़ा दिन है से अहां दे जिहड़ा पेरेंट्स हन अहां दे जिहड़ा गुरु हन तिन्हां जो मान सम्मान देने वास्ते अहां ये दिन जिहड़ा है से खास तौर पर बना देन कने तुहां सारे भी इस दिन जो खास तौर पर बना दे होने न कने इसी कन्नै अज तुहां जिहड़ा है से अपने अपने गुरुआं वास्ते कोई ना कोई जिहड़ा स्पेशल गिफ्ट भी तैयार किते होना है चाहे से खुद तैयार किते है चाहे से तुहां शॉप ते लिया मतलब तुहां उस तरीके ने जिहड़ा है से अपने जिहड़ा गुरुआं दिन जो मान सम्मान देने वास्ते फुल ऑन तैयारी जिहड़ा है से कीती होनी है तो जरूर तैयारी करना भी जरूरी है क्योंकि एक जिहड़ा शिक्षक है से अहां जो अहां दी सपनियां दी ओर लेकर जांदा है अहां जो अच्छे बुरे दा ज्ञान जिहड़ा है से अहां जो शिक्षक जिहड़ा है से दिंदा है कने सही शिक्षक अहां जो अहां दे जिहड़ा सपने न अहां जितने भी सपने दिखदे न तिन्हां जो साकार करने वास्ते फुल ऑन अहां दी जिहड़ा मदद है से करदा है या अहां कन्ने हमेशा कंधे ने कंधा मिलाई करी चलता है या अहां दा जिहड़ा साथ है से जरूर दिंदा है कई बार होंदा ना कि जिंदगी है जिंदगी दे सफर च बड़े सारे उतार चढ़ाव जिहड़ा ने से चले रहिंदे पर शिक्षक अहां जो तिन्हां उतार चढ़ावां दा जिहड़ा ज्ञान है या तीश अग्गे किन्ना बढ़ना है सभी अहां जो जरूर सिखांदा है कने माता पिता अहां दे तां हमेशा अहां जो अच्छा बुरा ज्ञान जिहड़ा है से दिंदे न कने अग्गे बढ़ने दी जिहड़ा प्रेरणा है सभी अहां जो अपने माता पिता ते जरूर मिलती है तो इसी कन्नै अहां फिर ते अपनी जिहड़ा गलबात है से इत्थों ही रोकनी है कन्नै तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहां कन्नै जुड़ी सकदे कन्नै अहां कन्नै गलबात जिहड़ा है से करी सकदे पर अहां फिर ते अपनी गलबात जो बढ़ांदे न कन्नै तुहां जो अगली फरमाइश दी ओर लेकर चलदे न तुहां सारे भी इस प्यारी दिया फरमाइशा जो जरूर इंजॉय करा पर जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़िया तो श्रोता ही कहां दे जुड़ी हो न कर दें तिना करने पहले गलबात फिर फरमाइशा दा जिहड़ा दौर है से कर दें पूरा हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है
1: जी बिल्कुल जी धन्यवाद जी
0: जी जी तो हम कुछ ते बोला थे कने तो हम दा ना किया है जी
1: मैं बोला थी इंदू सिद्धवाड़ी तो
0: जी
1: फिर मुझे पता आज पता टीचर डे पर होने गल करा दे
0: जी जी
1: मैं भी हूँ कुछ जी है करे कने मैं ऑन किता रेडियो
0: जी अच्छा तो हम भी कुछ गए थे आज घूमना फिरना
1: आज थी स्कूला मीटिंग ना छोटे जे फंक्शन भी था
0: जी
1: तो बस उसी गई थी मीटिंग अटेंड करना
0: जी पहले तो हम जो शिक्षक दिवस दिया ढेर सारी शुभकामनाएं उन जी
1: है जी, बढ़िया बढ़िया मुबारक। मैं इससे कुछ बोलना चाहती थी,
0: जी जी
1: दो लाइना
0: जी जरूर जी
1: बोलते। मिटाकर खुद को जो हमें काबिल बनाते हैं, ज्ञान की मिसाल से दुनिया में दीप जलाते हैं। मिटाकर खुद को जो हमें काबिल बनाते हैं, ज्ञान की मिसाल से दुनिया में दीप जलाते हैं। नमन है ऐसे गुरुओं को इस मंच पे मेरा, जो हमारी आंखों के बंद भाग्य जगाते हैं।
0: जी जी जी बड़ी प्यारियां जेड़ा लाइन ने से तोहा श्रोता तक रखी है ना जी।
1: थैंक यू जी।
0: जी जी ता तोहा जो भी कने तोहा भी यही है कि अपने बच्चे वास्ते एक प्रेरणा है ना जी, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: पहले
1: जी
0: गुरु ता हंदा जेड़ा पेरेंट्स एंड सही होंदे ना जी।
1: जी बिल्कुल। बोलते पहले गुरु साढ़े माता पिता, दूजे गुरु साढ़े टीचर, और
0: जी
1: ना, और लास्ट हार्ड जेड़े सबसे बड़े गुरु ने चाहे परमेश्वर, जिंदगी सांझे सारे बनाया है ना
0: जी
1: जी। तो हाँ, हरी नहीं रहना हमेशा अपने मम पे, क्योंकि माँ जी ये जो अपनी शीतल दी अपनी ममता दी, तो उन्हें तो अपनी माँ का कर जहाँ कदम तर सक देखना। साढ़े अगर गल करिए साढ़े पेरेंट्स पापा दी, तो
0: जी
1: पापा दिखा अपने खून पसीने की कमाई सिंची के सांझे वास्ते, अपनी प्रॉपर्टियां जोड़ दे, हाड़े वास्ते पैसा जोड़ दे है ना।
0: जी जी
1: वो तो अगर गल आई गई गुरु तो गुरु दिखा ना हाड़े हाँ पंच तत्व च विलीन हो, तो हाड़े गुरु जो सांझे दस दे कि आहा मतलब आहा जे पंच तत्व बनता हाँ जिस क्या क्या हाँ जिस मतलब कि अंधेरे तू जाने चाहे है ना।
0: जी
1: तो
0: जी
1: ने सबसे बड़ा गुरु परमेश्वर जिन्नी सांझे बनाया और सबसे बेस्ट बनाया हाँ जो कि तीन हाँ जो हर एक चीज दी, मतलब चढ़ना बोलना भी दसिया, मतलब गलाना भी दसिया, जो और जीबा दिखा सह गलांदे नहीं अह गलाई भी सकते, और हांजे च बुद्धि भी है बल भी है।
0: जी जी
1: सबसे बड़ी गल कि हांजे च बुद्धि दी और बोलने की क्षमता दी, और सबसे बड़ा हाड़ा परमात्मा पर जा। तो बोलते हाँ कुछ नहीं कर सकते, तो एक हाँ अज का दिन तो उन्हें अपना एक नमन तो जरूर कर सकते।
0: जी जी जरूर जी, क्योंकि ये चीज़ भी अहन जो शायद अहन दे माता पिता भी सिखाते हैं, अहन दे गुरु भी सिखाते हैं, जालू भी अहाँ स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जरूर पहला जेड़ा तिना दी गल होंगी से यही होंगी कि तिना जो विश करना है ना जी।
1: जी
0: जी तो हर चीज़ का अपना अपना महत्व है ना जी, पर से अहाँ पे
1: जी
0: निर्भर
1: बिल्कुल
0: करता है कि अहाँ किस प्रकार अपना जेड़ा महत्व है से रख देन, या कोई भी अहाँ जो कोई भी ज्ञान दिंदा है तो अहाँ जो किस प्रकार सीख दे ना जी।
1: जी बिल्कुल।
0: जी तो इंदु जी आज तो हाँ कुंदिया गीत जेड़ा ऐसे सुनना पसंद करके। हेलो हेलो
1: हाँ जी, मैं
0: जी, आज कुंदिया गीत तो हाँ सुनने जी।
1: तो है ना व्हाट्सएप कर दिए कि मैं तो सोचे नहीं हाँ, मैं एकदम आई कहना एकदम फोन करता, मैं लगा टीचर डे पर करता, मैं थोड़े दो शब्द बोलने थे, मैं था बस
0: जी
1: उस
0: जी
1: करके मैं डायरेक्ट कॉल करी थी, मैं सोचे नहीं था लग कुछ भी। अगर
0: जी जी जरूर जी, कोई ना जी, कोई
1: कोई गुरु पर ही है कोई गाना अच्छा गया तो हाँ वही प्ले कर दिया।
0: जी जरूर जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा
1: तुम्हारा बड़ा बड़ा धन्यवाद जी।
0: जी। दर्शो तो वहां भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं, कने तो हां जो ले करी चलते हैं अगली फरमाइश दी, और सुनते नहीं सब प्यारी दी फरमाइश है जो तुम सारे भी इंजॉय करा।

श्रोताओं तो सारे ही सुनिया एक गीत, फिर त्यहाँ वापिस आई हूँ ना अपनी गलबात उपर। तो इस गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने, तिना दा नावे मुस्कान जी। तो जरूर मुस्कान जी तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचाई, कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय की। इसी कने अज अहाँ जिहड़ा कार्यक्रम च गलबात करा दे न से करा दे न राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे च। तो तुहां इस दिने जो खूब जिहड़ा है इसे इंजॉय करा दे होने न, कने इस दिने जो खास तरीके ने भी बना दे होने न। हर कुसी दा जिहड़ा बनाने दा तरीका है से अपना अपना है, पर जिहड़ा शिक्षक हन शिक्षकां दी अहां गल करिए तो कुथी ना कुथी से अहां जो अंधेरे ते जिहड़ा है से उजाले दी ओर ले करी जांदे न। जिहड़ा एक दीए हाँ उस दी जिहड़ा दीए जो जगांदे न तो कुथी ना कुथी से जिहड़ा दीए दा दीपक है से अहां जो जिहड़ा उजाला है से दिंदा है। उसी प्रकार जिहड़ा अहां दे शिक्षक हन से अहां जो उजाले दी ओर ले करी जांदे न, पर से अहां पर निर्भर करदा है कि अहां किस प्रकार जिहड़ा ज्ञान है से हासिल करदे न या पढ़ाई दी ओर ध्यान दिंदे न। क्योंकि अजकने दौर की अहाँ गल करिए तो कुछ ना कुछ अहाँ अपना जिहड़ा ज़्यादा समय है से मोबाइल फोन च दे दे, या अपना जिहड़ा पढ़ाई च ज़्यादा समय ना दे करिए अहाँ मोबाइल फोन च बिजी है न। फिर यहाँ ये सोच विचार करते न कि अहाँ जिहड़ा से पढ़ी नहीं पाते न या अहाँ ये काम नहीं करी पाते न। तो श्रोताओं हमेशा सकारात्मक सोचते न ताई अहाँ अपने जिहड़ा सपने न अपनी जिहड़ा पढ़ाई है उस जो प्रोपर तरीके ने करी पाते न। तो सोच विचार करना अहाँ दा काम है, कने शिक्षक तो अपनी तरफ ते पूरी कोशिश करते न, पर अहाँ जो भी कोशिश जिहड़ा है इसे करनी चाहिए कि अहाँ कोई भी काम करना तो प्रोपर तरीके ने करन, चाहे से पढ़ाई है चाहे से अहाँ दे सपने न। सपने साकार करने वास्ते अगर अहाँ मेहनत कर दे न ताई अहाँ तिना जो साकार करी पाते न, कने अगर अहाँ मेहनत नहीं करके तो अहाँ कुछ भी जिहड़ा से हासिल नहीं करी सकते। तो इसी कने अहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न, कने तुहां जो अगली फरमाइश की ओर ले करी चलते न। ये फरमाइश अहाँ पहुँचानी है इंदू जी तक, कने तुहां सारियां भी इंजॉय करनी है। तो जरूर इस प्यारी दी फरमाइश जो इंजॉय करा, कने इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

अनुदशमलव दो मेगाहर्ट्ज पर ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। इसी कन्ने हाँ फिरी ते वापिस आई हो ना अपनी गलबात उपर, कन्ने तुहां सारे भी ये गीत इंजॉय कीता। कन्ने गीत ते बाद गलबात दी और लेकरी चल दें तो हम जो, क्योंकि गलबात करना भी जरूरी है। तो शो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जेड़ा है से आज यहाँ मनाते हैं ना, आज का दिन जेड़ा है से जितने भी यहाँ दे गुरु हैं, पेरेंट्स हैं या यहाँ दे जेड़ा टीचर हैं, तिना वास्ते ये दिन जेड़ा है से आज यहाँ मनाते हैं ना खास तौर पर, क्योंकि तिना यहाँ जो उंगली पकड़ी करी जेड़ा से चलना सिखाया। अगर हाँ पेरेंट्स की गल करिए तिना यहाँ जो चलना सिखाया, इसी कन्ने अच्छे जेड़ा संस्कार हैं सब यहाँ तक पहुँचाई। कन्ने जेड़ा अक्सर हैं अक्सर जो जोड़ी करी कुथी ना कुथी जेड़ा कोई भी काम में से करना जेड़ा से अहाँ जो अहाँ दे जेड़ा शिक्षक हैं तिना अहाँ जो सिखाया। बड़ा इंसान जेड़ा से अहाँ जो अहाँ दे जेड़ा शिक्षक हैं तिना बनाया। कन्ने इसी कन्ने गल अहाँ करिए अच्छे जेड़ा संस्कार हैं, अच्छा जेड़ा बोलचाल है या अच्छे जेड़ा व्यवहार है सभी अहाँ जो अहाँ दे जेड़ा शिक्षक हैं या अहाँ दे जेड़ा माता पिता हैं तिना अहाँ जो जरूर ये चीज़ा जेड़ा न से यहाँ तक पहुँचाइया। क्योंकि अगर छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे जो अगर अहाँ अच्छे जेड़ा संस्कार हैं से दिन देन या अच्छे अच्छा बोलचाल तिस तक अहाँ पहुँचा देन तो बच्चा भी सही सीखद है। कने अगर अहाँ नकारात्मक वे अगर बच्चे तक से नकारात्मक विचार अहाँ पहुँचा देन तो कुथी न कुथी बच्चा भी सही सीखद है। तो पेरेंट्स की गल करिए तो पेरेंट्स भी अपने बच्चे जो अच्छा अच्छे जेड़ा संस्कार है, अच्छा व्यवहार दें देन या हर चीज़ का जेड़ा ज्ञान है से बच्चे तक जेड़ा से पहुँचा देन। तो तिना गुरुआ जो जेड़ा अहाँ बोली सकते कि तिना वास्ते मान सम्मान वास्ते आज अहाँ जेड़ा ये दिन ने से बना देन। तो ज़रूर इस दिने कन्ने तुहां भी जरूर रेडियो गुंजन धर्मशाला दे इस कार्यक्रम च माटी दी मेह कार्यक्रम दे सफर च अहाँ कन्ने जुड़ी सकते। जुड़ने वास्ते जेड़ा नंबर है से फिर ही ते तुहां तक पहुँचाई देन, क्योंकि नंबर तुहां तक अहाँ बार बार इस वास्ते पहुँचा देन कि कई श्रोता होंगे जेड़ा नंबर तिना तक ना पहुँचे होंदा तो कई बार से जेड़े से इंतज़ार करते रहेंगे कि कल दिया नंबर अहाँ तिना तक पहुँचा देन। तो शो तो नंबर है 7081117091, नंबर फिर ही तुह तक पहुँचाई तय करना तुह जरूर नोट जेड़े से करी लेना। नंबर फिर ही अहाँ थोड़ा दे अगे बढ़ते हैं कहना तुह जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते हैं, क्योंकि अगली फरमाइश की ओर जाना भी जरूरी है। गीत संगीत जैलू गलबात कने जुड़ी आते हैं तो कार्यक्रम का जोड़ा सफर है से और प्यारा जड़ा से लगता है। तो हाँ भी सफर जो प्यारा बनाते हैं कने थोड़ा दिया कार्यक्रम का जोड़ा माहौल है से चेंज करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम का माहौल चेंज करना भी जरूरी है। जैलू अहम की गलबात चलती है तो कुथी ना कुथी गीत संगीत जेड़ा न से गलबात जो और भी प्यारा जेड़ा है से बनाई देन। तो इसी कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचा देन। तुहां सारे भी इस प्यारी दिया फरमाइशा जो जरूर इंजॉय करा, क्योंकि गीत संगीत कन्ने जेड़ा कार्यक्रम का सफर है से बड़ा प्यारा लगता है। पर इस टाइम जेड़ा जिंदगी है, जिंदगी च जेड़ा उतार चढ़ाव हैं से हमेशा चले रहेंगे। कने अहां दा जेड़ा सिस्टम है से भी थोड़ा दिया उतार चढ़ाव करा दे तो हाँ फिर ते गलबात दा जेड़ा दौर है से जारी रख देना, क्योंकि गलबात करना भी जरूरी है। तो इसी कन्ने गलबात अहाँ करा देन आज अहाँ जेड़ा खास दिन बना देन से बना देन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो शो तो यानी कि अहाँ अपने जेड़ा शिक्षक हैं तिना की गल करिए तो से अहाँ वास्ते जेड़ा गुरु समान हैं से अहाँ जो कोई भी अहाँ पढ़ाई करा देन या अहाँ कोई भी क्लास च पढ़ा देन तो अहाँ जो जेड़ा किताब दे पन्ने न हर पन्ने दा जेड़ा ज्ञान है से अहाँ तक पहुँचा देन। कने अहाँ इस ज्ञान जो जरूर हासिल जेड़ा से करते हैं।
पर हाँ किस प्रकार तो इस ज्ञान जो हासिल करते हैं ना। वैसे भी आज के दौर की अहाँ गल करिए तो कुछ ना कुछ मोबाइल फोन की अगर अहाँ गल करते ना तो मोबाइल फोन दे बड़े सारे फायदे ना। अगर तो हम जो कोई भी क्वेश्चन है या तो इस क्वेश्चन का तो हम जो समझ नहीं हो आंसर तो तुम कुछ ना कुछ जरा तिदा आंसर जड़ा से गूगल पर या यूट्यूब पर जड़ा से दिखी सकते। इसी कन्नै अगर तुम तिजा पर सही इस्तेमाल करते ना ताई क्योंकि हर चीज़ा दे फायदे भी होंगे नुकसान भी होंगे पर से यहाँ पर निर्भर करता है कि यहाँ किस प्रकार हर चीज़ का जड़ा ज्ञान है से हासिल करते ना। तो चल दे ना गीत दी और तुह तक पहुँचा दे ना ये प्यारी दी फरमाइश।

0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश फरमाइश दे बाद हाँ फिर ते वापिस आई हो ना कने जिहड़ा स्कूल दा माहौल है इस टाइम बड़ा ही गजब दा होना है क्योंकि आज जिहड़ा बच्चों का दिन बोली सकते या जिहड़ा शिक्षक हैं तिना दा दिन है क्योंकि आज तो वैसे भी जितने भी शिक्षक हैं से बच्चे जो ही जिहड़ा अपनी कमांड है से देन देन कने बच्चे भी खूब सारा इंजॉय करते हैं कने शिक्षक जिहड़ा शिक्षक हैं तिना दा रोल जिहड़ा है से जरूर निभांदे हैं कने जिहड़ा सीनियर जिहड़ा बच्चे न या जिहड़ा तिना दी गल करिए तां अलग अलग जिहड़ा ड्रेस है से जरूर बच्चे जिहड़ा न पहनते हैं कने अपना फुल ऑन इंजॉय जिहड़ा है से करते हैं इसी कने अहां भी जरूर इंजॉय करा दे न कने तो हां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जो जरूर इंजॉय करा दे होने न तो थोड़ा दिया फिर ते अहां अगे बढ़ना है कने अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचानी है चला सुन देना इस प्यारे दिया फरमाइशा जो तुम सारे भी इंजॉय करा।
1: मम्मी बोलो तू ज्यादा मिच मिच मत कर।

श्रोताओं तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश कन्ने इसी कन्ने तो सारे जो पता है कि माटी दी महर कार्यक्रम दा सफर तो तक रहा है 2 से 3 बजे तक। समय जेड़ा से उन्हें हाँ जो इशारे करा था कि उन्हें इस कार्यक्रम ते जेड़ा अनुमति है से ले लिया तो जरूर हाँ अनुमति भी लेनी है कन्ने जाते जाते लास्ट फरमाइश तो तक जरूर पहुँचानी है। तो तुह सारी अपनी रेडियो दो शशि जुदिया अनुमति कने फिर ते तुह सारे जो ही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दियां ढेर सारी शुभकामनाएं कने हमेशा आगे बढ़ते रहा कने हमेशा सफलता दी ओर बढ़ते रहा कने अच्छा बुरा जेड़ा ज्ञान है से जरूर लिया पर अपने जेड़ा संस्कार है तिना जो हमेशा अच्छा रखा व्यवहार जेड़ा है से जो भी अच्छा रखा क्योंकि जलो हाँ इन चीज़ा जो अच्छा रखना शुरू करी देन अपने जेड़ा शब्द हैं अपनी जेड़ा बाणी है उस जो भी अच्छा रखना जरूरी है क्योंकि जिंदगी च ये चीज़ा जेड़ा न सहां वास्ते बड़ी मायने जेड़ा न से रख दिया न। तो इसी कन्ने तो सारे अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ मुंह

0: अरे गोरिया प्लास्टिक कहाँ गई? आकर गोरिया, आकर आ आ।
1: गोरिया,
2: गोरिया।
3: गोरिया।
4: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
5: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
6: कैसे?
7: कर्तव्य।
6: अरे, सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
1: समझ गए सर।
6: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करे। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सोलह सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
12: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: ये क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
5: कैसे?
6: कर्तव्य।
5: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझ गए सर।
5: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सोलह सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
12: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

0: नमस्कार श्रोतों, एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और चौर बजे के इवन के 8 मिनट बुझ गए श्रोतों और समय बुझ गो हाँ हिंदी अपनी गप्पारा ता बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। क्या हाल चाल न तुंदे आ उम्मीद भी है और यह है सोच भी सकते हैं कि तो सब खरे भूने इन श्रोतों है ना। हेरा हूँ अक्सर बोलूँ कि इंसान जो खुश रहने रहा जो मंत्र है सो सिर्फ और सिर्फ इंसान भले है कि सो अपने आप जो खुश किए रख सकता है। बाकी कोई भी मंत्र या कोई भी पर्सन तुस वो खुश ना कर सकता है ना। तो एक सोचने कि कोई मेरा मर्जी रब हुआ या कोई मेरी मर्जी थो या करा ता आजकनी डेट में शो तो कोई किसी की मर्जी रहा ना करता है और कोई किसी भी मर्जी रहा भुंदा भी नहीं इतना। कुछ एक मनो बुले कुछ एक मतलब लुआदी बुली जो मर्जी री बुली जो अपने माँ बाप री मतलब सेवा कर ली तिन्हों पूछ मांग कर ली त्यारा ध्यान रख ली त्यारी केयर कर ली तिन्हों के प्यार कर ली कुछ एक जो उलादा बुंदी सो बुंदी इन शो तो है ना। अन्यथा आजकल अपने आप जो खुश रखने वास्ते तो वो अपने आप ही किए ना स्वाइफर्ड लाना पैना ही ना अपने आप ही किए स्वाइफर्ड करना पैना इन शो तो बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहरहाल कार्यक्रम इंडी अपनी गप्पा कहने सो चल रही और तो सब बन रहे हैं इस समय आर जे सचिन कपूर सो की बहुत सी जानकारी इन शो तो जो असू तुसू तक पहुँचानी हिन और तुस तक दसनी इंदे इंदे श्रोतागण असू की कनेक्ट बुझ गया हिन शो तो पूछ दिन कौन बलून देन और कड़ी थो बलू कर दे। नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: ठीक ने।
0: हाँ जी बढ़िया जी। कौन बलून देन और कड़ी थो बलून देन।
1: करण बलू तब गया रे।
0: अच्छा करण जी तो ठीक ठाक ने।
1: हाँ जी ठीक ने।
0: कर कर लगुरन
1: कर हमना बेखुरन।
0: अच्छा बेखुरन
1: जी।
0: चलिए कौन दिन गीत होना पसंद कर ले जी।
1: सुनील राणा गाना परंपरा।
0: सुनील राणा जी का गीत परंपरा।
1: जी
0: चलिए ठीक है जी जरूर होना ले तू गीत ना जी।
1: ठीक
0: चलिए श्रोतों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा कहने से चल रही है और हिंदी अपनी गप्पा मंच तो है सब श्रोता बखूबी जुड़ी सकते हैं ना 708-8-709 पर कॉल करे करे। तो श्रोतों लगता कि आज सनिचर रात सैटरडे नाइट हा करखा सैटरडे नाइट में है घूमना गान को भी अगर त्यौहार बुंदा तो उठने भी चिंता न बुनते है ना। मजे हो गए त्यौहार और त्यौहार आ रही समझा गया मतलब 4-5 बजे बाद ही लगे पैंता यारा छुट्टी मुके गया ड्यूटी गाना पैना है ना। तो हर किसी का मनोबल के सो इस तरीके रहा मन के सो इस तरीके रहा रिंदा है शो तो फिलहाल और बहुत सारी जानकारी इन सब जानकारियाँ है तो सो के शेयर कर लें बहुत सारे शो तक कनेक्ट बुचू कर दें तीनों भी कनेक्ट करवा लें लेकिन आइए आगाज कर लेंदे हैं कार्यक्रम रहा इसकी तसोगे

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रोर कार्यक्रम इस वक्त हिंदी अपनी गप अगेन सो बिल्कुल लाइव चल रही ना और अब तू सब भी हो कनेक्ट भी किया सो कर लेंदे ना अज शिक्षक दिवस था श्रोतो शिक्षक दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सभी गुरु जो और इवन की हाँ ये बोलना चाहूँ हाँ श्रोतो की इंदे श्रोता गणा सो के कनेक्ट बच्चों कर दें इन्हों भी कनेक्ट कर लेंदे हैं और बहुत सारे मनोगन सो कनेक्ट बच्चों ने तक जरूर कनेक्ट कर दें सब भी जो बारी बारी आज शिक्षक दिवस भी आता शिक्षक दिवस पर तुसु सब भी जो जी बहुत बहुत बधाई भून है ना जी आज अपने अपने गुरुजना जो कि सो जरूर बधाई दीन और जिया तो भी जो तू है सीख रहा सो तो जाए तो है जस भी फील्ड में हिन है ना तुम्हें टीचर्स जो भी हिन तिन्हों जरूर बधाई दिया बेगा देना चाहते थे और आगे अब जो बोलेगे तो जरूर दिया फिर वे भी बधाई बन दे हा और सभी मोटा गुरु किया सो सो तो माँ बुनते हा माँ पिता बुनते हिन जो कि असुओ उंगली पकड़ने थो किया सो असू चलना सिखाई देंदे है ना असू आ के स्टेप भी किया सो सिखाते तथों बाद बहुत सारे इंदे गुरु के सो बनते हैं जिन्हों है अपना साथी के सो मनी लेंदे हैं गुरुजन के सो तिन्हों मनी लेंदे हैं बहरहाल कार्यक्रम मंच इंदे श्रोता गणा सुगे के कनेक्टेड हैं पुछ दिन कौन बलूंदे और कड़ी थो बलूंदे नमस्ते जी
1: नमस्कार सचिन भाई
0: नमस्कार जी नमस्कार
1: क्या बोलूं बलूंदा रंजीत
0: हाँ जी हाँ जी रंजीत जी ठीक ठाक ना
1: बढ़िया जी बढ़िया तो है ना
0: बढ़िया जी कर कर लग रहे
1: बस लगे खाना
0: अच्छा और नोएता जी
1: बस नोएता जी कल बड़े लड़ गए फोन करोगे मतलब चल फोन कर दे गाना गुना होने दे गोए
0: अच्छा बिल्कुल बिल्कुल ता कुंडने ने गीत होना इधर से दिया और आज टीचर डे भी आ तो है भी मनाओ मनाओ बुना कदी स्कूल ने अपने टीचर डे है
1: तो टीचर डे ता है नहीं मनाओ गंदे टीचर आ रहा मारे
0: ना ना तू है अपना टीचर डे 10,000 तुम दा टीचर डे
1: किने बिल्कुल बिल्कुल सर भाई जाना पढ़ने सी जाना मनंदे सिया थोड़े बोरे हैं
0: हां हां बिल्कुल
1: जो जेना दिल करना बोलो करो आज कोई कपड़े कोई परदे रिटर्न सुना कोई कड़े रिटर्न सुना हां
0: हां
1: जड़े मर्जी सेल करे बूटा खोल लेता अच्छा है बदोर है खोल लेता हां
0: हां
1: खुश रहे बंदे मास्टर हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ जी
0: हाँ जी आजकल मौज मौज बनती थी स्कूलों है ना
1: मौज बिल्कुल जी बिल्कुल टीचर भी अपने छुट्टी छट्टी करी करी सॉन्ग वॉन्ग चले गए
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ जी हाँ जी ओ जी मौसम मौसम साफ ना लगे हाँ लिदा है
0: जी 10-12 तक रहता हाय ना जी अली पर
1: अच्छा
0: ये है कि भाई 10-12 तक माड़ा मोटा पहना है छिट्टा में ओ मेरे आलोड़ा तर
1: आंजी आंजी आंजी भाई आंजी
0: लंगारा बासा हो
1: बात आंजी बिल्कुल भाई
0: चलिए ठीक है जी जरूर होना लेते सुए गीत
1: अब पूरा आना ना भाई गाना है
0: बिल्कुल बिल्कुल रंजीत भाई कोशिश बन दे इंदे
1: ठीक है तेरे दास तोड़े फोन करी था लास्ट टाइम ना तो आंजी आंजी के भी लास्ट टाइम उनको तो फिर जाने तोड़ तोड़ा लंबे ना काम
0: हाँ जी हाँ जी ये था
1: ये रे ना बच्चे तो भी खाना खाना है ना
0: हाँ जी
1: कन्ने सुपोना जो लगूरो तो गाना
0: अच्छा जी
1: निकला ना बच्चा तो गाड़ी नहीं ले रहा हुआ गाड़ी है वो मेरे को एक है वो लड़े रहा मतलब कहाँ तो हीरो मेरे को होए उपनाम जी नड्डी हो दिया अपने मन हो
0: हाँ जी
1: साथ में कल चला मेरे बच्चे हीरो ये बच्चा भी इस गाने पर सुन लू करता है मेरे को दुत्ते होने चाहिए मेरे गाना ये राज टाइम बचे हुआ हाँ जी हाँ जी
0: चलो ठीक है भैया ठीक है जी जरूर होने लेते सुई गीत धन्यवाद नमस्ते ਸ਼ੋਦੋ ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 91.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਪਰ ਵੇੜੀ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਹੈ ਸਭੀ ਟਿਊਨ ਕੋ ਰੋਰ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਪਾਂ ਕਹਿਣ ਸੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਮੰਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤੂੰ ਸਭੀ ਜੋ ਫਿਰ ਆਗੂ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਤਾ ਫਿਰ ਅਸੂਗੇ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ੋਤਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ

0: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मदिन रे उपलक्ष्य पर किया सो है शिक्षक दिवस के श्रोताओं सो मनंदन। इस मनाने रे मुख्य उद्देश्य समाज और राष्ट्र निर्माण में शिक्षक का अमूल्य योगदान और त्यारे अटूट समर्पण रे प्रति आभार व्यक्त करना हा श्रोतो है ना जी। राधा कृष्ण रे जन्म वे उपलक्ष्य पर है ना जी। सर्वपल्ली राधा कृष्ण रे जन्म वे उपलक्ष्य पर किया सो है आजकना मुख्य दिन के श्रोताओं सो मनंद हिन बरहाल इंदे अगले श्रोता सो की कनेक्टेड हिन। नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी। नमस्ते
1: नमस्ते, कैसे हो?
0: बहुत बढ़िया जी। कौन बल्लू देन और कड़ी तो बल्लू देन
1: आरेन बल्लू दा ता आउन जीओ बल्लू दा
0: आरेन जी कड़ी हो बल्लू देन
1: जिया।
0: अच्छा जिया था हूं, क्या बात है। जिया एग्जैक्टली जिया की खाटी थो?
1: जिया खाटी।
0: जिया खाटी, अच्छा अच्छा। अरे जी पहले तो ये दस सकी आज तो स्कूल लोग छूरे थी है ना?
1: हाँ जी।
0: कदे कदे रहे हो आज कना दिन तुंदा?
1: बहुत ठीक हूँ।
0: हाँ जी
1: बहुत अच्छा।
0: बहुत अच्छा। अच्छा आज कोई टीचर बन रही थी तो है?
1: अंगे
0: मैथ रहे, अंग्रेजी रहे, हिंदी रहे, कते रहे?
1: आ तने बड़ में इंग्लिश स्कूल है, बच्चे मन भी बड़ा
0: है। अच्छा अच्छा बड़े बच्चे बन रही थी है। चलिए जी अरेंज जी कौन ने की थोड़ा तुसु
1: अलग कर दिए बोरा।
0: क्या बात है, ठीक है जी जरूर तुसु होगी थोड़ा ले
1: कने दिया
0: बस आप जो हूँ आई ना इस यह फरमाइश आता हूँ बाद है ना जी।
1: हाँ जी ठीक है।
0: ठीक है जी नमस्ते,
1: नमस्ते।
0: चलिए शो तो इंदे अगले शो तो अगर असो की कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते
2: नमस्ते जी।
0: हाँ जी कौन बोल रहे ना और कड़ी थों बोल रहे ना?
2: मैं सिद्ध भाड़ी से बोल रहा जी।
0: अच्छा जी क्या नाम तुम्हारा?
2: ओंकार चंद जी।
0: ओंकार चंद जी ठीक ठाक ना?
2: हाँ जी हाँ जी ठीक ठाक जी।
0: और कर कर लग रहे जी?
2: बस क्या कमाना है यार, कमा ले बस या काम।
0: अच्छा
2: ओंकार है यार नौकरी करे ना।
0: हाँ अच्छा रिटायर हो गई हो?
2: हाँ जी हाँ जी टी फैक्ट चला गया हम दाढ़ी चाप पति या।
0: हाँ जी हाँ जी।
2: अच्छा चला गया रिटायर हो गया भाई के।
0: अच्छा
2: हाँ जी हाँ जी। क्या है चक्कर है ना ती?
0: अच्छा जी जरूर। क्या अनुभव रहे हो जी नौकरी रे? तूने साल नौकरी हुई ठुंजा साल?
2: हाँ जी ठुंजा साल ही मैं चाची तो लगी है ना।
0: अच्छा
2: भाई के हेल्प पैर।
0: अच्छा क्या अनुभव है नौकरी रे जी?
2: हाँ जी हाँ जी।
0: अनुभव अनुभव थोड़ा शेयर कर सकते हैं तो है जी?
2: हाँ जी हाँ जी। चाह पत्ती बनाते हैं देसी चाह पत्ती।
0: ना ना नौकरी का अनुभव चाह पत्ती तो ठीक है लेकिन कदे कदे नौकरी खरी रही बड़ा कुछ
2: सीखा? ठीक ही रही कुछ बार जा सीजन पर अप्रैल महीने में प्याग जाना पौंदा है 4 बजे।
0: अच्छा
2: कल जी कल ना तोड़ अगर सीजन है अप्रैल महीने कल कभी 5 बजे जाना पौंदा कभी तीन तीन बड़ा फ्लड पौंदा तल दी जगह पत्ती दी सोने पाया ही बनती ही तल बड़ी बनना जो सामने होती ही।
0: अच्छा
2: प्रोग्राम हुंदा।
0: धन्यवाद जी। कोशिश रहंदे कोशिश करदे ने है।
2: चलो चलो वधिया लगदा प्रोग्राम होर नहीं सुनदे सुनदे 4 बजे मां
0: लगन तो हुण जुड़ गए जो जुड़ने थी है।
2: ठीक है जी ठीक है जी। वो बहुत धन्यवाद जी।
0: ठीक है जी धन्यवाद धन्यवाद।
2: ठीक है ठीक है जी
0: जी। चलिए सो तो लगन तबे जुड़ी कुछ रहे लगना ने बाने रहा टाइम की सो चली चलींदा है ना जी। फिलहाल कार्यक्रम में चल देन हगूँ और इन अगले आ कोड शो था सूगी कि

0: कनेक्ट कर दें। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी, नमस्ते जी,
0: नमस्ते जी, नमस्ते।
1: तो हाँ हम गल्ला जी खुश करीन दे ता गा के बोलना था।
0: अच्छा
1: गाने तो हैं दसिए तो हाँ हम गाने जी गल्ला जी खुश करीन दे।
0: अच्छा जी।
1: और जिन जे मते जिन हो हम गाने जोड़े आए हो।
0: हां जी जी
1: तेने तो पता ही होगा ना।
0: हां जी
1: अपन तो गलां बड़ी छाल लगनी लैंग्वेज ना बड़ी छाल लगा दी।
0: अच्छा अच्छा क्या शुभ ना क्या जी तुंदा शुभ ना।
1: हाँ जी
0: तुम्हारा शुभ ना क्या जी
1: ना तो है क्या दसा क्या गोमती नदी भी पता पे तो है।
0: अच्छा अच्छा
1: चाते जी रोड़े थे ना।
0: हाँ जी हाँ जी
1: कमिंग जो था लिमिन ना वे उन दे अपन मुआ कोई स्टेशन नहीं लग गा रखा रहा।
0: अच्छा
1: गलान बोलनी है ना गाने तो तुम क्या दसने गाने तो मर्जी ने सुनी लेंदे ना
0: जी जी जी
1: अपना थोड़े जेड़ा गलान बोलना है
0: जी
1: एक तो हाँ मैं खुश कर दिया दे।
0: चलिए जी
1: ठीक ठीक ठीक ठीक
0: ठीक है जी धन्यवाद धन्यवाद थोड़ा प्यार
1: धन्यवाद थोड़ा भी धन्यवाद
0: थोड़ा प्यार आशीर्वाद बस ये बनी रहा।
1: हाँ जी हाँ जी
0: ठीक है जी धन्यवाद
1: ठीक ठीक ठीक।
0: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और हूँ सचिन कपूर हा कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही और ये जो लोकर प्यार हा श्रोतों जो लोकर आशीर्वाद है ये इंदे ताकत हा श्रोतों और ये इंदा जुनून हा जो और ये इंदा हौसला जो असू टूटना न दिंदा है इंदा जुनून हा जो इंदे मतलब हा किसी भी पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी तो बुंदी है ना लेकिन ये जुनून ये हौसला ये प्यार ये लगाव मनु रे प्रति ये असू टूटना ना दिंदा इंदा कि मूड बो असू चूर बजे च गिर गया सीढ़ी फेसिंग समाइल करना ही पैंदे आ चेहरे अंदर मुस्कुरान किया सो रखना पैंदे आ और जिब अंदर मिठास किया सो रखना ही पैंदे आ मोस्ट इंपॉर्टेंट वो जगंदा शोतों जिब अंदर मिठास रखना और चेहरे अंदर किया सो रौनक रखना शोतों है ना क्योंकि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में किया सो बहुत अंतर मुंदा और कभी भी यह है खासकर जो इंदी फील्ड है शोतों ये आड़ी ती अंदर है कभी भी ये चीज़ तो मिक्स कर ही नहीं सकते कि अपनी पर्सनल लाइफ जो हाँ मेरा आज मूड खराब है भाई मुँह चौर बजे ये न कड़ैना ये कड़ैना या ये ना पढ़ना या ये पढ़ना ऐसा कभी पूछ ही ना सकता शोतों है ना जी। बहुत सारी जानकारी के अंश है तुसु तक जरूर पहुँचाते इन शोतों इस प्रकार सो की जानकारी रा पिटारा के असो खुलते रहना जानकारी रा सिलसिला के असो ये चलते रहना शोतों तो सब बने रहा 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला सो की गूंज अपने पन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे।

শত এফএম ব্যান্ডে কে আনু দৃশ্যামলাম 2 MHz পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সব টিউন কর রো রে কার্যক্রম ইন্দি আপনি গা পাগেন সো চল রই হিন তুম তে সব রে রেডিও সেট মা রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা মঞ্চ তো আইয়ে কার্যক্রম জো হগো বড়ন দেন অর अगली फरमाइश जो खाटी तो आए सो पूरी कर दें शतों लेकिन अक जानकारी री और लेकर चलते तो सो प्रदेश वे सस्ते वाशन वे डीपू मा के सो इस महीने उपभोक्ता जो चोड़ के न चोड़ा कोटा में से सो 1 किलो घट मोलना आप है इस बार पात्र उपभोक्ता जो 5 किलो चावल री उपलब्ध करवाए गाने हैं यानी कि 5 किलो चावल मोलने हैं पहले इस थों डीपू मा प्रति उपभोक्ता जो किया सो छिलियो की 6 किलो चौड़ के थी है ठेरा कोटा मोलदा थो सो तो लेकिन मुझे लगता अमूमन सब भी 5 किलो मोलदा मतलब किलो डीपू वाले खाए गन दिन इस साफ तरीके पर आऊँ बलना चाहता हा सटीक तरीके थो सो तो जो कि साफ साफ खबर आया कि सरकार की असो 6 किलो चौड़ दिन दी थी इस बारी की असो 5 किलो मिलना है लेकिन अमूमन मुझे लगता कि 5 किलो ही चौड़ के ना सो मोल दिन प्रत्येक डीपू मना बल्ले सकता कुछ कुछ एक डीपू मखिया सो 5 किलो चोड़ के अनसो मोलना है हालांकि आटे में कोई कटौती ना भोया आटे में कोई बदलाव ना भुआ है उपभोक्ता जो आटा ते हैं मोलना है 10 हिसाब है 12 किलो मोलना जो मोड़ो करता है सो तो है ना और ये जानकारी तुसु आर जे सचिन कपूर रे जरिए कि असो पूछिए अपने अपने वीडियो सेट में तगर तो है बल्ले सकते हैं अपने डीपू वाले जो 5 किलो दिन दिन तो तीन दस ही है भाई यह खबर होने की 6 किलो चौल मोलता है और तो है 5 किलो दिन छुगर है किलो तो ये खाए कर छुड़ते हैं तो ये लिटरली जो खबर आए तो है तो सु तक पहुँचा है शो तो बहरहाल कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा मंच तो सब बन रहे हैं और लेके चलते तू सब भी जो इस जी बिल्कुल बिल्कुल बोरा बोरा बोरा चलाइया हूँ देने इस गीता जो

श्रोतों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा मंच तो यह सब श्रोता सुओ की जुड़ी सकते हैं 7081880 9 पर कॉल कर करे और अपना पसंदीदा गीत की सो होने सकते हैं अपने क्षेत्र जानकारी किया सुसांझा कर सकते हैं श्रोतों आइया कार्यक्रम जो है वो बढ़ाते हैं और अगली जानकारी होगी तो सो रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं श्रोतों हिमाचल पर्यटन जो पंख लगाने और दुर्गम पहाड़ी वास्ते पर श्रद्धालु रह वास्ते की सो केंद्र सरकार है बड़ी पहल करे है श्रोतों सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत कार्यरत वास्ती राजमार्ग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड है कि श्रोतों सो पर्वतमाला परियोजना रे तहत हिमाचल रे सिरमौर जिला में किया श्रोतों सो सफ़र जो आसान बनाने वास्ते किया सो शिविगुल महादेव मंदिर कांगड़ा में आदि हिमानी चुमुंडा मंदिर पालमपुर में थतारी ग्लेशियर वे चंबा जिला वे भरमौर में भरमाणी माता मंदिर जो किया सो रोपवे थो जोड़ने वास्ते किया सो कदम बढ़ाओ हा तेरे तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने वास्ते किया सो प्रक्रिया किया सो शुरू करी दी हा श्रोतों इन्हें चार परियोजना रे दायरे में इने वाले क्षेत्र अपनी आध्यात्मिक और प्राकृतिक विशिष्टता रे वास्ते किया सो देश विदेश में प्रसिद्ध हैं सिरमौर और शिमला जिला भी सीमा पर स्थित चूड़धार चोटी पर लगभग 3,647 मीटर की ऊंचाई पर भगवान शिव रे रूप में पूजे जाने वाले इष्ट देव शिविगुल महादेव रा पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है श्रोतों कांगड़ा में धौलाधार पर्वत श्रृंखला भी गोद में लगभग 3,885 मीटर की ऊंचाई में स्थित आदि हिमानी चुमुंडा मंदिर किया जिनके है अपनी उतिया पुरानी चुमुंडा बलदन है ना अपनी बोली में है बलदन की पुरानी चुमुंडा पुराना आदि हिमानी चुमुंडा मंदिर किया नंदीकेश्वर धाम माँ चुमुंडा रा मूल एवं प्राचीन स्थान हा इड़ी स्थित जिनके यह सब लोकल बाखूबी जानते मुने शायद जो ठेरी ऊंचाई थी सो शायद है ना जान दे उन कुछ एक श्रोता था सो भी असू किया सो पता लगे गया कि कांगड़ा रे धौलाधार पर्वत श्रृंखला री गोद मा क्या सो लगभग 3,885 मीटर ऊंचाई पर स्थित आदि हिमानी चुमुंडा मंदिर नंदीकेश्वर धाम माँ चुमुंडा रा मूल एवं प्राचीन स्थान है चंबा जिला रे भरमौर करीब 4 किलोमीटर दूर और 2,700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भरमाणी माता मंदिर रा भी विशेष धार्मिक महत्व है श्रोतों मान्यता है कि मणिमहेश यात्रा पर गाने वाले श्रद्धालु वास्ते ये दर्शन करना अनिवार्य मने गंदे हिन श्रोतों जी क्या है सब गद्दी मणु के न गद्दी भाईचारा किया इन अपने गद्दी बोली किया श्रोतों इन अपने मणु के न सो यह गला जो बाखूबी जानते बुने न कि जहने भी है मणिमहेश यात्रा करते हिन ता मान्यता कि मणिमहेश यात्रा ताई पूरे बुंदे आ जहने यह कड़ी होगा न दस तो है हाँ भरमाणी माता मंदिर गान ताई की असो इन यात्रा पूरे बुंदे है श्रोतों है ना ये विशेष धार्मिक महत्व है जो क्या है सब बखूबी जानते हैं बहरहाल तो सब बन रहे इस समय आरजे सचिन कपूर सो गया और हिंदी अपनी गप्पा जो हूँ कर दें चलिए जनाब तेरा मेरा लगन तो सेट बुछुरा इस लगन जो अब है निबंधन

0: শোধো এফ এম ব্যান্ড 91.2 MHz পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সবই টিউন কর রে কার্যক্রম ইন্দি আপনি গা পাগে না সো বিলকুল চল রি নে তন্দে সবই রে রেডিও সেট মা রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা মন শোধো तो थोड़ा कहते सुए भी दस इनो अपनी साधारण भाषा में एक खबर थोड़ी बड़ी मतलब सो बोलते साइंस वाली खबर है लेकिन हम साधारण भाषा में दस ही छू शो तो अपनी भाषा में कि आसमान में अभी नज़र रखने या सैटेलाइट शो तो भारतीय अंतरिक्ष मतलब जो इसरो ना हुनरो गुणा सब भी है ना शुक्रवार जो इतिहास वसते हुए शो तो इन के करोगे कक्ष में स्थापित होने वाले देश है पहले अमेजिंग उपग्रह व सफल प्रक्षेपण किया सुकर हुआ शो तो और हाँ मतलब आसमान में गया सो अगर नज़र रख ही सकता है नया सैटेलाइट शो तो है ना इसी शो की शो तो हम तुसू दसना चाहता हिमाचल रे आधार तो जुड़ी जुड़ी गाणी हाँ बेहतर सरकारी योजना और सेवाएं जी बिल्कुल शो तो और आज शिक्षक दिवस हा यानी कि आज जिन्या जिन्या सु पढ़ोरा लखोरा त्यारे दिन ना है ना तिन्या वह है बड़ा मंदहीन और ये त्यारा दिन भी हाशो तो यह सब क्या ना सो अपने अपने टीचर जो अपने अपने गुरुजनों जो किया सो बहुत कुछ मंदे भी हिन और शिक्षा व सम्मान देने वास्ते है आज के दिन क्या सो तिन्यो गिफ्ट भी करते हैं बहुत सारी चीज़ है ना और गिफ्ट भी करते हैं बहुत सारी चीज़ है सो है दिन दे रख दे भी है ना आज के दिन तो चलिए हाके पिछले साल कनेक्ट हुए थे यस होगी इन द जो मेरे जो शिक्षक मेरे जो शिक्षक हिन मेरे जो टीचर हिन तिन्याओ आऊँ कनेक्ट तो सोगी कि ऐसो ज़रूर कराने की कोशिश कर ला लेकिन सो नेपाली इन थोड़ा कर तिन्या हिंदी अंदर के ऐसो बोलना हाँ बहरहाल कार्यक्रम जो आगू बढ़ते हिन और इन द श्रोतागण के न सो असोगी कनेक्टेड हैं ना डिसकनेक्ट हो चुके हैं तो ऐसा बन रहे इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगी और अगले श्रोता सोगी कनेक्टेड हैं नमस्ते जी हेलो हेलो नमस्ते जी वेड़ी गुंजन मां स्वागत है
1: नमस्कार जी नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: मतलब क्या हाल है
0: बहुत बढ़िया जी तो है दस सतन तक क्या हाल चाल
1: मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ
0: अच्छा जी करे लगुरन
1: कुछ नहीं कोई विशेष नहीं है बस है बोले
0: अच्छा जी
1: और
0: बस जी बढ़िया
1: तो आज तो शिक्षक दिवस मना रहे हैं
0: हाँ जी
1: उसको सेलिब्रेट करा रहे हैं ना
0: बिल्कुल बिल्कुल जनाब
1: और सचिन जी
0: हाँ जी
1: मैं तो कल पूछू
0: जी जी
1: आज के शिक्षक है
0: हाँ जी
1: या आज से जिला को 30 साल पहले 40 साल पहले शिक्षक था
0: जी
1: कुछ फर्क क्या है
0: बड़ा फर्क है जनाब
1: फर्क है ना
0: आप
1: मानते हैं ना
0: हाँ जी
1: खुद मान रहा है इसके अलावा
0: हाँ जी बिल्कुल
1: पहले बड़ा था आदर्श अध्यापक का
0: जी
1: आजकल से नहीं पूछ रहे अध्यापक
0: जी
1: फर्क तो है ना
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो उसमें सबसे बड़ी कमी तो ये आई है कि इज्जत में कमी भी आ गई है
0: जी
1: ना तो तू शिक्षार्थी है शिक्षा ग्रहण करने वाले ना तो उनकी वो इज्जत कर राजी है ना शिक्षक इज्जत कर राजी है हमारे समय में जो
0: माफ करे जी यारी आवाज सुधकी सो क्लियरली ना आप जो कर दी थी और सो डिसकनेक्ट किया सो करना पे हुआ तो सब बन रहे इस समय 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला सोगी और कार्यक्रम के सो हिंदी अपनी गप्पा तो सब हूँ करते हैं बहरहाल फेसबुक के जरिए के सो भी बिल्कुल लाइव के ना सो चल रहे हैं लास्ट रही 10 मिनट अगेन शो तो सो बची हिन और ऐह सब कहने सो बिल्कुल तैयार हिन जिन्या टीचरे किया अमीना आले मैम यारा ना हा और अमीना आले मैम किया सो तिन्या मुझे बचपन था पढ़ूरा लिखूरा हा और पिछले साल सो की कनेक्ट हुए थी है शोधों पिछले साल तो सो की रूबरू करवाए थी है इस साल फिर यह है रूबरू करवाने की कोशिश करूँ कर दिन मैम थोड़ा करे अपना बिजी शेड्यूल था किया सो सो के टाई अप किया ना सब हुए ना मैम गुड आफ्टरनून
2: गुड आफ्टरनून सचिन गुड आफ्टरनून थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए
0: थैंक यू सो मच मैम आप हमारा सौभाग्य कि आप जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं और एक कार्यक्रम गद्यालय लेकिन हमने थोड़ी सी परमिशन लेके 5 मिनट की बात जो है वो हम हिंदी में कर सकते हैं तो मैम थैंक यू सो मच मैं इस मंच के माध्यम से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लाइक बनाया है कि आज मैं हज़ारों लाखों के लोगों के साथ रूबरू हो सकता हूँ और पिछले साल आपने र से लेके व तक का सफ़र जो है वो डिस्क्लोज किया था रेडियो में तो मैम थोड़ी सी जर्नी मेरी बता दीजिए कि कैसे कैसे ये लोगों को अक्सर लोग जो है वो बहुत तारीफ करते हैं बहुत अभी भी लिटरली कॉल आया था उन्होंने बताया कि हमें बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम ये वो आप थोड़ी सी मेरी शरारतें बता दीजिए आज
2: शरारतें तो मैं बहुत मतलब भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ आपकी मम्मी का जिन्होंने इतनी मेहनत से आज को आपको इस मकान पे पहुँचाया गाइडेंस टीचर्स की भी रहती है लेकिन साथ ही साथ तुमने भी बहुत मेहनत की है और सच में तुमने अपनी माँ की बहुत कदर की मैं बोलती जो बच्चे आगे बढ़ते हैं वो माँ की कदर करते हैं माँ कैसे पैसे कमाती है कैसे करती है एक माँ ने सिंगल मदर ने तुम्हें कैसे पाला और तुमने उस बात को बहुत अच्छे से किया और हर वक्त मम्मी तू अब ट्यूशन आना भी नहीं चाहता था स्कूल जाना नहीं चाहता था लेकिन मम्मी बेचारे घसीट घसीट के ले जाती थी लेकिन बाद बाद में तुम बहुत खुश हो गए और उसके बाद तुमने बहुत अच्छे मेहनत की मेहनत का ही आज ये फल है मैं इतनी खुश होती हूँ तुम्हारी आवाज सुन के और जब तुम सुनते कर बोलता ना ऐसा लगता है मेरा छोटा सच्चू है ये मेरा छोटा सच्चू है तो मुझे बड़ी खुशी होती है सच में और तुमने बहुत काफी टाइम तक तुमने हर चीज को कुछ काम करने से पहले अपनी मम्मी के बाद मुझे एक दर्जा दिया आई एम वेरी ग्लैड और रियली मैं अपनी बेटी को भी बोलती हूँ बेटा देखो इसने बहुत मेहनत की दादा ने और ऐसे ही तुमने आगे बढ़ना और तुमने बहुत मेहनत की है तुमने दाढ़ी के मेले में मुझे इतने लोगों के बीच में मिलाया मुझे बहुत अच्छा लगा है ना ये थैंक यू सो मच सचिन एंड ऑल द वेरी बेस्ट आगे भी तुम ऐसे बढ़ते रहो आगे बढ़ो और तुम्हारी आवाज ही इस प्रोग्राम का ही एक मतलब पहचान है इस प्रोग्राम की पहचान तुम्हारी आवाज ही है जो प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है ना इसमें तुम्हारा ही सबसे ज्यादा योगदान है ना तो इस ऐसी ही मेहनत से काम करना जहां भी जाओ मेहनत से काम करो बस मेरी ये दुआ है जिंदगी में आगे बढ़ो तुम्हारी बेटी हुई है भगवान तुम्हें खूब खुश रखे तुम्हारी बेटी को खूब खुश रखे परिवार को तुम्हारी माँ जिन्होंने बहुत मेहनत की है उनका वैसे ही ख्याल रखना है मुझे मालूम है तुम माँ से बहुत जुड़े हुए हो लेकिन तुम्हारी जो फैमिली तुम्हारी बेटी तुम्हारी जो पत्नी है वो भी बहुत आज्ञाकारी आई एम वेरी हैप्पी कि तुम्हें भगवान ने बहुत अच्छी फैमिली दी है और इस फैमिली का एक मैं अपने आप को एक हिस्सा मानती हूँ आज तक
0: यू आर द हेड ऑफ दिस फैमिली मैम
2: रियली रियली सच में बहुत बोलती हूँ मैं अपनी बेटी को भी बोलती हूँ कि देखो भैया ने कैसे तरक्की की ऐसे ही आपने तरक्की करना है आई एम वेरी हैप्पी गॉड ब्लेस आगे ऐसे ही बढ़ते जाना मेरा बेटा ओके
0: थैंक यू सो मच ऑलवेज नीड योर ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट ऑलवेज मैम थैंक यू सो मच थैंक यू
2: शिक्षक दिवस पे आज हम तुम्हारे साथ जुड़े मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे ही मुझे बहुत बच्चे प्यार करते हैं बस जब उन छोटे बच्चों को देखती तो मुझे तुम सचिन दिखता कहीं कहीं है ना चलो ऐसे ही मेहनत करते रहना ओके
0: जी मैम थैंक यू सो मच मैम
2: मेरी सब बहुत दुआएं हैं तुम्हारे और तुम्हारे गुंजन परिवार के सबको ओके जी थैंक यू सो मच मैम
0: ओके बाय बाय बाय बाय तो ये थे हमारे गुरुजन हमारे जिन्होंने जिन्या शोतों आसुओं की ऐसो हत होगी चलना सिखोरा इन्हें आसुओं बहुत मेहनत किया इन्हें सुपर कर रहे शोतों और इस लाइक की ऐसो बनू रहा और बिल्कुल आऊ मैम घट मैम तो ऑफिशियली बनता है लेकिन हमेशा अक्सर की असो माँ ही बनता है श्रोतों और यार बहुत योगदान की सो रू रहा मुझो वाकई में इस सफ़र में यह जिंदगी रे सफ़र में किया सो इड़ी तगरे पहुंचाने माँ। और मतलब मन जो शब्द घट पे गन देखे आऊँ यारे बारे क्या बोलूँ, हमेशा बंदा ना जहने ब्याह कस की होरी री तारीफ कर दें तो जरूर शब्द अस वो याद बंदे, लेकिन जहने वो अपनी एक गुरु री अपने टीचर री तारीफ करूँ अपनी अधरनी माता जी री तारीफ करूँ तो मुझे सचमुच शब्द के ना सो घट पे गन दे। तो फिलहाल श्रोतों समय भी बुझगो तुसु सभी थो इजाजत लेने रहा है ना, और बिल्कुल हूँ बड़ा ग्लैड है बड़ा थैंकफुल है कि इतनी अच्छी फैमिली की है परिवार की है सो मुझे मूल रहा और बहुत अच्छे परिवार थो कि अब बहुत अच्छे परिवार में जन्म बचू रहा। और बस ये बोलना चाहूँ हाँ श्रोतों की अह यही सीखू रहा और यही शिक्षा ब्यागू दिन दिन की कसी वा कदी बुरा मत करा अपने कम मतों की सो जरूर मतलब रखा अपने कम मतों जरूर प्रेम रखा और निरंतर किया सो पॉजिटिव थिंकिंग रखा शो तो है ना तुसू कसी है क्या बोलो कोई तुंदे बारे क्या सोचू करदा हा तुंदे कमरे बारे क्या सोचू करदा ना तो सिर्फ अपने कमाने में फोकस रखा पूजा पाठ में किया सो श्रद्धा रखा श्रोतों अपने माँ बूढ़े जो हमेशा खुश रखा श्रोतों और कदी का सिरा बुरा मत करा तो है अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून पल है। अगर तो है सोचने रह लगे फलाने मेरे बारे में क्या बोलो कि सरीके मेरे बारे में क्या बोलो इन्हीं है क्या बोलो इन्हीं है क्या बोलो ये को बोलो मैं ये करो तो मैं इसी तू ना चाहो तो इन्हीं मुझे इतना ना चाहो इस सब उलझना में अगर तो है उलझ लै श्रोतों तो ज़िंदगी जीने रहा मज़ा गया फिर सो नहीं सो इस सब उलझना छड़ी करी गया सो अपने कम माने री किनारी ध्यान दे अपने परिवार हरी किनारे ध्यान दिया श्रोतों और अपने आप तो रोजाना प्रयास करा कि हम खुश किए करे किया सो रह सकूँ बस ये प्रयास नियंत्रण किया सो कर दे रहे और भगवान रन आ के आसो हमेशा के आसो लेंदे रहे श्रोतों जरूर जिंदगी में सुकून मिलता है जिंदगी में किया सो अच्छा लगता है श्रोतों। बहरहाल आऊँ सचिन कपूर अब ले लेनो तो सुथो इजाजत क्या करना समय बुझेगो इजाजत लेने रहा अज दे रे मुस्कुरन दे रहा रेडी गुंजन मार जे सचिन कपूर जो किया सो इं ही हुन दे रहा इं ही किया सो अस हो गए खुश रहा तंदुरुस्त रहा और ये बोलना चाहूँ खुश रहा तंदुरुस्त रहा रचंदे बस दे रहा हंस दे गाते रहा और इंजॉय करा प्रकृति जो सेफ जरूर रखा इन शब्द थो लेनो इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। आसमान से नजर रखेगा नया सैटेलाइट, डिपो में इस माह मिलेंगे 5 किलो चावल। सिरमौर, कांगड़ा और चंबा जिला में पर्यटन व धार्मिक यात्रा होगी सुगम। हिमाचल में आधार से जोड़ी जाएंगी 72 सरकारी योजनाएं और सेवाएं। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा संस्थान हो सकता है हिमाचल में स्थापित। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुक्रवार को इतिहास रचते हुए भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित होने वाले देश के पहले इमेजिंग उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया और GSLV के जरिए 2300 किलोग्राम से अधिक वजनी उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित कराया। उपग्रह को मिशन से जुड़े एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने आसमान से नजर रखने वाली आंख करार दिया और यह उपग्रह वास्तविक समय में तस्वीरें उपलब्ध कराएगा, साथ ही कृषि आपदा प्रबंधन समेत कई क्षेत्रों में देश की मदद करेगा। इसरो ने बताया कि उपग्रह IOS-05 यहां से प्रक्षेपित होने के करीब 18 मिनट बाद निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। अंतरिक्ष एजेंसी ने उन अटकलों को खारिज किया कि IOS-05 एक टोही उपग्रह है, जहां कई पृथ्वी अवलोकन उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में संचालित होते हैं। वहीं IOS-05 करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित होगा, जहां वह पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ तालमेल बैठाएगा। प्रदेश के सस्ते राशन के डिपुओं में इस माह उपभोक्ताओं को चावल का कोटा 1 किलो कम मिलेगा। इस बार पात्र उपभोक्ताओं को 5 किलो चावल ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। उपभोक्ता 6 किलो चावल का कोटा दिया जा रहा था, हालांकि आटे के कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उपभोक्ताओं को पहले की तरह 12 किलो आटा ही मिलेगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश के बर्फबारी वाले दुर्गम क्षेत्रों में सर्दियों से पहले राशन की अतिरिक्त खेप भेजी जा रही है। इन क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था को देखते हुए इस माह चावल की उपलब्धता के हिसाब से डिपुओं में कोटा निर्धारित किया गया है। इसी कारण सामान्य क्षेत्रों में चावल का कोटा 1 किलो कम किया गया है। विभाग की ओर से को उपभोक्ताओं निर्धारित कोटे के अनुसार राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। आटे के कोटे में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है। हिमाचल में पर्यटन को पंख लगाने और दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर श्रद्धालुओं लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत कार्यरत राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड NHLML ने पर्वतमाला परियोजना के तहत हिमाचल के सिरमौर जिले में के सफर को आसान बनाने के शिरगुल महादेव मंदिर, कांगड़ा में आदि हिमानी चामुंडा मंदिर, पालम पुरथरी चुंजा ग्लेशियर व चंबा जिले के भरमौर में भरमाणी माता मंदिर को रोपवे से जोड़ने के लिए कदम बढ़ाए हैं। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन 4 परियोजनाओं के दायरे में आने वाले क्षेत्र अपनी आध्यात्मिक और प्राकृतिक विशिष्टता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। सिरमौर और शिमला जिले की सीमा पर स्थित चूड़धार चोटी पर लगभग 3,647 मीटर की ऊंचाई पर भगवान शिव के रूप में पूजे जाने वाले ईष्ट देव शिरगुल महादेव का पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। कांगड़ा में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की गोद में लगभग 3,185 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आदि हिमानी चामुंडा मंदिर नंदिकेश्वर धाम माँ चामुंडा का मूल एवं प्राचीन स्थान है। चंबा जिले के भरमौर से करीब 4 किलोमीटर दूर और 2,700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भरमाणी माता मंदिर का भी विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों को अब हिम एक्सेस और हिम परिवार पोर्टल पर पंजीकरण व लॉगिन के दौरान आधार आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा मिलेगी। इससे एक ओर जहां फर्जी पहचान और डुप्लीकेट पंजीकरण पर अंकुश लगेगा, दूसरी ओर पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाना भी आसान होगा। सरकारी सेवाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। सरकार के पोर्टलों पर उपलब्ध 72 विभिन्न सेवाओं को इस प्रणाली के तहत लाया गया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने दोनों प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधार प्रमाणीकरण लागू करने का फैसला लिया है। यह व्यवस्था भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद लागू की गई है। हिमाचल प्रदेश को देश के प्रमुख फार्मास्यूटिकल हब के रूप में और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने अहम पहल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के प्रदेश में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने अथवा मोहाली स्थित संस्थान का एक्सटेंशन सेंटर खोलने के प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाया है। इस प्रस्ताव पर केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति पहल के तहत विचार किया जाएगा। मीडिया को जारी बयान में अनुराग ने कहा कि प्रदेश में इस तरह की उच्च स्तरीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान सुविधा स्थापित होने से उद्योग और अकादमिक जगत के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। राज्य में वर्तमान में 650 से अधिक फॉर्मुलेशन इकाइयां कार्यरत हैं। हिमाचल प्रदेश में सड़कों की सुरक्षा, रखरखाव और प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सड़क अवसंरचना संरक्षण कानून में अहम संशोधन किए गए हैं। किसी व्यक्ति की वजह से सड़क या अन्य ढांचा क्षतिग्रस्त होता है तो मरम्मत का खर्च, जुर्माना वसूला जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संशोधित कानून में सड़क अवसंरचना के डिजिटल और जियो कोऑर्डिनेटेड मानचित्र तैयार करने का प्रावधान किया गया है। सड़क की सीमा का एक बार सही तरीके से डिजिटल मैपिंग और जियो कोऑर्डिनेशन होने के बाद कार्रवाई के लिए बार बार मौके पर भौतिक सीमांकन की जरूरत नहीं होगी। ऊना में विकसित हो रहे बल्क ड्रग पार्क में फार्मा उद्योगों के लिए 81 प्लॉट तैयार किए गए हैं। इनके आवंटन की प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। पार्क में बाहरी राज्यों के उद्योगपतियों को भी निवेश का अवसर मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर से पहले चरण में उत्पादन शुरू हो जाए, मार्च 2027 तक सभी यूनिटें उत्पादन करना शुरू कर दें। इससे हिमाचल में फार्मा उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ प्रदेश के बाहर भी कच्चे माल की सप्लाई का रास्ता खुलेगा। बल्क ड्रग पार्क 11,240 बीघा में बन रहा है। पार्क में
1: मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

0: ਲੇਸ ਖੋਲੋ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।
1: श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

आप सभी को ज्योति पठानिया का नमस्कार। कार्यक्रम शुरू हो गया है गुड इवनिंग धर्मशाला और आप सभी हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। जी हाँ, इस फ्रिक्वेंसी के साथ आप सभी हैं, आपका मनपसंद चैनल है ये। और सबसे पहले आपको मुबारकबाद दे देती हूँ आज शिक्षक दिवस की। तो स्कूलों में बच्चे भी शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करके आ चुके होंगे और साथ ही साथ उनके अभिभावक भी गए होंगे। कई बार तो स्कूलों में जाना पड़ता है अभिभावकों को भी साथ में, और कईयों को तो खुद ही इनवाइट किया जाता है कि आइए और आप बच्चों को कुछ कहिए। हमारे समय में क्या होता था ना कि जो बड़े बच्चे होते थे, जो बड़ी क्लासेस के बच्चे होते थे, वो शिक्षक बनकर के जाते थे छोटी क्लासेस के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो कौन कौन से शिक्षक बनते थे, जो जो शिक्षक हमारे स्कूल में होते थे ना, तो उन्हीं का रूप हमें लेना होता था और थोड़ा सा स्टडी करके भी जाना होता था कि हम क्लास को क्या पढ़ाएंगे। इससे क्या होता था ना, एक तो शिक्षकों को थोड़ा सा हम रेस्ट दे देते थे उस दिन, और छुट्टी भी नहीं होती थी, और जो छोटी क्लासेस होती थी उसके बच्चे बड़े एक्साइटेड होते थे कि आज तो ये वाले जो टीचर हैं इनका रूप धर करके, मतलब गेटअप में एक दूसरा जो सीनियर क्लास का बच्चा है वो आएगा, हमें पढ़ाएगा, और कितनी खुशी मिलेगी। और इसके साथ साथ और क्या होता था ये कार्यक्रम में, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आगे। फिलहाल बात करते हैं कि आज फिर से हम पहुंच गए हैं वीकेंड में। जी हाँ, और अभी अभी तो हमने मनाई है जन्माष्टमी। जी, जन्माष्टमी का त्यौहार हम पिछले कुछ दिनों से मना ही रहे थे। जैसे कि एक दिन पहले अगर एक मंदिर से दूसरे मंदिर झांकियाँ जानी होती हैं तो वो झांकियाँ भी जाती हैं, और फिर अगले दिन कार्यक्रम होता है। जैसे कल रात को 12 बजे तक कार्यक्रम चला, और कल व्रत भी किए होंगे हमारे काफ़ी सारे श्रोताओं ने। तो यही कुछ दिवस होते हैं जो कि हमें अपनी संस्कृति से, अपने पुरातन समय से, अपने आध्यात्म से जोड़ करके रखते हैं। और उन सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत मुबारक जो किसी और ख़ास वजह से अपना ये दिन मना रहे हैं। आपको बता दूं कि हम अभी इस वक्त अपने फेसबुक पेज से भी लाइव हैं, 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला, ग्रीन लोगो वाला जो पेज है उससे लाइव हैं। तो चलिए आज का विचार ले लेते हैं, और विचार अगर शिक्षक दिवस है तो विचार भी उस पर ही आधारित होगा, ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं। एक अच्छा शिक्षक मात्र प्रश्नों के उत्तर देना ही नहीं सिखाता है, बल्कि वो बच्चों को इस काबिल बना देता है कि वो किस तरह से और कितनी तरह से अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकता है। यानी जिस भी तरह से वो चाहे, वो बच्चा वो अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकता है। और क्या क्या निशानियां होती हैं अच्छे शिक्षक की, और शिक्षक आपके जीवन में कौन कौन हो सकता है, सारी चर्चा आज इस कार्यक्रम में हम करने वाले हैं। बस बने रहिएगा हमारे साथ और सुनते रहिए ये कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ। लाइक तो कोई कर रहा है, लव के साइन भी भेज रहा है, लेकिन भाई कौन है, कम से कम एक कमेंट अगर यहाँ पर आ जाए तो फिर हमें भी अच्छा लगेगा कि कौन श्रोता हैं जो हमसे जुड़ गए हैं, इतने सारे लाइक्स भेज रहे हैं। धन्यवाद आपके लाइक्स के लिए।

अब देखिए दोस्तों, शिक्षक जो होता है ना, वो किसको पढ़ाता है? वो पढ़ाता है बच्चों को। लेकिन यहाँ पर जो गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वो गीत कुछ मन को छूता है। क्योंकि अगर दुनिया के सब लोग बच्चे ही होते ना, तो ये दुनिया स्वर्ग होती।

जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया के लोग बहुत अच्छे होते अगर सारे बच्चे होते तो। लेकिन भाई, अब उन बच्चों को पढ़ाना भी तो किसी ने, है ना, और उनके कोई माता पिता भी होंगे, उनके कोई संगी साथी भी होंगे और उनके कुछ रिलेटिव्स भी होंगे जो कि बड़े ही होंगे। तो अगर बच्चों को सही शिक्षा मिले, सही मार्गदर्शन मिले, तो बच्चे बड़े होकर के क्या क्या नहीं कर सकते। बस एक अदद जरूरत है सही मार्गदर्शन की, और इसीलिए आज का ये दिन मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है आज के दिन। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। एक महान शिक्षाविद, दार्शनिक और शिक्षक थे। जब वे राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ शिष्यों और दोस्तों ने उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी, और इस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय अगर इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। और उनकी इसी इच्छा का सम्मान करते हुए हर साल 1962 से हर वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। शिक्षक दिवस पर बहुत सारी बातें हैं हमारे पास, अभी फिलहाल आपको लिए चलते हैं हम अपने स्टूडियो के बाहर। समझ गए आप, हम वैसे स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन बाहर आपको इसलिए लिए चल रहे हैं क्योंकि बाहर का मौसम, तापमान कैसा है अभी ये भी जानना जरूरी है। तो इस समय धर्मशाला का तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है, ऐसा गूगल बाबा कहते हैं। आसमान में हल्की बूंदा बांदी, मतलब आसमान से हल्की बूंदा बांदी या फिर गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति है इस समय। वैसे आज थोड़ी सी धूप लगी थी, और हवा में नमी की बात करूँ तो नमी का स्तर लगभग 90% है, और हवा की गति 1 से लेकर 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो आज रात को धर्मशाला में मुख्य रूप से आंशिक रूप से बादल छाए रहने, यानी पार्शली क्लाउडी ये जो होगा, और हल्की बारिश वाला रहेगा।

दौर खत्म नहीं हुआ है। हमें लगता था कि जन्माष्टमी तक ये जो बरसाते बरसाते हैं ये ओवर हो जाती हैं। जन्माष्टमी के दिन तो बहुत ज़्यादा बरसात होती है, भारी भरकम सी, लेकिन कल के दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब कल शाम के वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब लोगों ने बहुत अच्छे से जन्माष्टमी का प्रोग्राम एंजॉय किया है। और इसी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं

जी श्रोताओं, बिल्कुल, जब मैं ये पंक्तियाँ सुन रही थी, बस इतनी ही पंक्तियाँ आपको सुनवानी थी हमने, तो जब मैं इनको सुन रही थी तो एक ख्याल मेरे जहन में आया, शायद आपके जहन में भी आया हो। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। आज शिक्षक दिवस पर जब हम जीवन को एक शिक्षक मान रहे हैं, तो सोचिए कि ये पंक्तियाँ हमें क्या सिखाती हैं। हमें मुक्ति और बदलाव का सबसे बड़ा सबक सिखाती हैं। सरहदें इंसानों ने बनाई हैं, लेकिन पंछी आसमान की असीम ऊंचाइयों में उड़ते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि ज्ञान और सोच कभी भी बंधनों में नहीं रहना चाहिए, यानी कि आपकी सोच को कोई सरहद रोक ना पाए। नदी जब बहती है तो ये नहीं देखती कि वो किस देश या किस धर्म की जमीन को सींच रही है। उसका काम सिर्फ जीवन देना है। ये सच्चे शिक्षक का स्वभाव भी नदी जैसा ही होता है, बिना किसी भेदभाव के हर किसी को ज्ञान की रोशनी देना। और हर हवा का झोंका किसी के लिए एक समान ही बहता है, और ये झोंका हमें सिखाता है कि जीवन में खुशियां और सकारात्मकता हर तरफ बिखेरनी चाहिए। सच तो यह है दोस्तों कि ज्ञान भी पंछी, नदी और पवन की तरह है। इसकी कोई सरहद नहीं होती। ज्ञान किसी एक देश, भाषा या मजहब की बपौती नहीं है। ये जहां से भी मिले इसे समेट लेना चाहिए। और हमारी जिंदगी का दायरा हमेशा सरहदों से परे होना चाहिए। और अब अगर वाकई में बात करें कि हमारा जो पहला शिक्षक होता है वो होती है हमारी माँ, हर कोई तो यही कहता है ना, परंतु मैं इससे थोड़ा सा और भी कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि जब आप आंख खोलते हैं, पैदा होते हैं मतलब कि, तो

माँ आपके सामने हो ही, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि माँ नहीं होती है, तो भी तो कोई ना कोई आपको संभालता है, आपकी रक्षा करता है, तो वो ही होता है आपका पहला शिक्षक, जो कि आपको जीवन जीना सिखाता है, संभालता है, संवारता है, बड़ा करता है। जैसे कि श्री कृष्णा को भी कोई और ही मिला था उनका पहला शिक्षक। अब देखिए आज के कार्यक्रम में श्री कृष्ण की बात भी साथ साथ में होगी ही, कहीं ना कहीं पर मैं जिक्र लेकर आऊंगी ही। अभी अभी तो हमने यह त्योहार मनाया है, तो हम कैसे उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं।

चलिए, वैसे कहने में यही आता है कि प्रथम शिक्षक हमारी माता। और देखिए, मैं इस बात को यहीं रोक रही हूँ, आपको सुनवा रही हूँ एक खूबसूरत सा भजन कह लें या गीत कह लें, और इस बात को आप कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ आगे कार्यक्रम में। जी हाँ, जब वक्त आएगा तो मैं बताऊंगी आपको कि आप कॉल करेंगे तो प्रथम शिक्षक माता है, और बाकी और कौन कौन से शिक्षक कब कब हमारी लाइफ में आते हैं ये बताना है आप सबको, और क्या क्या शिक्षा आपने पाई है आज तक वो भी बताना है। नंबर आपको पता है, फिर कार्यक्रम में आगे बता दूंगी।

जी हाँ दोस्तों, माता पिता, गुरु, हमारे शिक्षक और भी जीवन की बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हम तो ये कहेंगे कि पूरा का पूरा जीवन ही एक शिक्षक के रूप में कार्य करता है। और देखिए, आपसे बातें करते करते 6:30 हो भी चुके हैं और हमें डर लगना शुरू हो जाता है कि भाई पता नहीं हमारी बातें जो हैं वो पूरी हो भी पाएंगी कि नहीं, जो जो हम सोच करके आए हैं आप सभी से बात करने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बहुत समय है, धीरे धीरे कार्यक्रम में आगे बढ़ते रहेंगे, आपको मनोरंजन भी करवाएंगे और करेंगे आपसे बातचीत भी। 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से कार्यक्रम है गुड इवनिंग धर्मशाला। और हाँ, मैं तो भूल ही गई कि आज वीकेंड तो बेशक है, लेकिन आज आप लोगों को छुट्टी भी तो थी कृष्ण जन्माष्टमी की।

या फिर कल थी शायद। इस हॉट चेयर पर बैठ करके ना मेरा दिमाग भी कभी कभी घूम जाता है। आज तो शिक्षक दिवस है, यानी कि दोनों दिवस जो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहे। कल आप लोगों ने जो है वो खूब धूमधाम से सेलिब्रेशंस की, और आज भी आप लोगों ने स्कूलों में खूब अच्छे से शिक्षक दिवस मनाया होगा। देखिए, ये जो शिक्षक दिवस की बात मैं कर रही थी ना जब कार्यक्रम की शुरुआत में ही, कि जब हम लोग भी शिक्षक बनते थे, जब हम छोटे थे ना, तब जब हमें कोई पढ़ाने आता था तो हम उसे जज करते थे कि ये कैसे पढ़ा रहा है या पढ़ा रहे हैं, और उनको हम ही नहीं जज करते थे, मतलब क्लास के बच्चे ही नहीं, बल्कि वो शिक्षक खुद भी आते थे क्लास में, जिन की तरफ से वो पढ़ाने आते थे, तो वो शिक्षक आते थे और उनको नंबरिंग करते थे, ये देखते थे कि वो सही में अच्छे से पढ़ा रहे हैं बच्चों को या नहीं, वो अपना सबक खुद से अच्छे से पहले याद करके आए हैं, तो ही वो बच्चों को आगे अच्छे से सिखा पाएंगे, पढ़ा पाएंगे ना। तो इस तरह की मार्किंग होती थी, और फिर जब जो बच्चे उसमें उत्तीर्ण होते थे उनको प्राइजेस भी दिए जाते थे। आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? ऐसा होता था आप लोगों के साथ, या अभी भी कहीं स्कूलों में होता होगा? तो अभी का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे समय में तो ऐसा होता था। और साथ ही फिर हाफ डे होता था, और हाफ डे तक वो क्लासेस चलती थी, और उसके बाद फिर फंक्शन शुरू हो जाता था टीचर्स डे का, यानी कि टीचर्स भी तो डिज़र्व करते हैं ना भाई। तो कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हम भी करते थे, और उसमें हम लोग तो मेडली भी बनाते थे, यानी कि कुछ जो हिंदी गाने हैं उनके ऊपर कुछ व्यंग्यात्मक लाइनें लिख करके, और वो गाते होते थे तब। और मैंने भी ऐसे बहुत सारे काम किए हुए हैं, तभी मुझे याद है। बहुत अच्छे थे वो दिन, बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब जो बच्चे हैं, पता नहीं वो किस तरह से इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, या फिर देखते हैं, अनुभव करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग अभी भी ऐसा करते हैं तो कार्यक्रम में फ़ोन करके बताइएगा ज़रूर। 7018-1170-91 हमारा नंबर है, और आप मैसेज भी कर सकते हैं इसी नंबर पर। अगर आप बात ना करना चाहें तो मैसेज के लिए भी ऑप्शन खुला हुआ है।

जी श्रोताओं, तो अब हम बात करें उस पर जिस पर कि मैं पहले से ही आपसे बात करके आई हूँ। जी, आज शिक्षक दिवस पर हम बात कर रहे हैं उस सफ़र की जिसने हमारी सभ्यता को गढ़ा है। सोचिए, एक दौर था जब स्कूल की चारदीवारी में नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में हम होते थे, जिन्हें हम गुरुकुल कहते थे। और उस दौर के शिक्षक, जो गीत आप अभी सुन रहे हैं ना, वो गीत खत्म नहीं हुआ है, बस ज़रा सा हमने उसे स्टे कर दिया है। तो उस दौर के शिक्षक यानी कि गुरु केवल अक्षर ज्ञान नहीं देते थे बल्कि जीवन जीना भी सिखाते थे। गुरुकुल के शिक्षक निस्वार्थ भाव से बिना किसी फीस के छात्र को अपने परिवार का हिस्सा बनाकर रखते थे।

और दोस्तों आपको इस गीत से ये भी समझ में आ रहा होगा कि एक जो नन्ही सी बिटिया है वो अपने भाई के लिए ये गीत गा रही है, यानी कि उस समय में जो पुरुष होते थे यानी जो लड़के होते थे उन्हें ही ज़्यादातर पढ़ाया जाता था और लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। लेकिन फिर भी ये जो प्यारी सी बच्ची है ये अपने भाई के लिए कितना अच्छा सोच रही है कि कहीं उसका भाई जो है वो अनपढ़ ना रह जाए। तो जहाँ पर गुरुकुल में शिक्षा लेने जाते थे बच्चे, वहाँ राजा का बेटा हो या किसी गरीब का, सब एक समान थे। गुरु का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं बल्कि शिष्य का चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टर बिल्डिंग और आत्मनियंत्रण उसको सिखाना था।

जी हाँ दोस्तों, और गुरु का सम्मान जो था वो राजाओं से भी ऊपर होता था उस वक्त की, ये बात है। हमने आपसे कहा था ना कि गुरुकुल से गूगल तक का सफ़र होगा।

तो समय बदला, इतिहास बदला और अंग्रेजों के आने के बाद गुरुकुल की जगह आधुनिक स्कूलों ने ले ली। और आज हम गूगल और एआई के दौर में जी रहे हैं। आज का शिक्षक सिर्फ ब्लैकबोर्ड तक सीमित नहीं है, वो एक स्मार्ट टीचर या फिर डिजिटल मेंटोर बन चुका है। ये

श्रोताओं क्षमा करें कि हमारा ध्यान थोड़ा सा फ़ोन से हट गया था और यहाँ पर फ़ोन आ करके, मतलब आप लोग फ़ोन कर रहे हैं, क्षमा करें, आप फिर से करें, हम आपकी फ़ोन कॉल ज़रूर लेंगे।

दोस्तों, आज का जो शिक्षक है वो एक स्मार्ट टीचर या फिर डिजिटल मेंटोर बन गया है, लेकिन इस बदलाव के साथ एक कमी भी आई है। आज शिक्षा एक बड़ा उद्योग बन चुकी है। कई बार शिक्षक और छात्र का वो भावनात्मक रिश्ता यानी इमोशनल बॉन्ड जो होता है वो पीछे छूट जाता है, जो कभी उस गुरुकुल में हुआ करता था। आज के शिक्षकों पर सिलेबस पूरा करने, परीक्षाओं के नंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव काम का बहुत दबाव है।

ज्ञान तो अब उंगलियों पर इंटरनेट पर उपलब्ध है, इसीलिए आज के शिक्षक के सामने चुनौती सिर्फ जानकारी देने की नहीं बल्कि बच्चों को सही और गलत में फर्क समझाने की भी है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला।

तो जैसे ही हमें आज़ादी मिली थी तो ये शिक्षक बच्चों को ये भी समझा रहे हैं कि किस तरह से हम भंवर से अपनी किश्ती निकाल करके, यानी आज़ादी हमें कितनी मुश्किल से मिली है, तो बच्चों को सिखाया जा रहा है कि इस देश को कैसे संभाल के रखना है।

तो दोस्तों सवाल ये है कि आज के दौर में शिक्षक को कैसा होना चाहिए। आज के शिक्षक को केवल ज्ञान का नजरिया नहीं बल्कि मार्गदर्शक होना चाहिए।

0: संभाल के।
1: जी हाँ, इस देश को हमारे ये कर्णधार ही तो संभाल के रखेंगे, हमारी युवा पीढ़ी या फिर हमारे आने वाले ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें ही तो ये सिखाया जा रहा था इस गीत में कि हम कितनी मुश्किलों से आज़ादी हमें मिली है। और हमें फ़ोन कॉल आ रहा है, हम लेते हैं ये कॉल। हेलो हेलो,
2: हेलो, नमस्कार मैम।
1: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको?
2: जी,
1: इको तो नहीं आ रही?
2: मैं ठीक आ रही हूँ मैम।
1: जी जी बताएं, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं हमारे आज के विषय पर?
2: सर तो मैम, आपको टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी सुनने वालों को भी।
1: जी आपको भी। जी
2: जी, मैं इंदु सिद्धवाड़ी से।
1: अच्छा जी, इंदु जी, हाँ आपका स्वागत
2: जी। थैंक यू मैम।
1: जी बताएं इंदु जी, कैसा रहा फिर आज का आपका दिन?
2: बढ़िया रहा मैम।
1: आपने भी कुछ शिक्षक दिवस मनाया, सेलिब्रेट किया?
2: जी मैम, आज हुई स्कूल में मीटिंग, तो मैं भी गई थी स्कूल में, तो टीचरों के साथ और कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल, जो मेरी फ्रेंड थी वो भी आई थी, तो सबके साथ हमने एंजॉय करा। थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बोला भी तो अच्छा लगा। मतलब ये दिन होता है स्पेशल एक गुरुओं का, कि हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनको एक प्रणाम तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी दूर हैं हमारे शिक्षक हैं। देखो, चाहे हमारे टीचर हैं, चाहे हमारे माता पिता हैं, चाहे भगवान है ना, सब हमारे गुरु में, जिनसे भी हम कुछ भी छोटी मोटी कुछ भी चीज सीखते हैं, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो वो सब हमारे गुरु हैं, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है।
1: जी हाँ, बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं ना।
2: जी
1: तो क्या इंदु जी, फिर आपने कहा आज आपको मौका मिला कुछ कहने का, तो
2: जी
1: तो स्कूल में गए थे आप?
2: हाँ जी, स्कूल में गई थी। जैसे मैं बोलना चाहती थी, आज का दिन है उन सबको याद करने का है जिन्होंने हमें जीना सिखाया, है ना। सबसे पहले आते हैं हमारे पेरेंट्स आते हैं, हमारे पहले गुरु हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमें बोलना चलना सही गलत का फर्क सिखाते हैं, बिना किसी स्वार्थ के जिंदगी भर हमें संभालते हैं। और दूसरे गुरु हमारे शिक्षक, जो माँ बाप के बाद हमारे जीवन में जीवन को दिशा देते हैं। हमारे शिक्षक अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, जीवन का असली अर्थ हमें बताते हैं ना
1: जी।
2: कभी डांट कर तो कभी प्यार से,
1: बिल्कुल
2: वही हमें सही राह दिखाते हैं ना।
1: हाँ,
2: और अंत में जैसे हमारे स्वर हिम्मत और इंसानियत सिखाता है, वो है हमारा भगवान, जो हमें हर मुश्किल में संभालता है। इसलिए कहते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना जीवन नहीं। आज के मेरे गुरुओं को मेरा प्रणाम, ऐसी यही बोलना चाहती थी
1: जी। आपको कोई अपना शिक्षक याद आता है जिनसे आपने
2: जी पढ़ा? बिल्कुल
1: हाँ,
2: जी बिल्कुल, काफी मेरे मतलब टीचर हैं। एक हमारे सर, प्रथम मैं बोलूँ कि मैं फोर्थ क्लास में थी, चल पहले हमारे टाइम थोड़ा अलग था मैम, आज का टाइम कुछ अलग है। हमारे टाइम में क्या था कि स्ट्रिकनेस बड़ी ज्यादा होती थी।
1: हाँ, हाँ,
2: जरा से कुछ पढ़ने में अगर स्पेलिंग गलत होगी या कुछ हुआ तो हमें डर बहुत होता था। तो हमारे जैसे मैं शुरू में गई तो एक टीचर थी मेरी, वो उस टाइम बहुत डर थी उनका, मतलब उस टीचर का खौफ ही इतना था कि वो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ पाते थे। सेम मेरे साथ भी हुआ, जैसे ऐसा नहीं कि हमें पता होता था, लेकिन हमें उनसे डरते, उनका इतना डर था कि हमें ये चक याद रहता कि हमें ये चीज लर्न भी है या नहीं है।
1: अच्छा,
2: इतना तक, हाँ जी, इतना डर था उस टाइम। और हमने जब सामने मिल जाए तो हमने छुप जाते थे। आजकल के देखो, आज में और उस टाइम में कितना फर्क है। आज देखो टीचरों के साथ बच्चे ऐसे एज ए फ्रेंडली, जैसे अपने घर में जैसे होते हैं ना, वैसे अपने पेरेंट्स के साथ वैसे ही टीचरों के साथ डांस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं ना, कितना घुल मिल जाते हैं उनके साथ। आज जैसे मेरी बेटी आज तो कॉल कर रही है अपने टीचरों को।
1: अच्छा।
2: टीचर जिनके साथ पढ़ के गई तो उनको सुबह उनको कॉल करी, तो टीचरों ने मुझको याद रखा। हाँ जी,
1: तो आपको क्या लगता है कि वो जमाना अच्छा था या ये वाला जमाना अच्छा है कि लोग जो हैं वो टीचर्स के साथ घुल मिल के रहते हैं, अपने मन की पूरी बात कह पाते हैं?
2: मैम देखो ना, थोड़ा सा बदलाव ठीक है, ये बात तो ठीक है कि टीचरों के साथ घुल मिल जाते हैं, लेकिन आज का समय देखे तो वो पहले जैसा समय था, आज के अकॉर्डिंग देखे तो पहले वाला समय अच्छा था।
1: अच्छा था, लेकिन ठीक है, अगर आप घुल मिल के रहते भी हैं, जैसे पेरेंट्स के साथ भी घर में ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डर होना चाहिए, है ना,
2: जी
1: उनके
2: बिल्कुल।
1: ताकि उनकी जो इज्जत है वो भी हमारे मन में बनी रहे।
2: हाँ जी, थोड़ा और देखो ना, हम पेरेंट्स पर भी डिपेंड करते हैं ना थोड़ा, क्योंकि हम पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि जरा से टीचरों ने मार दिया या कुछ भी किया तो हम फटाफट उनके कंप्लेंट करके चले जाते हैं
1: बिल्कुल,
2: या
1: मैं
2: उनसे
1: इसी बात
2: पूछने
1: पर आ
2: चले
1: रही
2: जाते
1: थी।
2: हैं,
1: हाँ
2: है
1: जी, हाँ जी,
2: नहीं। तो ये भी गलत चीज देखो ना, बोलते ना गुरु की डांट जो है वो माँ बाप के लाड प्यार से कहीं ज्यादा बेहतर है।
1: जी
2: तो ये तो चलो, ये जहाँ कहीं अगर ज्यादा ही हो जाए वहां तो बोलना जरूरी है, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर मैं क्यों इतना इश्यूज नहीं करने चाहिए कभी भी। देखो अगर डांट पड़ेगी, इनको डर होगा तभी वो आगे पढ़ेंगे ना,
1: एक
2: तभी बढ़
1: माँ
2: पाएंगे
1: होती,
2: आगे।
1: हाँ एक अब माँ
2: हाँ एक
1: होते
2: माँ,
1: हुए
2: हाँ जी
1: आप ये
2: देखे,
1: बात कर
2: जैसे
1: रहे
2: मैं
1: हैं।
2: भी, जी, जैसे एक मैं माँ हूँ तो मैं ही माँ हूँ, आप भी
1: हाँ
2: माँ है, तो हमारे बच्चे जो हमें उनको लाड़ी थोड़ी ना करते हैं, उनको मारते भी हैं, जब मारने की बात है डांटते भी हैं और पीटते भी हैं उनको, है ना। तो उसी तरीके से बच्चों को भी अब मारना तो जरूरी होता है,
1: जी
2: जहां पर
1: जी
2: मारना
1: हाँ,
2: वहां पर
1: मतलब कि
2: जरूरी भी
1: अगर
2: है।
1: शिक्षक कुछ थोड़ा बहुत कह भी दे तो
2: हाँ
1: थोड़ा
2: जी
1: इतना ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए, ये कहना
2: जी
1: है आपका।
2: बिल्कुल
1: और इंदु जी की
2: जी
1: बात हमें सही लगती है, हम सहमत हैं इनसे। इंदु जी, आपने कार्यक्रम में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इतनी सब बातें बताने के लिए, शेयर करने के लिए, और इसी तरह से आप बने रहिएगा हमारे साथ।
2: थैंक यू मैम,
1: जी,
2: थैंक यू,
1: धन्यवाद बहुत बहुत।
2: ठीक है।
1: चलिए श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं आपको ये गीत। इंदु जी की बातें तो आपने सुन ली।

0: जी श्रोताओं, ये जो गीत आपने सुना, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये भी बच्चों को शिक्षा ही दी जा रही थी कि अगर डगर अच्छी होगी तो आप जो भी कुछ ज़िंदगी में करेंगे वो अच्छा ही होगा और हमारे देश के लिए फ्रूटफुल होगा, विकास हमारे देश का होगा इस चीज़ से। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, एक दिया तब तक दूसरे दिए को नहीं जला सकता जब तक उसकी अपनी लौ ना जल रही हो। तो शिक्षक को भी नई तकनीक और समय के साथ खुद को बदलना होगा। तो इंटरनेट ज्ञान तो दे सकता है लेकिन संस्कार नहीं। आज के शिक्षक को बच्चों में ईमानदारी, करुणा और एक अच्छा इंसान बनने के गुण भरने होंगे। चलिए इस विषय पर बातें अभी और भी करेंगे हम। फिलहाल चलते हैं हिंदी समाचारों की ओर।
1: हाँ, कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वही सही मायने में प्रगतिशील समाज है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
1: इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
3: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
1: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। यह व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉक्टर एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है और अपनी विरासत को समझने के लिए अब किसी और की अनुमति का इंतजार नहीं करता। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम CSS की CSS शील्ड पहल के शुभारंभ करते हुए कहा कि यह पहल कार्मिक मंत्रालय के इस व्यापक प्रयास के अनुरूप है जिसके तहत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में बचाव अभियान जारी है, जबकि लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच दुबई में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी कियोंग से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारतीय जोड़ी ने पहला गेम जीत लिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आज बात हो रही है शिक्षक दिवस की, जो कि आज आप लोगों ने स्कूलों में खूब सेलिब्रेट किया, लेकिन असली जो मकसद है इस शिक्षक दिवस के पीछे का, क्या वहां तक आप लोग पहुंच पाते हैं या सिर्फ हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी का जन्मदिन ही सेलिब्रेट करके वहाँ से वापस चले आते हैं और आपको पता है कि बस आज उनका जन्मदिन होता है तो बस इसीलिए शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो इसीलिए बहुत सारी बातें हम आप तक रख रहे हैं आज इसी कार्यक्रम के माध्यम से। और दोस्तों, जब हम इंदु जी से बात कर रहे थे तो एक कॉल हमें पीछे से और भी आ रही थी, मतलब आज श्रोता कॉल कर ही रहे हैं और उनसे हम बता दें कि अब हम वापस आ चुके हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और बाकी सभी श्रोताओं का भी स्वागत जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है। तो आज हमने बात की गुरुकुल से लेकर गूगल तक का सफ़र तय किया हमने, वक्त बदल गया है लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली, किताबें सिर्फ सूचना देती हैं लेकिन शिक्षक हमें उस सूचना को ज्ञान और संस्कार में बदलना भी सिखाते हैं। तो दोस्तों, इंटरनेट आपको ये तो बता सकता है कि रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलते हुए जब पैर थक जाएं तो थपकी देकर के आगे बढ़ाना सिर्फ एक शिक्षक ही कर सकता है। इसीलिए तकनीक चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, गुरु का स्थान हमेशा सर्वोच्च रहेगा। और अपने शिक्षकों को याद कीजिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए।

गीत तो आप सभी को याद होगा ना, बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करता ये गीत। अब क्यों बंद हो गए हैं ऐसे गीत बनना?

दोस्तों, जब हम शिक्षक शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एक क्लासरूम, एक ब्लैक बोर्ड और हाथ में चौक लिए एक गुरुजी की छवि उभरती है। लेकिन क्या शिक्षक की परिभाषा सिर्फ एक स्कूल या फिर कॉलेज की चार दीवारी तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। ये तो सच तो ये है कि जीवन का हर क्षण, हर वो क्षण, हर वो व्यक्ति और हर वो वस्तु जो हमें कुछ नया सिखा जाए, वो हमारी शिक्षक है।

और जब हम स्कूल जाते हैं तो शिक्षक तो हमें सबको ही जो पाठ पढ़ाते हैं वो सबको ही एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन कोई सच में इसमें कहा गया है ना, कोई आगे चलता है कोई पीछे चलता है, यानी कोई आगे निकल जाता है और कोई पीछे रह जाता है। लेकिन इसमें शिक्षक का कोई कसूर नहीं होता, उसने तो सबको एक जैसा ही पढ़ाया। और श्रोताओं, अभी भी आप बात कर सकते हैं हमसे इस विषय पर कि आपका क्या नजरिया है, क्या कहना चाहते हैं आप आज इस शिक्षक दिवस पर। चाहे तो मैसेज भी कर सकते हैं।

तो हम आपसे कह रहे थे कि हम स्कूल से तो कुछ सालों में पास आउट हो ही जाते हैं, लेकिन हम प्रतिपल एक एक क्षण कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। और जीवन की इस अनवरत पाठशाला से हम कभी भी पास आउट नहीं होते, क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही एक कॉन्टिन्यूस यानी सतत सीखने की प्रक्रिया है। और जैसे मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, तो ये भी हमारे शिक्षक ही हैं। तो हम आंखें खोलकर देखें, दिल को खुला रखकर देखें, तो हमारे आसपास मौजूद प्रकृति हमारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। और इसके पांच तत्व और अलग-अलग रूप हमें जीवन के सबसे बड़े पाठ पढ़ाते हैं। नदियां और नाले हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं। रास्ते में चाहे विशाल चट्टान आए या फिर कोई भी बाधा, नदी कभी नहीं रुकती। वो हमेशा अपना रास्ता खुद बनाती है और समुद्र में आखिरकार मिल ही जाती है। यहाँ तक कि एक छोटा सा नाला भी हमें सिखाता है कि रुका हुआ पानी सड़ जाता है।

हवा। और दोस्तों ये जो हवा होती है ना, ये अदृश्य होती है लेकिन उसका अस्तित्व हर जगह है। वो बिना किसी भेदभाव के सबको जीवन देती है। जब आंधी आती है तो बड़े बड़े अकड़े अकड़े पेड़ भी टूट जाते हैं, लेकिन लचीली घास हमेशा सुरक्षित रहती है। हवा हमें विनम्रता और लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी सिखाती है।

आग की बात करें तो आग सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, लेकिन वो सोने को और शुद्ध बनाती है। आग हमें ये सिखाती है कि हमारे भीतर एक भी एक ऊर्जा है और तेज यानी कि पैशन होना चाहिए, जो बुराइयों को जला सके और मुश्किलों में हमें और निखार सके।

और हम बात करें पानी की, तो पानी को तो आप जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी आकार का रूप ले लेगा। पानी हमें परिस्थितियों के अनुकूल ढलना, अडैप्टेबिलिटी और हमेशा शांत रहकर अपनी राह बनाना सिखाता है।

0: और दोस्तों हमारे पशु पक्षी भी तो प्रकृति के सबसे सच्चे और वफादार शिक्षक हैं।
1: जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं।
0: अगर हम उन्हें ध्यान से देखें तो वो बिना एक शब्द बोले हमें जीवन जीने के वो अनमोल पाठ पढ़ा जाते हैं जो मोटी मोटी किताबों में भी नहीं लिखे, यानी वो किताबें भी हमें नहीं सिखा पाती।

एक नन्ही सी चींटी को देखिए, वो अपने वजन से कई गुना भारी दाना लेकर के दीवार पर चढ़ती है, 100 बार गिरती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। चींटी हमें अथक प्रयास और मिलकर काम करने की ताकत सिखाती है। पक्षियों का कोई अलार्म क्लॉक नहीं होता, फिर भी वो रोज़ सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाते हैं और चहकने लगते हैं। वो हमें अनुशासन डिसिप्लिन सिखाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि वे कभी कल के लिए भोजन इकट्ठा नहीं करते, वो आज में ही जीते हैं और हमें संतोष सिखाते हैं।

बकुला पानी में एक पैर पर खड़े होकर के पूरी एकाग्रता यानी फोकस से अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाता है, और वहीं हंस हमें विवेक सिखाता है जो दूध और पानी में से सिर्फ दूध को चुन लेता है। हमें भी समाज की बुराइयों को छोड़ करके सिर्फ अच्छाइयों को अपना लेना चाहिए। और कुत्ते को क्यों पीछे छोड़ें, वो तो वफादारी और प्रेम का प्रतीक है। एक पालतू कुत्ता हमें सिखाता है कि वफादारी और बिना शर्त प्रेम क्या होता है।

तो आप चाहे जितने भी गुस्से में हो, दुखी हो, जो वो पालतू पशु है ना आपके घर में, वो हमेशा आपका स्वागत उतने ही उत्साह से करता है। उसे नहीं पता होता है कि आपके मन में कैसे भाव चले हैं। तो श्रोताओं, जब भी आप अगली बार किसी पक्षी को उड़ते हुए या फिर किसी जानवर को देखें, पशु को देखें, तो सिर्फ उसे देखिएगा मत, बल्कि ये सोचिएगा कि ये बेजुबान जीव आज मुझे जिंदगी का कौन सा खूबसूरत पाठ पढ़ा रहा है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो दोस्तों, प्रकृति के बाद अब बारी आती है हमारे आसपास के समाज की। हर वो इंसान जिससे हम मिलते हैं वो हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है। जो लोग हमसे प्यार करते हैं, हमारी मदद करते हैं, वे हमें करुणा, दया और निस्वार्थ प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं।

0: जीने दो।
1: और पता है ना आपको कि किस मूवी का गाना है ये? जी हाँ, थ्री इडियट्स। और इसमें भी वो पढ़ते ही रहते हैं, तो जीवन में जो लोग हमें धोखा देते हैं, हमारे साथ गलत करते हैं या हमारे रास्ते में मुश्किलें खड़ी करते हैं, वे भी हमारे बहुत बड़े शिक्षक हैं। वो हमें धैर्य, सतर्कता और खुद को मजबूत बनाना सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना है, यानी कि वो करके चले गए कोई बात नहीं, लेकिन हमें नहीं करना है किसी और के साथ।
0: लिख लिख कर पढ़ा।
1: एक छोटा बच्चा हमें बिना किसी लालच के निश्चल मुस्कान और जिज्ञासा सिखाता है, तो एक बुजुर्ग का झुर्रियों से भरा चेहरा हमें अनुभव और ठहराव का मूल्य समझाता है।

तो इसलिए मेरे प्यारे रेडियो श्रोताओं, आज शिक्षक दिवस पर हमें उन सभी का आभार मानना चाहिए जिन्होंने हमें आगे बढ़ना सिखाया है। चाहे वो आपकी ठोकरें हो, असफलताएं हो, बदलता हुआ मौसम हो, या राह पर चलता कोई अजनबी हो, और या फिर ये हमारे खूबसूरत से गीत हो, क्योंकि गीत भी तो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमारे शिक्षक होते हैं। तो जब तक आप एक छात्र बनकर के सीखने को तैयार रहेंगे ना, तब तक आप जीवंत हैं। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे तो सब कुछ आता है, बस उसी दिन आपकी प्रगति रुक जाएगी। तो आइए प्रकृति के इस खुले क्लासरूम में एक सच्चे शिक्षक की तरह हम बैठें और जीवन के हर एक क्षण से कुछ ना कुछ नया सीखते रहें।

वैसे तो ये पूरा जीवन ही हमारा सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे आखिरी शिक्षक है। स्कूल कॉलेज के शिक्षक तो हमें सिर्फ कुछ साल पढ़ाते हैं, लेकिन ये जीवन नाम का शिक्षक हमारे पैदा होने से लेकर के आखिरी सांस तक हमारे साथ रहता है और हर दिन हमारी परीक्षा भी लेता है और हमें सिखाता भी है

दोस्तों, आज शिक्षक दिवस पर हमने गुरुकुल की बात की, गूगल की बात की, प्रकृति और गीतों की भी बात की। लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे बड़े गुरु की जो सब हम सबके भीतर और हमारे आसपास हर पल मौजूद है, और वो है गुरु, हमारा खुद का जीवन, हमारी जिंदगी। किसी ने खूब कहा है कि स्कूल में पहले पाठ पढ़ाया जाता है और बाद में परीक्षा होती है, लेकिन जिंदगी एक ऐसा अनोखा शिक्षक है जो कि परीक्षा पहले लेती है और पाठ बाद में पढ़ाती है, सिखाती है। जब जिंदगी में अच्छा वक्त आता है तो ये हमें जीवन में हमें कृतज्ञता और विनम्रता सिखाता है, और जब कठिन समय आता है, जब हम टूट रहे होते हैं, तब यही जीवन हमें धैर्य और अंदर से मजबूत बनना सिखाता है। हमारी हार, हमारी नाकामियां भी हमारी बहुत बड़ी शिक्षक हैं। जब हम गिरते हैं तो जिंदगी हमें सिखाती है कि खड़े कैसे होना है। यह हमें बताती है कि रास्ता गलत था लेकिन इरादा नहीं। हर बदलता हुआ दिन, हर बदलती परिस्थिति हमें सिखाती है कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। यह जीवन हमें हर हाल में आगे बढ़ना और बहना सिखाता है। और मेरी इस बात से आप भी इत्तेफाक तो जरूर रखेंगे दोस्तों कि देखिए, जो दिन कल था ना, वैसा आज बिल्कुल भी नहीं है। आज कुछ और कर रहे होते हैं हम। हाँ, कल के पेंडिंग काम जरूर निपटा रहे होते हैं, लेकिन आप सोचें कि जैसा कल का दिन था वैसा ही आज का है, तो नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सच तो ये है दोस्तों कि हम अपने जीवन के हर एक अनुभव से, हर एक थपेड़े और हर एक मुस्कान से परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते चले जाते हैं। और जीवन एक ऐसा शिक्षक है जो कभी भी रिटायर नहीं होता। जब तक सांसें हैं तब तक ये क्लासरूम खुला ही है, और हम सब इसके छात्र हैं, बने रहेंगे।

शिक्षक दिवस से हटकर के अब हम बात कर लेते हैं एक बड़े ही मजेदार दिवस की जो कि विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। जी हाँ, आज विश्व समोसा दिवस है, जिसे कि आप बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं खाना, समोसे जी, जिसमें आलू होते हैं, या आजकल तो अब तो और भी तरह तरह के समोसे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सभी को समोसा खाना पसंद ही है। और ये दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है।

तो भाई समोसे का जो असली या फारसी नाम है ना, वो है सम्बुकसक। और इसका अर्थ होता है त्रिकोणीय पेस्ट्री। 13वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान मध्य पूर्व के व्यापारी व्यापारिक रास्तों के जरिए इस व्यंजन को भारत में लेकर आए थे। तो शुरुआत में तो समोसे जो हैं वो मीट, कीमा और सूखे मेवे में भरे, मतलब समोसे में भरे जाते थे और इन्हें तलने के बजाय बेक किया जाता था। पर भारत आने के बाद ये पूरी तरह से शाकाहारी रंग में ढल गया और उबले हुए मसालेदार आलू और मटर इसकी मुख्य पहचान बन गए। तो समोसा सिर्फ भारत या एशिया तक सीमित नहीं है, ब्रिटेन, अमेरिका, अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में भी इसे बड़े चाव से खाया जाता है। समोसे ताजे। और भारत के कई शहरों से समोसे का बड़े पैमाने पर विदेशों में एक्सपोर्ट भी होता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश का जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूरोपीय देशों में 100 करोड़ से अधिक का समोसा एक्सपोर्ट करता है। और आज समोसे के 500 से भी ज्यादा रूप मौजूद हैं, परंपरागत पंजाबी आलू समोसे से लेकर के बंगाली शिंगड़ा, कीमा समोसा, कॉर्न चीज समोसा और यहाँ तक कि मीठे में चॉकलेट समोसा भी लोग अब पसंद कर रहे हैं। तो चलिए, मुझे लगता है कि ये गीत भी आपको पसंद जरूर आया होगा, ताजे समोसे खा लो। जी हाँ, अगर समोसे खाने हो ना तो ताजे ही अच्छे लगते हैं।

और हम आपको बता दें कि आज एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस और भी है जी, बड़ा मज़ेदार सा दिवस है ये भी, और इसका नाम है विश्व दाढ़ी दिवस। वैसे अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस भी आज है। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के बारे में मेरी सहयोगी आरजे सुमन ने आपसे सुबह बात कर ली है। तो विश्व दाढ़ी दिवस के बारे में बात करते हैं हम। ये हर साल सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है, और आज क्योंकि पहला शनिवार है तो इसलिए आज हम मना रहे हैं विश्व दाढ़ी दिवस। ये दिन दुनिया भर में दाढ़ी रखने वाले पुरुषों, उनकी व्यक्तिगत शैली और दाढ़ी की ग्रूमिंग को समर्पित है। कुछ खास दिलचस्प बातें अगर आप जानेंगे इस दिवस के ऊपर तो वो ये हैं कि विश्व दाढ़ी दिवस के दिन दाढ़ी काटना या शेव करना बेहद अपमानजनक माना जाता है। जो लोग दाढ़ी रखते हैं वे आज के दिन रेजर को हाथ भी नहीं लगाते, और कुछ संस्कृतियों में तो ये भी माना जाता है कि आज के दिन दाढ़ी रखने वाले पुरुष घर का कोई भी काम या फिर थकावट वाला काम नहीं करेंगे, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य जो बिना दाढ़ी वाले हैं उनकी सेवा और खातिरदारी करेंगे। और दुनिया के कई देशों में तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और स्वीडन जैसे देशों में इस दिन दाढ़ी की लंबाई, स्टाइल और रचनात्मकता को लेकर के बड़ी बड़ी सी प्रतियोगिताएं और पार्टियां भी आयोजित की जाती हैं। तो दाढ़ी को हमेशा से ही ताकत, बुद्धिमानी, मर्दानगी और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया। तो इतिहासकारों के अनुसार 800 ईस्वी के आसपास डेनमार्क के वाइकिंग्स योद्धा भी अपनी दाढ़ी के सम्मान में एक विशेष दिन मनाते थे। आधुनिक रूप में इस दिवस को नियमित रूप से मनाने की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। और अब आपको लिए चलते हैं इस गीत की ओर, जो कि हमने लिया है फिल्म बढ़ती का नाम दाढ़ी से। जी हाँ, नाम भी फिल्म का यही है, बढ़ती का नाम दाढ़ी, और गाया है इसे किशोर कुमार ने। बड़ा मजेदार सा गीत है, आइए मिल करके सुनते हैं। दाढ़ी के बालों को मुलायम रखने और त्वचा की खुजली को दूर करने के लिए अच्छे बियर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे के सामान्य साबुन के बजाय बियर्ड वॉश या फिर माइल्ड शैम्पू से दाढ़ी को हफ्ते में 2-3 बार साफ किया जाता है। और दाढ़ी को सही दिशा देने और उलझनों से बचाने के लिए लकड़ी की कंघी या फिर बियर्ड ब्रश का प्रयोग किया जाता है।

और श्रोताओं, अब इसी गीत के साथ आगे बढ़ते हुए हम लेते हैं, चलते हैं प्रादेशिक समाचारों की ओर, चलेंगे आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो। कुछ पलों का इंतजार।

0: तू बच रहना तू हट, इनसे तू बच रहना तू हट, कहता हूँ सच। पड़ती का नाम दाढ़ी, कटती का नाम कपाट, पढ़ते चलो।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के मौके पर 69 अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया अलंकृत। समाज में अध्यापकों की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। प्रदेश के 32 अध्यापकों को मिले राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से युवाओं के कौशल विकास पर दिया बल। सांसद कंगना रणौत ने धीमी गति से चल रहे विकास कार्यों पर जताई नाराजगी। सुस्त कार्यशैली पर अधिकारियों को लिया आड़े हाथ। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजू बिंदल ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे में विफल रहने का लगाया आरोप। कहा, अगले एक महीने में 190 स्थानों पर धरना प्रदर्शन करेगी भाजपा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 69 स्कूल शिक्षक शामिल रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि समाज में अध्यापकों की अहम भूमिका है और विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में अध्यापकों का महत्वपूर्ण योगदान है।
2: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।

0: के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इसके अलावा वर्ष 2025 के लिए एक शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में सेवाएं दे रहे 32 अध्यापकों के लिए आज का दिन यादगार रहा, जब राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने उन्हें राज्य शिक्षक पुरस्कार से अलंकृत किया। राज्यपाल ने पुरस्कार पाने वाले सभी अध्यापकों को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों का भविष्य संवारने में वे अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति के माध्यम से युवा पीढ़ी के कौशल विकास पर बल दिया।
2: मैं सभी शिक्षक वर्ग से ये कहना चाहूँगा, आप व्यक्ति निर्माण करते हैं, आप विद्यार्थियों का निर्माण करते हैं, उनके भविष्य को बनाते हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर सरकार पूरे मन के साथ पैसा भी देती है, सब कुछ देती है, तो उसी तरह का अपना योगदान देना चाहिए। जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसके माध्यम से विशेष करके विद्यार्थियों में नवाचार की ओर, कौशल विकास की ओर विशेष ध्यान दे पाएं, उसके लिए शिक्षक एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैं एक बार फिर से सभी को बधाई देता हूँ जिन्होंने आज पुरस्कार प्राप्त करते हैं। हम इसी प्रकार से उत्कृष्ट कार्य करके विशेष करके विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ने में उसकी योगदान दें।
1: इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार गुणात्मक शिक्षा के विकास पर जोर दे रही है और सरकारी स्कूलों से पलायन को रोकने के लिए 147 स्कूलों को CBSE बोर्ड से जोड़ा गया है।
3: इन्होंने अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी है हमारे विभाग में, उनको सम्मानित किया गया। मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं शिक्षक दिवस पर मैं समस्त अपने शिक्षक वर्ग को बहुत बधाई देता हूं। हमने लगभग 147 स्कूलों में आपने स्कूलों को CBSE बोर्ड से अपग्रेड किया है और अभी आपका शुरुआती दौर है और ट्रांजिशन पीरियड है, तो निश्चित रूप में जो एक कदम उठाया गया है उसके पीछे सोच यही है कि जहां प्रतिस्पर्धा भी हो और एक तरह का जो पलायन सरकारी स्कूलों से निजी स्कूलों में हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी।
1: समारोह में एक शिक्षक को वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वाले अध्यापकों ने कहा कि उनका ये पुरस्कार सभी अध्यापक वर्ग का सम्मान है।
4: मेरा नाम पूर्णिमा कुमारी है और मैं हमीरपुर के एक छोटे से स्कूल जलाड़ी से हूँ। एज एक उपलब्ध इंचार्ज मेरा एक पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में विशेष जो है वो सहयोग रहता है और बच्चों को जो है नवाचार से जोड़ना, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, भारतीय सेना का क्षेत्र है, सब जगह महिलाएं एक साथ खड़े होके अपना सहयोग दे रही हैं।
5: मैं आज का ये सम्मान हिमाचल प्रदेश के हर उस शिक्षक को समर्पित करता हूँ जिन्होंने 26 साल की मेरे कार्यकाल में जो मेरी जर्नी रही है उसमें हम शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव ला सके है। मेरा प्रयास रहा है कि हमने जो भी शिक्षा के लिए नई नीतियाँ बनी है उसको हम किस तरह से ग्रासरूट तक उतार पाए और किस तरह उससे बच्चों का फायदा हो। मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि हिमाचल सरकार ने मेरे काम को पहचाना।
1: इस मौके पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xander@AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
6: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
7: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
6: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, सांसद कंगना रणौत ने मंडी संसदीय क्षेत्र में सांसद निधि के तहत धीमी गति से चल रहे विकास कार्यों में नाराजगी जताई है। आज मंडी में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक में उन्होंने सुस्त कार्यशैली को लेकर अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। कंगना रणौत ने कहा कि सांसद निधि के तहत दिए गए 11 करोड़ रुपए में से करीब 5.5 करोड़ रुपए की राशि बिना इस्तेमाल की पड़ी है। हमारे मंडी संवाददाता मुनीश सूद के अनुसार सांसद ने बैठक में कड़े शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में सुस्ती बर्दाश्त नहीं होगी और जिम्मेदारी तय कर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कंगना रणौत ने बताया कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 316 कार्यों की सिफारिश की गई है, लेकिन इनमें से अभी तक मात्र 73 कार्य ही पूरे हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि विकास योजनाएं केवल फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देनी चाहिए। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की ओर से प्रदेश भर की पंचायतों को कूड़ा प्रबंधन के लिए ई रिक्शा उपलब्ध करवाई जा रही है। सोलन जिले के लिए 40 ई रिक्शा प्रदान की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज सोलन में जिले की 7 पंचायतों के लिए ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन में ये ई रिक्शा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर ढंग से कूड़ा निष्पादन हो सकेगा।
8: स्वच्छ भारत मिशन है, इसके तहत ये हमारी विधानसभा क्षेत्र को जिला सोलन को तो ऑलमोस्ट आई थिंक लगभग 40 के करीब मिले हम लोगों को, ताकि कूड़ा प्रबंधन विल टेक सम गुड शेप और ये कूड़ा प्रबंधन के जो गाड़ियां बांटी है ये भी अपना क्षमता के अनुसार अच्छा काम करेगा।
0: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य सरकार हर मोर्चे में विफल रही है और शिक्षा व स्वास्थ्य संस्थानों की हालत दयनीय हो गई है। उन्होंने आज औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में सड़कों की बदहाली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन में भाग लिया। बिंदल ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में 1,00,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं और 3,500 स्कूल मात्र एक एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगले एक महीने के भीतर भाजपा राज्य सरकार की नाकामियों को लेकर प्रदेश के 190 स्थानों पर धरना प्रदर्शन करेगी।
9: 1,07,000 पद सरकारी क्षेत्र में रिक्त हैं, भर्तियां की नहीं है, बेरोजगार युवकों के साथ आपने धोखा किया है, ठगी की है, छलावा किया है। पक्की नौकरी के नाम पर वोट खाने वाली कांग्रेस, उसके खिलाफ अब धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। आज यहाँ कालाअंब में जो सड़कों की दुर्दशा है, 3-3 फुट पानी बरसात में यहाँ खड़ा हो जाता है, लोगों का जीना दूभर हो गया है, अनेकों की हड्डियां यहाँ टूट चुके हैं और हिमाचल प्रदेश की बदनामी पूरे देश में सड़कों के कारण होती है।
0: पश्चिम बंगाल के एक मीडिया प्रतिनिधि मंडल ने आज शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से भेंट की। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत पत्र सूचना ब्यूरो द्वारा आयोजित एक्सपोजर विजिट के तहत ये प्रतिनिधि मंडल हिमाचल के दौरे पर है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयासों से साकार किया जा सकता है, जिसमें मीडिया की अहम भूमिका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के मौके पर 69 अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया अलंकृत। समाज में अध्यापकों की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। प्रदेश के 32 अध्यापकों को मिले राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से युवाओं के कौशल विकास पर दिया बल। सांसद कंगना रनौत ने धीमी गति से चल रहे विकास कार्यों पर जताई नाराजगी। सुस्त कार्यशैली पर अधिकारियों को लिया आड़े हाथ। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे में विफल रहने का लगाया आरोप। कहा, अगले एक महीने में 190 स्थानों पर धरना प्रदर्शन करेगी भाजपा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार
10: दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं। और अब चलते चलते मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का भी दिन हमारा अब समाप्ति की ओर है और शिक्षक दिवस आज हम सभी ने मनाया है, लेकिन अक्सर स्कूल और कॉलेज के दिनों में या आज के दौर में सोशल मीडिया पर छात्र अपने शिक्षकों के अजीबोगरीब से नाम रख देते हैं। आज बहुत सारे शिक्षकों को इनाम भी मिले, जैसा कि आपने समाचारों में सुन ही लिया। और कभी कभी उनकी चाल ढाल का, कभी उनके बोलने के तरीके का, तो कभी उनकी किसी भी कमी का मजाक उड़ाया जाता है। दोस्तों, एक पल रुक करके ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या ये सही है? बचपन की नादानी में एक हल्की फुल्की सी हंसी समझ में आती है, लेकिन जब ये हंसी किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगे तो फिर वो मर्यादा तोड़ देती है। कमियां तो सब में होती हैं, शिक्षक भी इंसान हैं, भगवान नहीं, उनमें भी कोई ना कोई कमी हो सकती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वे अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा जीवन हमारी तकदीर को संवारने में लगा देते हैं। आज हम गूगल के दौर में हैं, जहां जानकारियां उपलब्ध हैं, लेकिन जो शिक्षक हमें डांट करके सही रास्ते पर लाता है, उसका कोई विकल्प, कोई तकनीक नहीं हो सकती। अगर हम अपने गुरु का सम्मान नहीं करते तो हमारी डिग्री और हमारा ज्ञान सिर्फ कागज़ का टुकड़ा बनकर रह जाता है। कबीर दास जी ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काको काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यानी ईश्वर से भी ऊपर गुरु का स्थान है, इसीलिए शिक्षकों के प्रति अपने मन में हमेशा आदर का भाव रखें, उपहास का नहीं, और चलते चलते

और दोस्तों इसी के साथ अब ज्योति पठानिया को दे दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। जल्द मिलूंगी आपसे अगली बार किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। इस कार्यक्रम में मुझे तकनीकी सहयोग मिला सचिन कपूर से, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संदीप परमार।

0: खोलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत।

0: गोरिया आकर गोरिया गोरिया आकर आ
1: गोरिया
2: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
5: कैसे?
6: कर्तव्य।
5: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझ गए सर।
5: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सोलह सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
12: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। आसमान से नजर रखेगा नया सैटेलाइट, डिपुओं में इस माह मिलेंगे 5 किलो चावल। सिरमौर, कांगड़ा और चंबा जिला में पर्यटन व धार्मिक यात्रा होगी सुगम। हिमाचल में आधार से जोड़ी जाएंगी 72 सरकारी योजनाएं और सेवाएं। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा संस्थान हो सकता है हिमाचल में स्थापित। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुक्रवार को इतिहास रचते हुए भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित होने वाले देश के पहले इमेजिंग उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया और GSLV के जरिए 2300 किलोग्राम से अधिक वजनी उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित कराया। उपग्रह को मिशन से जुड़े एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने आसमान से नजर रखने वाली आंख करार दिया और यह उपग्रह वास्तविक समय में तस्वीरें उपलब्ध कराएगा, साथ ही कृषि आपदा प्रबंधन समेत कई क्षेत्रों में देश की मदद करेगा। इसरो ने बताया कि उपग्रह IOS-05 यहां से प्रक्षेपित होने के करीब 18 मिनट बाद निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। अंतरिक्ष एजेंसी ने उन अटकलों को खारिज किया कि IOS-05 एक टोही उपग्रह है, जहां कई पृथ्वी अवलोकन उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में संचालित होते हैं। वहीं IOS-05 करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित होगा, जहां वह पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ तालमेल बैठाएगा। प्रदेश के सस्ते राशन के डिपुओं में इस माह उपभोक्ताओं को चावल का कोटा 1 किलो कम मिलेगा। इस बार पात्र उपभोक्ताओं को 5 किलो चावल ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। पहले इससे डिपुओं में प्रति उपभोक्ता 6 किलो चावल का कोटा दिया जा रहा था। हालांकि आटे के कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उपभोक्ताओं को पहले की तरह 12 किलो आटा ही मिलेगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश के बर्फबारी वाले दुर्गम क्षेत्रों में सर्दियों से पहले राशन की अतिरिक्त खेप भेजी जा रही है। इन क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था को देखते हुए इस माह चावल की उपलब्धता के हिसाब से डिपुओं में कोटा निर्धारित किया गया है। इसी कारण सामान्य क्षेत्रों में चावल का कोटा 1 किलो कम किया गया है। विभाग की ओर से को उपभोक्ताओं निर्धारित कोटे के अनुसार राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। आटे के कोटे में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है। हिमाचल में पर्यटन को पंख लगाने और दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर श्रद्धालुओं लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत कार्यरत राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड NHLML ने पर्वतमाला परियोजना के तहत हिमाचल के सिरमौर जिले में के सफर को आसान बनाने के शिरगुल महादेव मंदिर, कांगड़ा में आदि हिमानी चामुंडा मंदिर, पालमपुर थ्रीचुंजा ग्लेशियर व चंबा जिले के भरमौर में भरमाणी माता मंदिर को रोपवे से जोड़ने के लिए कदम बढ़ाए हैं। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन 4 परियोजनाओं के दायरे में आने वाले क्षेत्र अपनी आध्यात्मिक और प्राकृतिक विशिष्टता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। सिरमौर और शिमला जिले की सीमा पर स्थित चूड़धार चोटी पर लगभग 3,647 मीटर की ऊंचाई पर भगवान शिव के रूप में पूजे जाने वाले ईष्ट देव शिरगुल महादेव का पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। कांगड़ा में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की गोद में लगभग 3,185 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आदि हिमानी चामुंडा मंदिर नंदिकेश्वर धाम मां चामुंडा का मूल एवं प्राचीन स्थान है। चंबा जिले के भरमौर से करीब 4 किलोमीटर दूर और 2,700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भरमाणी माता मंदिर का भी विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों को अब हिम एक्सेस और हिम परिवार पोर्टल पर पंजीकरण व लॉगिन के दौरान आधार आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा मिलेगी।
इससे एक ओर जहां फर्जी पहचान और डुप्लीकेट पंजीकरण पर अंकुश लगेगा, दूसरी ओर पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाना भी आसान होगा। सरकारी सेवाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। सरकार के पोर्टलों पर उपलब्ध 72 विभिन्न सेवाओं को इस प्रणाली के तहत लाया गया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने दोनों प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधार प्रमाणीकरण लागू करने का फैसला लिया है। यह व्यवस्था भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद लागू की गई है। हिमाचल प्रदेश को देश के प्रमुख फार्मास्यूटिकल हब के रूप में और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने अहम पहल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के प्रदेश में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने अथवा मोहाली स्थित संस्थान का एक्सटेंशन सेंटर खोलने के प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाया है। इस प्रस्ताव पर केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति पहल के तहत विचार किया जाएगा। मीडिया को जारी बयान में अनुराग ने कहा कि प्रदेश में इस तरह की उच्च स्तरीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान सुविधा स्थापित होने से उद्योग और अकादमिक जगत के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। राज्य में वर्तमान में 650 से अधिक फॉर्मुलेशन इकाइयां कार्यरत हैं। हिमाचल प्रदेश में सड़कों की सुरक्षा, रखरखाव और प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सड़क अवसंरचना संरक्षण कानून में अहम संशोधन किए गए हैं। किसी व्यक्ति की वजह से सड़क या अन्य ढांचा क्षतिग्रस्त होता है तो मरम्मत का खर्च, जुर्माना वसूला जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संशोधित कानून में सड़क अवसंरचना के डिजिटल और जियो कोऑर्डिनेटेड मानचित्र तैयार करने का प्रावधान किया गया है। सड़क की सीमा का एक बार सही तरीके से डिजिटल मैपिंग और जियो कोऑर्डिनेशन होने के बाद कार्रवाई के लिए बार बार मौके पर भौतिक सीमांकन की जरूरत नहीं होगी। ऊना में विकसित हो रहे बल्क ड्रग पार्क में फार्मा उद्योगों के लिए 81 प्लॉट तैयार किए गए हैं। इनके आवंटन की प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। पार्क में बाहरी राज्यों के उद्योगपतियों को भी निवेश का अवसर मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर से पहले चरण में उत्पादन शुरू हो जाए, मार्च 2027 तक सभी यूनिटें उत्पादन करना शुरू कर दें। इससे हिमाचल में फार्मा उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ प्रदेश के बाहर भी कच्चे माल की सप्लाई का रास्ता खुलेगा। बल्क ड्रग पार्क 11,240 बीघा में बन रहा है। पार्क में प्लॉटों के आसपास बुनियादी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रत्येक प्लॉट के इर्द गिर्द 21 फुट चौड़ी सड़क होगी, जिससे उद्योगों तक वाहनों की आवाजाही सुगम रहे। इसके अलावा हर प्लॉट में पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।

0: हेलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत।

0: गोरिया।
1: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
2: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
6: चाय मांगी थी, क्या है ये?
7: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
6: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा उठ पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
8: अब क्या देख रहे हो पापा?
6: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
8: किससे?
6: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
8: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
7: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती,

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 FM पर आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला

इंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।